0: देही मातरम।
1: वंदे मातरम सुजला सुफला मलयज शीतला शस्य

एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हिसार केंद्र से। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की आठवीं तिथि, तदनुसार 29 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 और 37 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा मंगल ध्वनि के साथ अब आरंभ होती है।

FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी का हिसार केंद्र। सुबह के 6 बजे हैं, आइए सुनते हैं हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, और इसके तुरंत बाद आपको ले चलेंगे विविध भारती के मुंबई केंद्र आगामी रंगारंग प्रसारण के लिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति जनजातीय सुरक्षा मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वो आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कल अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ खेल और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश में विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना और अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार कर रही है। अहमदाबाद वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
1: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
0: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लो पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। 2 बार कांग्रेस विधायक रह चुके केवल सिंह ढिल्लो वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्रिशा शर्मा दहेज हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली में वर्ष 2025-26 के दौरान 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है इन केंद्रों का विकास और संचालन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और तय वित्तीय मानकों के अनुसार किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालन

0: चालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। यह हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मुकाबला न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती
2: वंदन वार।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदनवार। आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, मुस्कान एक ऐसा उपहार है जिसे बिना कुछ खर्च किए भी किसी को खुशी दी जा सकती है। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

हम विविध भारती से बोल रही हैं। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर झरोखा में। अब से कुछ ही पलों में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 203। 6:45 पर संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला कर्नाटक संगीत पद्धति के राग। कलाकार हैं शकुंतला नरसिंहन। सुनिए इस श्रृंखला का 7वां भाग। प्रस्तुति है रूपाली रूपक की। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज शाम 6:45 पर। 7 बजे सुनिए भूले बिसरे गीत। 7:30 पर हम हेरा ही प्यार के। 8:15 पर वंदे मातरम एक जय घोष। सुनिए इस कार्यक्रम का भाग 30। लेखन है मिलिंद सबनीस का। प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज दोपहर 2 बजे। 8:30 पर सुनिए चित्रलोक कार्यक्रम। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्मकार पृथ्वीराज कपूर पर। प्रस्तुति है रमेश गोखले की। सुबह 10 बजे पिटारा में सुनिए हेलो फरमाइश। संवादन है मंदाकिनी जोशी का। प्रस्तुति राघवेंद्र नेगी की। 11 बजे सुनिए रंग तरंग कार्यक्रम। 12:05 से सजेगी यादों की महफिल। 1 बजे से तय करेंगे सुरीला सफर। 2:30 पर सदाबहार नगमे। 3 बजे आज सुनिए हेलो सहेली। 7 कार्यक्रम में संवादन होगा चंचल वर्मा का। प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। 4 बजे पिटारा में सुनिए गीतों भरी कहानी। कहानी है रिश्ते। लेखन है विधि जैन का। संपादन है काजल भद्रगे का। प्रस्तुति जुबैर खान की। 5:30 पर सुनिए तराने नए पुराने। 6:30 पर संध्या रंजन। 7 बजे सुनिए जयमाला कार्यक्रम। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए गुलदस्ता। 8 बजे हवा महल में सुनिए झलकी एक दिन का प्यार। लेखन है V.M. आनंद का। निर्देशन है सुदर्शन कुमार का। 8:15 पर रात्रि चित्रलोक। 9 बजे सुनिए आपके लिए। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता पंकज कपूर पर। प्रस्तुति रमेश गोखले की। 10 बजे सुनिए छाया गीत। आलेख और स्वर है ज्योति गौर का। प्रस्तुति राघवेंद्र नेगी की। और 10:30 पर आप सुनेंगे ढलती जाए रात। ये था आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा।

अभी तक आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई से अनुप्रसारित कार्यक्रम FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हिसार केंद्र से। सुबह के 6:45 हुए हैं। अब आप जानेंगे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

अब से कुछ ही देर में यानी कि सुबह 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत समाचार, 7 बजे सुनिएगा राष्ट्रीय हिंदी समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी समाचार आप सुनेंगे। ये समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित। सुबह 7:10 पर लोकरंग कार्यक्रम सुनिएगा और 7:40 पर सुनेंगे आप कार्यक्रम सुप्रभात। सुबह 8 बजे सुनिएगा समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित। 8:15 पर अंग्रेजी समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही अनुप्रसारित। आठ बजकर 30 मिनट से सुनिएगा विविध भारती मुंबई से अनुप्रसारित रंगारंग कार्यक्रम और 9 बजे समय रहेगा आज की फनकार कार्यक्रम का। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे विविध भारती के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित। सुबह 10 बजे सुनिएगा अपना चहेता कार्यक्रम नमस्ते हिसार।

आज दिन में 12 बजे विविध भारती मुंबई से अनुप्रसारित कार्यक्रम आप सुनेंगे यादों की महफिल। 1:05 पर प्रादेशिक समाचार सुनिएगा आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से अनुप्रसारित। एक बजकर 10 पर आप सुनेंगे विविध भारती के गीतमाला। अनुप्रसारण विविध भारती के मुंबई केंद्र से किया जाएगा। दिन में 2 सुनिएगा राष्ट्रीय अंग्रेजी समाचार और 2:15 पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय हिंदी समाचार। ये समाचार अनुप्रसारित होंगे आकाशवाणी के विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

दिन में 3 बजे आप सुनेंगे सखी सहेली कार्यक्रम, अनुप्रसारण विविध भारती के मुंबई केंद्र से किया जाएगा। शाम 4 बजे सुनिएगा गीतों भरी कहानी, ये कार्यक्रम भी अनुप्रसारित होगा विविध भारती के मुंबई केंद्र से। आज शाम 5 बजे आप सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम हेलो हिसार। शाम 6 बजे सुनिएगा हिंदी समाचार, अनुप्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: 6:05 पर आप जानेंगे हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। कार्यक्रम रूपरेखा के अंतर्गत 6:10 पर प्रादेशिक समाचार सुनिएगा आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से अनुप्रसारित। छह बजकर 20 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम भक्ति संगीत। 6:30 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम MCERT। आज आप सुनेंगे इस कार्यक्रम का 1285वां भाग। 7 बजे समय रहेगा खेती किसाना सेती कार्यक्रम का। 7:30 पर सुनिएगा हमारे गांव कार्यक्रम और 8 बजे समय रहेगा पंजाबी लोकगीत कार्यक्रम का। 8:30 पर खुला आकाश कार्यक्रम सुनिएगा और 8:45 पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय हिंदी समाचार विविध भारती के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित। 9 बजे सुनिएगा राष्ट्रीय अंग्रेजी समाचार, अनुप्रसारण विविध भारती के मुंबई केंद्र से किया जाएगा और 9:15 से आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई से अनुप्रसारित रंगारंग कार्यक्रम। 10 बजे सुनिएगा अपना चहेता कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे। 11 बजे आप सुनेंगे राष्ट्रीय हिंदी समाचार, अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।
1: 11 बजे राजे ने हीर को कबूतर से खत भिजवाया। राजे ने हीर को कबूतर से खत भिजवाया और एक जैसी छतों को देख कबूतर ने खत गलत पते पर गिराया। कबूतर की गलती ने बेचारे राजे को सरे बाजार बहुत पिटवाया। तब हीर ने राजे को समझाया,
2: अरे बुद्धू, मैसेज ही भेजना था तो ईमेल से क्यों नहीं भिजवाया।
3: RADIOHISAR यानी radiohisar@gmail.com पर
2: आप भी भेजिए अपने मैसेज ईमेल के माध्यम से अपनी पसंद के गाने सुनने के लिए कार्यक्रम ई फरमाइश में
3: हर मंगलवार शाम 5 बजे
2: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर। हिंदुस्तान जमीन है सितारों की।
4: अगर तुम्हारी आरजू एक कमीज है तो सारी जिंदगी इसी तरह जब्त करना होगा।
3: एक से बढ़कर एक उम्दा फनकारों की।
2: कोई साहित्य में सर्वश्रेष्ठ है?
5: न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता।
3: तो कोई विज्ञान में अद्वितीय है?
6: Will you be remembered as a great scientist, said Lord Thomas Alva Edison।
2: कोई कला में उत्कृष्ट है?
3: तो कोई संगीत का शिरोमणि।
2: किंतु कोई है जो इन सब को ले आया है आपके लिए, आपके घर में, आपके बेहद करीब।
3: कार्यक्रम एक शख्सियत
2: हर सोमवार शाम 5 बजे
3: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर। बच्चों की एक अलग दुनिया होती है। और यदि आपको चाहिए इस दुनिया में एंट्री तो ढूंढिए अपने भीतर छुपे बच्चे को।
7: एरोप्लेन एरोप्लेन अप इन द स्काई, वेयर आर यू गोइंग? फ्लाइंग सो हाई, ओवर द माउंटेन, ओवर द सी। एरोप्लेन एरोप्लेन प्लीज टेक मी।
2: बचपन की मुस्कुराहटों और गुदगुदाहटों से भरा कार्यक्रम बाल सभा
3: हर रविवार सुबह 10:30 पर
2: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
0: अभी आपने सुने ये आवश्यक संदेश और इससे पहले आपने जाने हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी का हिसार केंद्र। सुबह के 7 बजने वाले हैं, आपसे कुछ ही पलों के बाद सुनिएगा 6:55 पर संस्कृत समाचार आप सुनेंगे और 7 बजे सुनिएगा राष्ट्रीय हिंदी समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी समाचार आप सुनेंगे। ये सभी समाचार अनुप्रसारित होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। तो चलिए पहले सुनते हैं संस्कृत समाचार कुछ ही पलों के इंतजार के बाद।

0: प्रदत्तमिति। अत्रावसरे सः राज्यपालं नूतनमुख्यमन्त्रिणः पदभारग्रहणाय आमन्त्रयितुं साग्रहं निवेदितवान्, यतोहि विधानसभायां षट्त्रिंशदधिकैकशताधिक विधायकानां समर्थनेन कांग्रेसदलस्य पूर्णबहुमतं वर्तते। तेन सूचितं यत् कांग्रेस उच्चाधिकारिभिः तस्मै राज्यसभायाः सदस्यता प्रस्ताविता आसीत्, परञ्च सः राष्ट्रिय राजनीतौ स्वकीयाम् अरुचिं प्रकटयन् उक्तवान् यत् सम्प्रत्यसौ राज्यस्य जनानां कृते एव निरन्तरं कार्यं करिष्यति। भारतीयर्थविभागेन अनुमितं यत् देशस्य उत्तर पश्चिमीय दिग्विभागस्य कतिपय क्षेत्रेषु अतितापघटनायाम् अपचितिः भविष्यति। अन्ते क्रीडावार्तासु, आईपीएल क्रिकेट स्पर्धा मालिकायाम् अद्य उपान्तिचक्रीये द्वन्द्वे गुजरात टाइटन्स दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन समं स्पर्धिष्यते। स्पर्धा सायं सार्धसप्तवादने आरप्स्यते। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
2: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
1: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजाति समुदाय के प्रति जनजातीय सुरक्षा मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी ऑफ बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में प्रस्तावित कॉमनवेल्थ गेम और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। श्री शाह ने कहा कि अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। अहमदाबाद वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लो पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। 2 बार कांग्रेस विधायक रह चुके केवल सिंह ढिल्लो वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्रिशा शर्मा दहेज हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली में वर्ष 2025-26 के दौरान 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है कि इन केंद्रों का विकास और संचालन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और तय वित्तीय मानकों के अनुसार किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य

नई सुबह नए सवेरे की शुरुआत आकाशवाणी सार कार्यक्रम हरियाणवी लोक रंग के साथ। आज के हरियाणवी लोक रंग के कलाकार हैं रणबीर सिंह बड़वासनी और साथी कार्यक्रम की पहली रागिनी

0: कौन बदबूत गणा तेरा था मन के नुपलम पे बेरा था
1: मन के नुपलम पे बेरा था
0: और तेरे भरोसे।

बाटी मिया रंज के मत मुखड़ा मोड़ रहा था। खारी हीर के कारण छोट

么想看，把你来看。

ये सुना भाइयों, आज आपने हरियाणवी लोक रंग कार्यक्रम आपने सुनी रणबीर सिंह बड़वासनी और साथियों की आवाज की गाई रागनिया। इसी के साथ आज का हरियाणवी लोक रंग कार्यक्रम समाप्त हुआ। सारे वन भाइयों ने राम राम।

0: नया बेहतर है
1: क्योंकि तुम ही हो,
2: किंतु पुराना बेहतरीन।
3: दिल चीज़ क्या है?
0: नया श्रेष्ठ है
1: केसरिया तेरा,
2: किंतु पुराना श्रेष्ठता।
0: नया उत्कृष्ट है
1: तेरी गलियां,
2: किंतु पुराना अनमोल।
3: चुरा लिया है तुमने जो दिल जान।
0: नया अनूठा है
2: किंतु पुराना अनुपम।
0: सुनिए 80 और 90 के दशक के बेहतरीन नगमे
2: कार्यक्रम ओल्ड इज गोल्ड में
0: हर बुधवार शाम 5 बजे
2: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर। क्या आप परेशान हैं?
1: मैं परेशान।
0: क्या आप खुश हैं?
4: आज मैं ऊपर।
2: क्या आप डांस करना चाहते हैं?
5: पापड़ के नगमे नूजी कर दे।
0: क्या आपका दिल टूटा हुआ है?
6: दिल के टुकड़े टुकड़े करके।
2: या आप प्यार में हैं?
7: पहला पहला प्यार है।
0: क्या आप अपने पुराने दिनों में लौटना चाहते हैं?
8: कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन।
2: तो मैसेज कीजिए 9729253272 पर,
0: क्योंकि हमारे पास है हर गाना आपके मूड और सिचुएशन के हिसाब से।
2: कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे, हर मंगलवार और शुक्रवार रात 10 बजे
0: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।

अभी आपने सुना कार्यक्रम लोकरंग एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। यह है आकाशवाणी का हिसार केंद्र। सुबह के 7:40 हुए हैं और अब आप सुनेंगे कार्यक्रम सुप्रभात।

सुप्रभात कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आप सभी की अपनी रेडियो हम सफर प्रीति ढिंडूरिया का नमस्कार। श्रोताओं कार्यक्रम सुप्रभात, जहां हर सुबह की शुरुआत होती है एक सकारात्मक सोच, नई ऊर्जा और जरूरी जानकारियों के साथ, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं आज के पंचांग के बारे में। आज शुक्रवार का दिन है। हिंदू पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि। आज स्वाति नक्षत्र लगभग 10:37 तक रहेगा, उसके बाद विशाखा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। और आज जो है राहु काल लगभग 10:40 से दोपहर 12:20 तक रहेगा। आज हिसार और आसपास के क्षेत्रों में गर्मी का असर बना रह सकता है और अधिकतम तापमान लगभग 40 से 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। दिन में तेज धूप और गर्म हवाओं का असर महसूस हो सकता है। हालांकि प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम में हल्के बदलाव और बादलों की आवाजाही भी संभावित जताई जा रही है। तो श्रोताओं, अगर जरूरी काम न हो तो घर से बाहर ना ही निकलना, और अगर निकलना पड़े भी तो पानी अपने साथ रखना, हल्के सूती कपड़े पहनना और तेज धूप में सर को ढक कर रखना। सुबह और शाम के समय हल्की सैर और योग आपके दिन को ऊर्जावान बना सकते हैं।

श्रोताओं, सुबह का समय नई उम्मीद, नई सोच और नए उत्साह का समय होता है। अगर दिन की शुरुआत किसी अच्छे से विचार के साथ हो जाए तो पूरा दिन सुंदर बन जाता है। गीता का एक श्लोक है, अध्याय 2 से श्लोक 50। योग कर्मसु कौशलम, अपने काम को अच्छे ढंग से पूरी लगन और समझदारी से करना ही योग है। देखिए श्रोताओं, बिल्कुल छोटा सा श्लोक है लेकिन इसका अर्थ बहुत बड़ा है। इस छोटे से श्लोक में जीवन की बहुत बड़ी सीख छुपी है। हम अक्सर सोचते हैं कि योग का मतलब केवल आसन करना, ध्यान लगाना, पूजा पाठ करना होता है, लेकिन गीता कहती है कि अगर आप अपना हर काम मन लगाकर ईमानदारी से और अच्छे तरीके से करते हैं तो वह भी तो एक योग ही है। जैसे अगर एक विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करता है तो वही उसका योग है। अगर एक माँ अपने परिवार का ध्यान प्यार और जिम्मेदारी से रखती है तो वह भी योग है। अगर कोई किसान मेहनत से खेत में काम करता है, कोई शिक्षक बच्चों को दिल से पढ़ाता है, कोई कर्मचारी ईमानदारी के साथ अपना काम करता है, तो यही तो सच्चा योग है। अब सोचिए, कई बार हम कोई काम जल्दी जल्दी में करते हैं, मन कहीं और होता है, ध्यान कहीं और होता है, नतीजा क्या होता है? काम भी ठीक से नहीं होता और मन भी परेशान रहता है। लेकिन जब हम किसी काम को पूरी लगन से करते हैं तो मन में संतोष रहता है, चाहे काम कोई भी छोटा सा ही क्यों ना हो या फिर बहुत बड़ा हो। अगर दिल से किया जाए तो उसकी कीमत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। एक छोटी सी बात के साथ ही

सोचिए कि जब एक माली पौधों को पानी देता है तो वो हर पौधे को बहुत प्यार से संभालता है। उसे पता होता है कि आज मेहनत करूंगा तो कल फूल खिलेंगे। वो ये नहीं सोचता कि फूल अभी क्यों नहीं आए, बस वो अपना काम करता रहता है। ठीक वैसे ही हमें भी अपने काम पूरे मन के साथ करने चाहिए। श्रोताओं, जीवन में सफलता केवल बहुत बड़े काम करने से नहीं मिलती, बल्कि छोटे छोटे कामों को भी अच्छे ढंग से करने से मिलती है। अगर आप घर साफ कर रहे हैं तो पूरे मन से कीजिए, आप खाना बना रहे हैं तो प्यार से बनाइए, अगर किसी की मदद कर रहे हैं तो दिल से कीजिए, क्योंकि काम कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होता, उसे करने का तरीका बड़ा होता है। तो आज की सुबह खुद से एक छोटा सा वादा कीजिए कि मैं जो भी काम करूंगा मन लगाकर करूंगा, बिना स्वार्थ, बिना लापरवाही, बिना शिकायत और पूरी ईमानदारी के साथ। याद रखिए, मेहनत से किया गया हर काम एक दिन बहुत बड़ी सफलता की नींव बनता है। इसी सुंदर सीख के साथ हम अपने दिन की अगर शुरुआत करते हैं तो हमारे लिए ये बहुत मददगार होगी हमारे पूरे दिन को सकारात्मक बनाने में, हमारी मुस्कुराहट और हमारी ऊर्जा को जीवंत रखने के लिए।

जीवन में बहुत बार ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है, लोग हमारी कद्र नहीं कर रहे हैं, या फिर हालात हमारे आशा अनुसार जो है वो नहीं हो रहे हैं। लेकिन ऐसे समय में छोटी सी सीख भी जीवन बदल देती है। एक गांव में एक बूढ़े गुरुजी रहते थे। उनके पास दूर दूर से लोग सलाह लेने आते थे। गांव में एक युवक भी रहता था जिसका नाम था मोहन। मोहन बहुत मेहनती था लेकिन हमेशा दुखी और परेशान रहता था। एक दिन वो गुरुजी के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी मैं बहुत मेहनत करता हूँ, सबकी मदद भी करता हूँ, लेकिन फिर भी जीवन में खुशी क्यों नहीं मिलती? लोग मेरी अच्छाई की कद्र क्यों नहीं करते? मुझे लगता है कि मेरी मेहनत बेकार जा रही है। गुरुजी मुस्कुराए लेकिन तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने मोहन से कहा, कल सुबह जल्दी मेरे पास आना। अगले दिन मोहन समय पर पहुंच गया। गुरुजी उसे अपने कमरे में ले गए। वहां दो दीपक रखे थे, एक बड़ा और चमकदार दीपक था जबकि दूसरा छोटा और साधारण। गुरुजी ने बड़े दीपक को जलाया, कमरे में अच्छी रोशनी फैल गई। फिर छोटे दीपक को जलाया, उसकी रोशनी कम थी लेकिन वो भी अपना काम कर रहा था। गुरुजी ने मोहन से पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? मोहन ने कहा, गुरुजी बड़ा दीपक ज्यादा रोशनी दे रहा है, छोटा कम। गुरुजी मुस्कुराकर बोले, बिल्कुल सही, लेकिन एक बात बताओ, क्या छोटा दीपक ये सोचकर जलना बंद कर देगा कि उसकी रोशनी कम है? मोहन चुप हो गया। गुरुजी फिर बोले, नहीं बेटा, वो अपनी क्षमता के अनुसार रोशनी देता रहता है, उसे इस बात की चिंता नहीं होती कि लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं या नहीं। उसका काम है अंधेरा कम करना और वो वही करता है। मोहन बहुत ध्यान से सुन रहा था। गुरुजी ने आगे कहा कि जीवन भी एक ऐसा ही है, कई लोग तुमसे आगे होंगे, कई लोग तुमसे ज्यादा सफल होंगे, कुछ लोगों की प्रशंसा ज्यादा होगी और कुछ की कम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी अच्छाई की कीमत नहीं है। अगर तुम किसी की मदद करते हो, ईमानदारी से काम करते हो, अपने परिवार का ध्यान रखते हो, अपने सपनों के लिए मेहनत करते हो, तो तुम भी तो एक दीपक की तरह हो जो अपने हिस्से की रोशनी फैला रहा है। मोहन की आंखें नम हो गई। गुरुजी ने कहा, दूसरों से तुलना करने वाला इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता, लेकिन जो अपनी छोटी छोटी अच्छाई को भी महत्व देता है वो हमेशा संतुष्ट रहता है। जो व्यक्ति बिना तुलना के मेहनत करता है वही सच्ची खुशी और सफलता पाता है। इसी सुंदर सीख के साथ कार्यक्रम सुप्रभात अब यहीं संपन्न होता है। FM बैंड 102.3 MHz पर ये है आकाशवाणी का हिसार केंद्र। सुबह के 8 बजने को है। आपसे कुछ ही पलों के बाद सुनेंगे आप समाचार प्रभात, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया। कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। और आईपीएल क्रिकेट में आज न्यू चंडीगढ़ में दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
3: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
2: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई।
3: भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी।
2: गृह मंत्री अमित शाह आज अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृह मंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। श्री अमित शाह का पिछले 6 महीनों में कच्छ का ये दूसरा दौरा है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
4: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
2: श्री डोभाल ने पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए होर्मुज जलडमरू मध्य और लाल सागर जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में व्यापार की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। इस दौरान उन्होंने रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगु से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को पार्टी का दिल्ली इकाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और श्री केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री अभिषेक देवराय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों के साथ ही श्री नवीन ने राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर नए पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केरलम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हारलेकर आज विधानसभा को संबोधित करेंगे। ये 10 वर्षों बाद केरलम में नई यूडीएफ सरकार का पहला नीति संबोधन है। राज्यपाल के संबोधन के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। सदन राज्यपाल के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए 1 जून को एकत्रित होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्रिशा शर्मा हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भोपाल में एक्ट्रेस त्रिशा शर्मा की मौत के मामले में सीबीआई ने कल रिटायर्ड जज और त्रिशा की सास गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया। करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने ये कार्रवाई की है। आज उन्हें सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी से एक दिन पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी। कोर्ट का कहना था कि मामले की गंभीरता और सबूतों को देखते हुए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती। 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में त्रिशा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वालों ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
3: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
5: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
3: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावटगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज

0: ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज दौरे के दूसरे दिन वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उधर उड़ानें बंद होने से इसराइल में रह रहे 40,000 से अधिक भारतीयों की चिंता बढ़ गई है। सीमित उड़ान विकल्पों के कारण यात्रा खर्च भी काफी बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। ये हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले 3 दिनों में ये दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुकाबला खेलेगी। राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर दूसरे क्वालिफायर में जगह बनाई, जबकि गुजरात टाइटंस पहले क्वालिफायर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार का सामना करना पड़ा। 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय महिला टीम ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 38 रन से हरा दिया। ये मुकाबला चेम्सफोर्ड स्थित काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी दी है कि अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में बादल गरजने और बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। कल रात राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई बारिश ने उमस और भीषण गर्मी से राहत दिलाई। विभाग के अनुसार आज बिहार, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और कर्नाटक में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है नवीन सक्सेना।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने सीबीएसई प्रकरण में शिक्षा मंत्री के बयान को प्रमुखता दी है, समस्याओं का समाधान करेंगे, दोषियों को नहीं बख्शेंगे। राजस्थान पत्रिका ने 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों पर लिखा है, सरकार सख्त, पहली बार सेना पहुंचाएगी नीट के पेपर, हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। अमर उजाला ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को अहमियत दी है, सिद्धरमैया ने छोड़ी मुख्यमंत्री की कुर्सी, कर्नाटक में अब शिवकुमार का होगा राज। दैनिक ट्रिब्यून ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, ट्रॉमा केयर का अधिकार जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग। न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 3 महीने के भीतर आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 पर शुरू करने और एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया है। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर सीमा सुरक्षा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, आज भी सीमा पर भारत को अक्सर घुसपैठ और आतंकी हमलों का सामना करना पड़ता है। इसकी बड़ी वजह सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था के तार और निगरानी तंत्र का अपेक्षित स्तर पर मजबूत न होना माना जाता है। दैनिक जागरण ने मौसम में हुए बदलाव पर लिखा है, तेज हवा और वर्षा ने तोड़ा गर्मी का गुरूर। नवभारत टाइम्स ने पद्मश्री से सम्मानित मशहूर शायर बशीर बद्र के निधन की खबर प्रथम पृष्ठ पर दी है, और फिर जिंदगी की शाम हो गई, थम गया अल्फाज का जादू, अलविदा बशीर बद्र। दैनिक भास्कर ने हार्वर्ड के एक शोध को विशेष खबर बनाया है, जीन क्लॉक बताएगी किस उम्र में थमेगी जिंदगी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया। कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। होम मिनिस्टर अमित शाह सेज सेंटर्स हाई लेवल कमिटी ऑन आर्टिफिशियल डेमोग्राफिक चेंजेस टू ऑल्सो असेस रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ टू टैकल द इश्यू। National Security Advisor Ajit Doval calls for decisive action against terrorism, says there cannot be double standards in fight against the menace. BJP appoints party presidents for Punjab, Haryana, Delhi and Tripura. Air India extends suspension of its flights to Israel till July end amid continued geopolitical uncertainties in West Asia. And in IPL cricket, Rajasthan Royals to take on Gujarat Titans in all-important qualifier 2 in New Chandigarh this evening. Union Home Minister Amit Shah has said that the Centre's high-level committee on artificial demographic changes due to illegal immigration and other unnatural causes will also assess whether a law is required to tackle the issue. Mr. Shah said the committee will examine the causes behind the artificial demographic shifts that have occurred across the nation. It will deliberate on the remedial measures required and should the enactment of any specific legislation be necessary. The Home Minister was addressing a function in Gandhinagar yesterday after inaugurating and laying foundation stone of development projects worth 340 crore rupees. He said the committee, headed by retired Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Naulekar, would submit its report within a year.
3: Removing infiltrators from the country is a commitment of our government. And for this, Prime Minister Narendra Modi has decided to form a demographic change committee. This high-powered committee will examine the reason behind the demographic changes that have taken place across the country and look into the possible solutions. It will also consider where there is a need to bring any new law regarding this issue.
2: Union Home Minister Amit Shah will visit the strategically significant and sensitive Harami Nala and Creek areas along the international border in Kutch on the second day of his Gujarat tour today. During the visit, he will review the security arrangements made by the Border Security Force and discuss border security challenges with senior officials. The Home Minister will inaugurate Border Outpost G7 and interact with BSF personnel. National Security Advisor Ajit Doval called for decisive action against terrorism and said there cannot be double standards in the fight against it. Addressing an international security forum in Russia, Mr. Doval said responsible nations have to evaluate their choices and decide whether they support sponsors of terrorism or counter them with decisive action.
4: Terrorism constitutes as one of the most serious threats to international security, and he felt that this is something for which all international security experts must address this threat. It is an antithesis of everything that humanity stands for. India has been a victim of states for sponsored terrorism.
2: In a social media post, the Indian embassy in Moscow said Mr. Doval participated in the first international security forum and the 14th meeting of high representatives for security matters in Moscow. On the sidelines of the forum, Mr. Doval held a meeting with his Russian counterpart, Shoigu. During the meeting, the parties reviewed the current state of cooperation in the areas of defense, security, energy and trade economic ties. The BJP has appointed new party presidents for Punjab, Haryana, Delhi and Tripura. BJP National President Nitin Naveen appointed East Delhi MP and Union Minister Harsh Malhotra as the party's Delhi unit president. Dr. Archana Gupta has been appointed as Haryana BJP chief M. Kewal Singh Dhillon will be the new president of Punjab BJP.

नमस्कार, विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आज के पेड़ पे पक चुके हैं, जिंदगी के पेड़ पे पक चुका है आज का फल। तो कल के फल की गुठली हटाइए और आज के फल का मजा उठाइए। आखिर आज का फल कल से हमेशा मीठा होता है। शुरुआत हो रही है कल हो ना हो फिल्म के इस गाने के साथ। सोनू निगम की आवाज, जावेद अख्तर के बोल, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

0: संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 29 मई को मनाया जाता है। ये दिन दुनिया में शांति बनाए रखने वाले सैनिकों के साहस और सेवा को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। साथ ही ड्यूटी के दौरान शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाती है।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

इस संदेश के पहले आप सुन रहे थे यंगिस्तान फिल्म से गाना। अरिजीत सिंह की आवाज में कौसर मुनीर के बोल, अजीत गांगुली का संगीत।

आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं एक बेहतरीन कलाकार का बर्थडे, जिन्होंने मकबूल, एक डॉक्टर की मौत, गांधी हल्ला बोल जैसी फिल्मों में काम किया। इसके साथ साथ इनका टेलीविजन सीरियल ऑफिस ऑफिस भी बहुत चर्चित रहा। हम बात कर रहे हैं एक्टर पंकज कपूर की। सुखविंदर सिंह और रंजीत बोरात की आवाज में आप सुन रहे हैं मटरू की बिजली का मंडोला। फिल्म से गाना गुलजार के बोल, विशाल भारद्वाज का संगीत।

इस फिल्म में पंकज कपूर नजर आए अपने बेटे शाहिद कपूर के साथ। जानिए इनकी जिंदगी के बारे में कुछ और किस्से, कुछ बातें आज के फनकार कार्यक्रम में रात 9:30 पर। आप सुन रहे हैं 10 फिल्म से ये गाना, शान और के की आवाज में। म्यूजिक विशाल शेखर का।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। अरिजीत सिंह की आवाज में सुन रहे हैं आप गाना डियर जिंदगी फिल्म से, कौसर मुनीर के बोल, अमित त्रिवेदी का संगीत।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।

0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
1: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
1: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

उर्दू गजल को आसान और आम बोलचाल की भाषा में लोगों तक पहुंचाने वाले मशहूर शायर बशीर बद्र का 91 साल की उम्र में भोपाल में निधन हो गया। उनकी खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली गजलों का इस्तेमाल जुनून, मसान, जीरो और हमारी अधूरी कहानी जैसी फिल्मों में किया गया है। हमारी अधूरी कहानी के टाइटल ट्रैक की शुरुआत उनकी बेहद खूबसूरत गजल की पंक्तियों से शुरू होती है। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, वक्त कुछ मेरे चेहरे को पड़ जाएगा।

अरिजीत सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे हमारी अधूरी कहानी फिल्म से ये गाना, रश्मि विराग के बोल जीत गांगुली का संगीत। इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न होता है। दीजिए सुदक्षिणा को इजाजत।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

0: दोस्तों हाजिर हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। आज के फनकार में उनकी चर्चा जिनके बुलंद आवाज और रोबदार अभिनय की दुनिया कायल है।
1: मालूम होता है बदहवासी ने तुझे अंधा कर दिया है, हमारे इंसाफ और कानून को नहीं पहचानती।
2: अपनी दी हुई इस निशानी को पहचानिए जिल्लेदाई, याद कीजिए आपने मुझसे वादा किया था कि अकबर से जिंदगी में एक बार जो जी चाहे मांग लेना। आज मैं आपसे अनारकली की जिंदगी मांगती हूँ।
1: लो देखो
2: अनारकली।
1: देखो ये सुरंग तुम्हें मुगल सल्तनत की सरहदों के पार ले जाएगी, और ये राज कि अनारकली जिंदा है तुम्हें राज रखना होगा, ताकि सलीम जिंदगी भर ये समझता रहे कि उसकी अनारकली मर चुकी।
2: ऐसा ही होगा, इसे जिंदगी देकर शहीशाह ने अपने इंसाफ को जिंदगी दी।
1: अनारकली बखुदा हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं, अपने उसूलों के गुलाम हैं। एक गुलाम की बेबसी पर गौर करोगी तो शायद तुम हमें माफ कर सको।
0: जिन्होंने भारतीय सिनेमा और रंगमंच को अपने उत्कृष्ट अभिनय से समृद्ध किया। रंगमंच और अभिनय के इतिहास पुरुष कहे जाने वाले एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने मुंबई में पृथ्वी थिएटर की स्थापना की, वो हैं आज के फनकार पृथ्वीराज कपूर।

पृथ्वीराज कपूर एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने अपनी कड़क आवाज, रौबदार भाव भंगिमाओं और दमदार अभिनय के बल पर लगभग 4 दशकों तक सिनेमा के दर्शकों पर राज किया।

0: सन 1960 में बनी फिल्म मुगल-ए-आज़म में अकबर के किरदार को कालजयी बनाने वाले पृथ्वीराज कपूर आज भी फिल्मी दीवानों के दिलों पर राज करने वाले शहंशाह हैं। रोबीले शहंशाह का मुगल-ए-आज़म फिल्म का ये संवाद भला किसे नहीं याद होगा।
1: सुबह होने से पहले बेहोशी की दवा में बसा हुआ ये फूल तुझे सलीम को सुंघाना होगा ताकि वो तेरी मौत से नाशना हो जाए, तुझे भूल जाए और हमारे पहरेदार तुझे बेहोश आशिक के पहलू से उठाकर मौत की आगोश में गुम कर दें।
2: मौत मोहब्बत से करीब हो गई, ऐसा ही होगा।
1: अगर ऐसा न हुआ तो सलीम तुझे मरने नहीं देगा और हम अनारकली तुझे जीने नहीं देंगे।
2: कनीज तो कब की मर चुकी है।

लिया गए और यहाँ वे इंपीरियल फिल्म कंपनी से जुड़ गए। 1931 में भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा में पृथ्वीराज कपूर ने सह अभिनेता का किरदार निभाया। सन 1933 में पृथ्वीराज कपूर कोलकाता के मशहूर न्यू थिएटर से जुड़ गए। 1933 में ही प्रदर्शित फिल्म राज रानी और 1934 में देवकी बोस की फिल्म सीता की कामयाबी के बाद पृथ्वीराज कपूर ने बतौर अभिनेता अपनी पहचान बनाई। इसके बाद उन्होंने न्यू थिएटर की कई फिल्मों में अभिनय किया, मिसाल के तौर पर 1936 की फिल्म मंजिल और 1937 की फिल्म प्रेसिडेंट। सन 1937 में आई फिल्म विद्यापति, जिसमें पृथ्वीराज कपूर के अभिनय की खूब प्रशंसा हुई। रंजीत मूवी टोन के बैनर तले निर्मित 1940 में आई फिल्म पागल में उन्होंने एंटी हीरो की भूमिका निभाई। सन 1941 में सोहराब मोदी की फिल्म सिकंदर के बाद पृथ्वीराज कपूर अभिनय की बुलंदी पर पहुंच गए।

1968 की एसएस वासन की फिल्म तीन बहुरानियां पृथ्वीराज कपूर के अभिनय की वजह से यादगार मानी जाती हैं। फिल्म तीन बहुरानियां में बच्चों के साथ डांस और मौज मस्ती करते नजर आते हैं पृथ्वीराज कपूर।

0: मुगले आजम में इस कलाकार ने शहंशाह जलालुद्दीन अकबर के किरदार को अमर कर दिया। कितनी भी बार देखी ये फिल्म, हर बार उसी तन्मयता से देखी जाती है।
1: क्या जलीला ही एक बागी का कसूर बख्शने के लिए तशरीफ लाए?
2: ये बदनसीब बाप से दुनिया शहंशाह कहती है, अपने रूठे हुए बेटे को मनाने आया है, उससे मोहब्बत मांगने आया है।
1: बेटे की मोहब्बत बर्बाद करके मोहब्बत चाहते हैं आप। शहंशाह बाप का भेस बदल कर आया।
2: शहंशाह रोया नहीं करते, बाप की आंखों में आंसू है। ये गरीब बाप शहंशाह अकबर के उसूलों से मजबूर है।
1: और सलीम अपनी मोहब्बत से।
2: शेखू मोहब्बत दिलों को फर्क कर सकती है, फौजों को नहीं। तुम्हारे जज्बात शहंशाह की बेपनाह ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते।
1: इसका फैसला जंग करेगी।
2: सलीम, शहंशाह के फैसले को जंग का इंतजार नहीं, जंग के नकारे की पहली चोग अनारकली की मौत का ऐलान कर देगी।

दिल्ली थिएटर कंपनी पृथ्वी थिएटर की स्थापना की। दीवार, पठान, गदर, दहेज, पैसा उनके प्रमुख नाटक थे। उनके अभिनय को उनके परिवार ने विरासत में पाया। पृथ्वीराज कपूर के बेटे हिंदी सिनेमा के बेमिसाल अभिनेता और निर्देशक राज कपूर की फिल्म आवारा में भी उन्होंने सशक्त अभिनय किया।

रंगमंच पृथ्वीराज कपूर का पहला प्यार था, इसीलिए वे 1931 में शेक्सपियर के नाटक पेश करने वाली ग्रांट एंडरसन थिएटर कंपनी से जुड़ गए। 1944 में उन्होंने अपनी लागत से खुद की

कपूर खानदान की कई पीढ़ियां एक साथ एक फिल्म में नजर आईं। फिल्म थी कल आज और कल। पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर और रणधीर कपूर।

सुरु पहले पर्दे पर अभिनय के कई बारीक पहलुओं को अपने सशक्त अभिनय से साकार करने वाले इस बेमिसाल फनकार को कैंसर जैसे भयंकर मर्ज ने घेर लिया और 29 मई 1972 को इस फानी दुनिया को वे अलविदा कह गए।

0: शोध, आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का था। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: जोधन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई से अनुप्रसारित कार्यक्रम FM बैंड 102.3 MHz पर। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हिसार केंद्र से। सुबह के 10 बजे हैं और अब समय है आप सभी के चहेते कार्यक्रम नमस्ते हिसार का।

नमस्ते हिसार, आप सुन रहे हैं आप सभी का अपना पसंदीदा कार्यक्रम नमस्ते हिसार, जहां बात होगी आपके अपने शहर की, अपने लोगों की और अपने हिसार की धड़कनों की। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी रेडियो हम सफर प्रीति ढिंडोरिया और अगले एक घंटे तक हम लेकर आएंगे स्थानीय खबरें, मौसम की जानकारी, रोचक बातें, प्रेरक व्यक्तित्व और वो दो सवाल जिनका करते हैं आप बेसब्री से इंतजार, क्योंकि जिनका जवाब सबसे पहले देने पर सुनवाए जाते हैं आप सभी के पसंद के गीत। सुबह के इस प्यारे

से शुरुआत में जहां अपनी मिट्टी की खुशबू हो और अपनों का प्यार हो, वही शहर सबसे खास होता है और वो है हमारा अपना नमस्ते हिसार। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हिसार और आसपास के इलाकों में मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार धूल भरी हवाओं और हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है, जिससे गर्मी से थोड़ी राहत मिलने के आसार हैं।

हिसार क्षेत्र में भूजल गुणवत्ता को लेकर एक कृषि अध्ययन चर्चा में है। अध्ययन में सिंचाई के लिए पानी की गुणवत्ता पर वैज्ञानिक सुझाव दिए गए हैं, जो किसानों के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं।

0: वर्मा जी को चाहिए सुबह सुबह ताजा खबरें। समाचार
1: कुछ इस प्रकार है, और मिसेज वर्मा को सिर्फ संगीत।
2: मैं अकेली घूमूं अकेली।
0: दादा दादी को मिल जाए कोई ऐसा जो उनके साथ उनके समय की बातें करे।
3: अभी न जाऊं छोड़ कर।
1: और बच्चों के लिए जरूरी है ज्ञान।
0: कैसा हो यदि सब कुछ मिले एक ही जगह एक ही समय पर?
1: सुनिए संपूर्ण पारिवारिक कार्यक्रम नमस्ते हिसार
0: रोज सुबह 10 बजे से 11 बजे तक
1: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
0: हिंदुस्तान जमीन है सितारों की।
4: अगर तुम्हारी आरजू एक तमीज है तो सारी जिंदगी इसी तरह जब्त करना होगा।
1: एक से बढ़कर एक उम्दा फनकारों की।
0: कोई साहित्य में सर्वश्रेष्ठ है?
5: न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता।
1: तो कोई विज्ञान में अद्वितीय है?
6: Will you be remembered as a great scientist, Saint Thomas Alva Edison?
0: कोई कला में उत्कृष्ट है?
1: तो कोई संगीत का शिरोमणि?
0: किंतु कोई है जो इन सब को ले आया है आपके लिए आपके घर में आपके बेहद करीब।
1: कार्यक्रम एक शख्सियत
0: हर सोमवार शाम 5 बजे
1: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
7: दोस्तों, अगर आप घर से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं, खेतों की ओर जा रहे हैं या फिर दिन भर की प्लानिंग कर रहे हैं तो सुन लीजिए आज के मौसम का पूरा हाल। हिसार में फिलहाल गर्मी का असर बना हुआ है और दिन के समय तेज धूप और गर्म हवाएं महसूस की जा सकती हैं। तापमान सामान्य से काफी अधिक रहने की संभावना है, इसीलिए दोपहर के समय निकलते हुए सावधानी बरतना जरूरी रहेगा। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार पिछले कुछ दिनों में भीषण गर्मी के बाद अब मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है। दिन के समय तापमान लगभग 42 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि रात के समय तापमान में थोड़ी गिरावट के साथ मौसम अपेक्षाकृत राहत भरा महसूस हो सकता है। गर्मी के कारण शरीर में पानी की कमी महसूस हो सकती है, इसीलिए पर्याप्त पानी पीते रहें। आज शाम या फिर देर रात के समय मौसम करवट ले सकता है। कुछ इलाकों में धूल भरी हवाएं, आंशिक बादल या फिर गरज चमक या हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हरियाणा के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट और तेज हवाओं का असर दिख सकता है। अगर आप किसान हैं तो मौसम में संभावित बदलाव को देखते हुए फसल और सिंचाई संबंधी निर्णय सोच समझ कर लीजिएगा। वहीं आम नागरिकों से अपील है कि दोपहर 12 से 4 के बीच अनावश्यक धूप से बचें, हल्के कपड़े पहनें और शरीर को हाइड्रेट रखें। तो दोस्तों, गर्मी अभी अपने तेवर दिखा रही है लेकिन राहत की उम्मीद भी नजर आ रही है। आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए और आकाशवाणी हिसार को सुनते रहिए। तो चलिए इस गर्म मौसम में इस गीत को सुनते हैं जिससे मन भी ताजा होगा और तन भी।

0: जहाँ मैं जाना चाहती हूँ तुमने चलोगे?
1: अजी कह के तो देखो,
0: जहाँ भीगा भीगा मौसम है

तो दोस्तों, बहुत प्यारा सा गीत आपने सुना है और अब खत्म होता है आपका इंतजार, क्योंकि अब बारी है हमारे सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की। और जो भी श्रोता सबसे पहले हमारे प्रश्नों का जवाब देंगे, उनकी पसंद का गीत सुनवाया जाएगा कार्यक्रम में। तो किस तरह से आपको जवाब देना है, आप एक बार ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले आपको हमारे प्रश्न का जवाब देना है, उसके बाद अपना नाम लिखना है, फिर जगह का नाम, और उसके बाद आपकी पसंद का गीत। और कहाँ पर भेजना है ये संदेश, तो आपको भेजना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ये संदेश। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9722-53272। तो चलिए, पहला प्रश्न हमारे कार्यक्रम का है, नवंबर 2007 में किस तूफान ने बांग्लादेश पर हमला किया? नवंबर 2007 में किस तूफान ने बांग्लादेश पर हमला किया? ये हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए डीन, ऑप्शन बी बुटिप, ऑप्शन सी सीडर, या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको जल्दी से जवाब देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9722-53272 पर। तब तक सुनिए ये प्यारा सा गीत।

हमारे पहले प्रश्न के जवाब जो हैं हमारे पास आ चुके हैं, हमारे श्रोताओं ने जवाब लिख भेजे हैं। हमारा प्रश्न था, नवंबर 2007 में किस तूफान ने बांग्लादेश पर हमला किया? ऑप्शंस थे ऑप्शन ए डीन, ऑप्शन बी बुटेप, ऑप्शन सी सीडर और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे आज के इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी सीडर। और सबसे पहले जवाब दिया है हमारे नियमित श्रोता हैं ये, गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी से रामधारी अवाना, प्रियांशी अवनी, रियांशी ओजस, अनाया गुरदीप और बेबी कीरत अवाना। और ये सुनना चाहते हैं जीने की राह फिल्म का गीत। तो सबसे पहले इन्होंने जवाब दिया है तो इनकी पसंद का गीत भी हम सुनवाएंगे। और हमारे ये दूसरे श्रोता हैं जिन्होंने सही जवाब दिया है, ये है जगदीश राय गर्ग जी, बस स्टैंड मानसा पंजाब से। और ये श्रोता हैं भोला कॉलोनी घरुंडा जिला करनाल हरियाणा से, बिजेंद्र कुमार जयजान, कांता रानी, गुंजन साहिल और वाणी जयजान। और हमारे ये श्रोता हैं वीरेंद्र भ्यान, शमशेर भ्यान, सुरेंद्र भ्यान और मनोज भ्यान, जेवरा गांव हिसार से। तो चलिए अब सुनवाते हैं हम हमारे श्रोता की पसंद का गीत। लेकिन गीत से पहले जान लीजिए आज के दूसरे प्रश्न के बारे में। हमारा दूसरा प्रश्न है, विश्व का प्रसिद्ध सेरागेती वन्य प्राणी अभयारण्य कहाँ पर है? विश्व का प्रसिद्ध सेरागेती वन्य प्राणी अभयारण्य कहां पर है? ऑप्शन है ऑप्शन ए केन्या में, ऑप्शन बी तंजानिया में, ऑप्शन सी जाम्बिया में या ऑप्शन डी युगांडा में। तो अपने जवाब हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9729253272 पर जल्दी से लिख भेजिए। तब तक सुनते हैं ये प्यारा सा गीत हमारे श्रोता साथी की पसंद का।

फ्रॉम रेडियो सेट्स टू रील्स 90 सालों से कनेक्ट है इंडिया की फीलिंग से, हर दौर की आवाज, हर जनरेशन का भरोसा, सेलिब्रेटिंग 90 इयर्स ऑफ आकाशवाणी हिसार, स्टिल आइकॉनिक, स्टिल कनेक्टिंग इंडिया।

हमारा आज का दूसरा प्रश्न था, विश्व का प्रसिद्ध सेरेंगेटी वन्य प्राणी अभयारण्य कहाँ पर है? केन्या में, तंजानिया में, जाम्बिया में या युगांडा में? इस प्रश्न का सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, तंजानिया में। तो इस प्रश्न का सही जवाब सबसे पहले दिया है गांव नलोई, तहसील सेवानी मंडी, जिला हिसार से सज्जन कुमार जांगड़ा, कार्तिक व वेदांश। इन्होंने पहले प्रश्न का भी बिल्कुल सही जवाब दिया था। जलालाबाद वेस्ट से है सुरेश गगनेजा, पूरम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा, ये हमारे श्रोता हैं। विजेंद्र कुमार जयजान, कांता रानी, गुंजन साहिल और वाणी जयजान, इन्होंने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है हमारे आज के इस प्रश्न का। और ये हमारे श्रोता हैं, इन्होंने पहले प्रश्न का भी सही जवाब दिया है और दूसरे प्रश्न का भी सही जवाब दिया है। गांव हांडी खेड़ा, जिला सिरसा, हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा। तो सबसे पहले जो आज के इस प्रश्न का जवाब दिया है वो है हमारे श्रोता सज्जन कुमार जांगड़ा जी, गांव नलोई, तहसील सेवानी मंडी, जिला हिसार से। और इन्हीं की पसंद का गीत बरसात की एक रात, इस फिल्म का गीत हम सुनेंगे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की युगल आवाजों में। तो चलिए सुनते हैं हमारे इन श्रोता की पसंद का गीत।

0: नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो, अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

दोस्तों, अब बारी है हमारी अगले सेगमेंट की। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते हिसार एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के हिसार केंद्र से, अपनी रेडियो हम सफर प्रीति ढिंडोरिया के साथ। तो दोस्तों, आज है एक खास दिन, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो मनाया जाता है हर साल 29 मई को, जो है आज। दोस्तों, एक ऐसा विशेष दिवस जिसके बारे में जानने का, जो समर्पण, साहस, मानवता और शांति का प्रतीक है, हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस की। हर साल 29 मई को ये दिवस दुनिया जो देश के अलग अलग संघर्षग्रस्त इलाकों में, क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के लिए काम करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि युद्ध, हिंसा या संघर्ष से जूझ रहे देशों में लोगों की सुरक्षा कौन करता है? ऐसे कौन से स्थानों पर जाकर लोगों को भरोसा देते हैं कि शांति फिर लौट सकती है? यही जिम्मेदारी निभाते हैं संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक, जिन्हें आम भाषा में यूएन पीस कीपर्स भी कहा जाता है। ये सैनिक केवल युद्ध रोकने का काम नहीं करते, बल्कि लोगों की सुरक्षा, मानवीय सहायता पहुंचाने, चुनाव में सहयोग, बच्चों और महिलाओं की रक्षा तथा शांति बहाली में अहम भूमिका निभाते हैं। इस दिवस की शुरुआत हुई साल 2002 में, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे मनाने का निर्णय लिया। 29 मई की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि इसी दिन वर्ष 1948 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र का शांति मिशन शुरू किया गया था। दोस्तों, शांति सैनिकों का जीवन इतना आसान नहीं होता। वे ऐसे क्षेत्रों में काम करते हैं जहां हिंसा, असुरक्षा, भय और तनाव का माहौल होता है। कई बार तो उन्हें अपने परिवारों से दूर रहकर कठिन परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, कई शांति सैनिकों का मानवता की रक्षा करते हुए अपने प्राण भी न्यौछावर किए हैं। इस दिवस पर ऐसे वीरों को श्रद्धांजलि भी दी जाती है। अगर बात करें भारत की, तो हमारा देश हमेशा से शांति मिशनों में एक महत्वपूर्ण योगदान देता रहा है। भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जिसने बड़ी संख्या में सैनिकों को विभिन्न देशों में शांति मिशन के लिए भेजा है। भारतीय सैनिकों ने अफ्रीका, एशिया और कई संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में सेवा देकर मानवता का परिचय दिया है। क्या आप जानते हैं, कई भारतीय महिला शांति सैनिकों ने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बहादुरी और सेवा का परिचय दिया है, जिससे भारत का सम्मान और गौरव और भी बढ़ा है। दोस्तों, इस दिवस का संदेश केवल सैनिकों का सम्मान करना नहीं है, बल्कि ये समझना भी है कि शांति किसी भी समाज की सबसे बड़ी ताकत है। अगर दुनिया में शांति रहेगी, तभी विकास, शिक्षा और खुशहाली संभव होगी। तो आइए इस संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर उन सभी वीरों को नमन करें जो अपनी सुरक्षा से पहले दुनिया की शांति को महत्व देते हैं। जहां शांति होती है, वहीं उम्मीद भी जन्म लेती है, और जहां उम्मीद होती है, वहीं बेहतर कल की भी शुरुआत होती है।

क्योंकि दोस्तों सिर्फ लड़ाई होना या ना शांति होना या फिर मन का सुकून, रिश्तों की मिठास, समाज में भाईचारा और एक दूसरे के लिए सम्मान, यही असली शांति है। कहते हैं जहां मन शांत होता है वहीं पर सही सोच भी जन्म लेती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब कहीं ना कहीं बेचैन हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, तनाव, प्रतिस्पर्धा। लेकिन अगर हम अपने शब्दों में मिठास, व्यवहार में धैर्य और दिल में करुणा रखें तो शायद हमारी छोटी छोटी दुनिया और भी खूबसूरत बन जाए।

क्योंकि दोस्तों हमारी जो छोटी सी दुनिया है हमारे इर्द गिर्द रहती है। कई बार तो ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि कहाँ पर क्या हो रहा है। हम सिर्फ अपने आप में मस्त होते हैं। अपने आप में मस्त होइए, लेकिन देश दुनिया की खबर रखिए, क्योंकि देश बनता है नागरिकों से और नागरिक हैं आप और हम जैसे लोग ही। सोचिए, अगर घर में शांति है तो परिवार खुश रहता है, समाज में शांति है तो लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, और अगर देश में शांति हो तो विकास होता है, और दुनिया में शांति हो तो इंसानियत मुस्कुराती है। शांति का मतलब सिर्फ युद्ध खत्म होना नहीं है, बल्कि दिलों के बीच दूरियां भी खत्म होना है। कभी-कभी बहस जीतने से ज्यादा जरूरी है रिश्ते बचाना। तो आइए खुद से एक छोटा सा वादा करते हैं, हम किसी की बात सुनेंगे, जल्दबाजी में निर्णय कभी नहीं लेंगे, नफरत नहीं बल्कि समझदारी फैलाएंगे, क्योंकि शांति बाहर नहीं, सबसे पहले हमारे भीतर जन्म लेती है। शांति कोई मंजिल नहीं है, एक आदत है जो दिलों को जोड़ती है, नफरत को तोड़ती है। तो दुनिया को बदलने से पहले हमें खुद को बदलना होगा, हमें हमारे व्यवहार को बदलना होगा। थोड़ी सी शांति लेकर आए तो शायद बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। मुस्कुराइए, संयम रखिए, प्रेम बांटिए और हमेशा गीत गुनगुनाते रहिए, क्योंकि संगीत में वो ताकत है जो मन को शांत करती है।

दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब मन जो है बेचैन होता है, तनाव हो या दिल उदास हो, और तभी कोई प्यारा सा गीत कानों में पड़ जाए तो मन जैसे धीरे धीरे शांत होने लगता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? संगीत हमारे मन को इतना सुकून और सुरक्षा का एहसास कैसे देता है? दरअसल संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये भावनाओं की भाषा है। जब हम मधुर संगीत सुनते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे तनाव से बाहर आने लगता है, जैसे कोई अपना कंधे पर हाथ रखकर कह रहा हो, सब ठीक है, हो जाएगा। संगीत की लय, उसकी धुन और शब्द हमारे मन की गति को प्रभावित करते हैं। धीमा और मधुर संगीत मन की बेचैनी कम करने में मदद करता है। कई बार हम अकेले होते हैं, लेकिन कोई पसंदीदा गीत हमें ऐसा महसूस कराता है जैसे कोई हमारे साथ है। यही एहसास तो मन को सुरक्षित करता है, जुड़ा हुआ महसूस करा सकता है। सोचिए, माँ की लोरी क्यों सुकून देती है? भक्ति संगीत सुनकर मन शांत क्यों हो जाता है? बारिश में पुराना गीत सुनते ही यादें क्यों मुस्कुराने लगती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि संगीत सीधा दिल से बात करता है। और जब मन परेशान हो तो कुछ लोग धीरे धीरे गुनगुनाते हैं, कुछ भजन सुनते हैं, कुछ पुराने फिल्मी गीत, और अचानक मन हल्का सा होने लगता है। संगीत जैसे हमारे भीतर जमा शोर को थोड़ा शांत कर देता है। किसी ने बहुत खूबसूरत बात कही है कि जहां शब्द कम पड़ जाएं, वहां संगीत बोलने लगता है। तो दोस्तों, अगर कभी आपका दिल भी भारी लगे, मन बेचैन हो या दिल उलझा सा लगे, तो अपने पसंदीदा गीतों को थोड़ा समय दीजिए। कभी-कभी एक धुन भी मुस्कान लौटा देती है। संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, कभी-कभी वो हमें संभाल भी लेता है। मन को सुकून और दिल को सहारा और जीवन को थोड़ी सी रोशनी भी देता है।

तो दोस्तों संगीत संगीत तो हमारे जीवन की एक ऐसी जो अमिट छाप है, अमिट जो ये कह लीजिए कि हमारी दवा है, जो हर मर्ज का इलाज है। आज का जो भागा दौड़ी का जीवन है, जो हमारी जीवन शैली हो गई है, इसमें हमें कहीं ना कहीं सुकून चाहिए होता है, और वो सुकून मिलता है हमें हमारे रेडियो के पास, हमें हमारे गीतों के साथ, हमें हमारी सरगम के साथ। तो दोस्तों, जब हम सुकून ढूंढने चलते हैं तो हम गीत ढूंढते हैं, तलाशते हैं, हम हमारे जितने भी जो तनाव है उनको भूलने के लिए, उनसे निजात पाने के लिए कोशिश करते हैं। और यकायक जब हम आराम कर रहे हैं या किसी बात के बारे में सोच रहे हैं और अचानक से कोई पसंद का गीत हमारे कानों में घुल जाता है, तो वो हमें कहीं ना कहीं बहुत सुकून देता है, और हमारा जो मन है वो शांत होता चला जाता है, और कहीं ना कहीं हमें हमारी समस्याओं का भी जवाब मिलता जाता है। इसीलिए तो कहा गया है कि जो संगीत है वो हर मर्ज

0: की दवा है। तो दोस्तों आज का जो नमस्ते हिसार कार्यक्रम है आप सुन रहे हैं आपकी अपनी रेडियो हम सफर प्रीति ढिंडोरिया के साथ एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी हिसार के साथ। हंसी बातों जानकारी यादों प्रेरणाओं और संगीत से सजे इस खूबसूरत से सफर का वक्त तो अब धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। सच कहें तो हर मुलाकात की सबसे मुश्किल बात ही यही होती है, विदा लेना। लेकिन एक प्यारी सी उम्मीद हमेशा रहती है दोबारा मुलाकात की, नई बातों के साथ, नई मुस्कान के साथ। तो दोस्तों आज हमने बातें की शांति की, मन के सुकून की और उस संगीत की जो बिना कहे बहुत कुछ कह जाता है, हमारे दिल की भाषा समझ लेता है। क्योंकि जिंदगी में कई बार ऐसे पल आते हैं जहां शब्द कम पड़ जाते हैं, लेकिन कोई धुन, कोई गीत, कोई पुरानी आवाज दिल को छू जाती है और मन जैसे धीरे धीरे कहता है सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों जीवन में भागा दौड़ बहुत है, जिम्मेदारियां बहुत है, कभी काम का दबाव तो कभी रिश्तों की उलझन, कभी मन की बेचैनी। लेकिन इन सब के बीच अगर हम खुद को कुछ पल दें, अपने मन की सुनी, अपनों के साथ बैठे मुस्कुरा लें और अच्छे संगीत के साथ थोड़ी देर खुद को जोड़ लें, तो शायद जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी, थोड़ी खूबसूरत लगने लगेगी। याद रखिए, शांति बाहर से नहीं मिलती, वो हमारे भीतर ही जन्म लेती है। जब हमारे शब्दों में मिठास होती है, व्यवहार में धैर्य होता है और सोच में सकारात्मकता होती है, तभी मन सच में शांत होता है। और संगीत, संगीत तो जैसे हमारे जीवन का वो साथी है जो हर मौसम में हमारे साथ चलता है। खुशी हो तो गीत बन जाता है, दुख हो तो सहारा बन जाता है, यादें हो तो मुस्कान बन जाता है और अकेलापन हो तो साथी बन जाता है। कभी माँ की लोरी में सुकून मिलता है तो कभी भजन में विश्वास, कभी पुराने गीतों में यादें तो कभी किसी नई धुन में नई उम्मीदें। एक छोटी सी बात जाते जाते अगर जिंदगी कभी बहुत तेज भागती लगे ना, तो कुछ पल रुक जाइए, आसमान को देखिए, गहरी सांस लीजिए और अपने पसंदीदा गीत को सुनिए और खुद से कहिए मैं ठीक हूं, सब ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस मुलाकात को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है नमस्ते हिसार का ये सफर आपके दिल को थोड़ा सुकून, चेहरे पर थोड़ी मुस्कान और मन में कुछ अच्छे विचार दे गया होगा। जाते जाते हम एक बात आपसे कहना चाहेंगे कि जिंदगी की राहों में थोड़ा सुकून बचाए रखना, भीड़ में भी अपने मन को मुस्कुराए रखना। जिंदगी की राहों में थोड़ा सुकून बचाए रखना, भीड़ में भी अपने मन को मुस्काए रखना। जब थक जाए दिल दुनिया की आवाजों से, तो संगीत की छांव में खुद को बैठाए रखना। और एक बात याद रखिएगा हमेशा कि हर रात के बाद नई सुबह आती है और हर मुश्किल के बाद आसानियां मुस्कुराती है। बस हिम्मत, उम्मीद और मुस्कान का साथ कभी भी मत छोड़िएगा। मैं हूं आपकी अपनी रेडियो हम सफर प्रीति ढिंडोरिया। अब चाहती हूं आज के नमस्ते हिसार कार्यक्रम से लेना आपसे विदा। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी का हिसार केंद्र। दिन के 11 बजे हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई से अनुप्रसारित कार्यक्रम। कृपया अनुप्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
1: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए प्रोग्राम रंग तरंग।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

0: बरसात की रात, इस फिल्म से ये कव्वाली अभी आप सुन रहे थे मन्ना डे, आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा और साथियों की आवाजों में। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था, रोशन का संगीत था।
1: कुछ बातें अनकही दिल में दबी रह जाती हैं, जो कभी तपिश, कभी खलिश और कभी घुटन बनकर हमेशा सताती हैं। इसीलिए जो कहना है कह दो, वरना ये अनकही यादें बनकर तमाम उम्र तुम्हारा पीछा करेंगी।

मीठे बोल जाने मन जो मुस्कुरा के बोल दे तो धड़कनों में आज भी शराबी रंग घोल दे। ओ सनम मैं तेरा आशिक जागदा, ओ सनम।

0: ये गीत अभी आप सुन रहे थे वक्त फिल्म से, मनाडे की आवाज में साहिल लुधियानवी ने इसे लिखा और रवि का संगीत।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग। अलीशा की आवाज में ये गीत अलीशाज लव नोट्स एल्बम से।

अलीशा की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे अलीशाज लव नोट्स एल्बम से। अलीशा और नितिन रायकवार ने इसे लिखा, संदीप चौटा का म्यूजिक। तन्हा दिल एल्बम का नाम है, शान की आवाज में ये गीत।

0: आवाज में ये गजल अभी आप सुन रहे थे जब तेरे शहर से, अशोक खोसला की गजल्स की एल्बम से गीत अभी हमने चुनकर आपको सुनवाया।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

फिल्म लेकिन से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को, गुलजार ने इसे लिखा था। और अब सोनू निगम की आवाज में ये गीत जान एल्बम से। निखिल विनय का संगीत है, फैज अनवर ने इस गीत को लिखा है।

0: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठी की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: घुसपैठियों को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिन में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई। श्री शाह गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र

0: सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और BSF के जवानों से मुलाकात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन आज वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों देशों के मंत्रियों ने आर्थिक विकास और व्यवसायों के लिए व्यावसायिक अवसरों में वृद्धि करने पर द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश संबंधों की पुष्टि की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक टेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला किया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास और किसान समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति चौधरी चरण सिंह की अटूट प्रतिबद्धता को हमेशा याद रखा जाएगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मिला जुला असर देखा गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 36 अंक बढ़कर 75,904 पर था। निफ्टी 25 अंक की गिरावट के साथ 23,882 पर कारोबार कर रहा था। IPL क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

फिल्म शोर से ये गीत अभी आप सुन रहे थे मन्ना डे, महेंद्र कपूर, श्यामा और साथियों की आवाजों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। और आज यादों की महफिल में वो गीत जो जीवन पर या जिंदगी पर आधारित हैं, और गीतकारों ने अपने अपने तरीके से अपने अपनी परिस्थितियों के हिसाब से जिंदगी के बारे में लिखा है।

मुकद्दर का सिकंदर। इस फिल्म से आप किशोर कुमार को सुन रहे थे। अनजान ने इसे लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी। आज यादों की महफिल में जीवन के अलग अलग रंगों को, भावों को खूबसूरती से लिखे गीतों में जिन्होंने पिरोया है, वो गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: भूपिंदर और अनुराधा पौडवाल को आप सुन रहे थे दूरियां फिल्म से। जयदेव का संगीत था और सुदर्शन फाकिर ने इसे लिखा।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: कुमार सानू अनुराधा पौड़वाल की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशिकी फिल्म से। नदीम श्रवण का संगीत और समीर ने इसे लिखा था।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

जिंदगी इत्तफाक है, ये गीत अभी आप सुन रहे थे आदमी और इंसान फिल्म से आशा भोसले महेंद्र कपूर की आवाजों में। रवि ने संगीत दिया था और साहिर लुधियानवी ने इस गीत को लिखा था।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: क्यों कर रहे हो? कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की

फिल्म आंधी से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में। गुलजार ने इस गीत को लिखा था और संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

फिल्म हम दोनों से गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था और जयदेव का संगीत था। इसके साथ ही यादों की महफिल कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत आप सबका आज के इस प्रोग्राम सुरीला सफर में। मैं हूं अनुराधा और आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हमारी तरफ से एक टेक्स्ट या इबारत लिखी जाती है, पोस्ट की जाती है, उसमें से आपको शब्द चुनने होते हैं और साथ ही उन शब्दों से कौन कौन से गीत शामिल हो सकते हैं ये बताना होता है। आपके प्यार भरे संदेश और गानों की लिस्ट मुझ तक पहुंच चुकी है। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज इसके प्रोग्राम की और साथ ही ये भी देखते हैं कि आपके गीतों की लिस्ट कितनी मेल खाती है हमारी लिस्ट से। लेकिन जो गीत आप चाहते हैं वो लिख भी सकते हैं उन शब्द

से, चाहे वो लिस्ट में शामिल हो या ना हो सकता है कि मैसेजेस देखते देखते उनको भी शामिल कर लिया जाए। लेकिन एक बार इबारत जरूर फिर से पढ़ देते हैं, है ना, हमारे उन श्रोताओं के लिए जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, उनके लिए इस इबारत को फिर से पढ़ दें और फिर शुरुआत करेंगे आज के इस प्रोग्राम की। इबारत कुछ इस प्रकार है, तुम्हारी जुल्फों की छांव में ये दिन क्या रात भी ठहर जाए, निगाहों का काजल मेरे दिल में उतर जाए, कजरे की महक जब हवाओं में खो जाए, मेरा प्यार तुम्हारे इशारे पे हर हद से गुजर जाए, बिंदिया की चमक जैसे चांदनी का सफर, पायल की छनक लगे कोई मीठा सा असर, जब तुम्हारी निगाहें मुझे चुपके से पुकारे, दिल की हर धड़कन बस तेरा ही नाम गुनगुनाए, तुम्हारे ख्यालों का मौसम अब रुकता ही नहीं, ये दिल तुम्हारे बिना कहीं लगता नहीं, वादा किया था तुम्हारे साथ चलने का कभी, पर्वत भी झुक जाते जब होते तुम पास कभी, तुम्हारे इशारों ने ऐसा जादू मुझ पर कर दिया, तुम्हारे इशारों ने ऐसा जादू मुझ पर कर दिया, इस प्यार ने मुझे शायर कर दिया। चलिए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ और उसके बाद लेते हैं आपके संदेश।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई से अनुप्रसारित कार्यक्रम एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हिसार केंद्र से। दिन के 1:05 होने को है। अब से चंद पलों के बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से अनुप्रसारित। कृपया अनुप्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत पंजाब हरियाणा सहित 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
1: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
0: हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा 11 मई से 11 जून राज्य व्यक्ति मुफ्त पशु टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। विभाग के महानिदेशक डॉक्टर प्रेम सिंह ने स्वयं विभिन्न जिलों में चल रहे टीकाकरण का जाकर निरीक्षण किया। डॉक्टर प्रेम सिंह ने बताया कि विभाग की टीमें घर घर जाकर गायों और भैंसों को मुंहखुर और गलघोंटू जैसे जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए एक ही संयुक्त टीका लगा रही है, जिससे कि पशुओं को संक्रामक वायरस और बैक्टीरियल संक्रमण से बचाया जा सके, ताकि दुग्ध उत्पादन प्रभावित न हो और पशु की जान बचाई जा सके। अब तक विभाग द्वारा कुल 55,00,000 पशुओं में से 18,00,000 पशुओं को टीकाकरण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पशुपालकों को ये सुविधा निःशुल्क दी जा रही है। विभाग द्वारा टीकाकरण के लिए चलाई जा रही मोबाइल वैन के बारे में डॉक्टर प्रेम सिंह ने कहा,
2: केंद्र सरकार की योजना है जिसके तहत 1,00,000 एनिमल के ऊपर एक वैन का प्रोविजन किया गया है। अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र सिंह सैनी जी ने निर्देश दिए हैं कि इस समय बढ़ाया गया, क्योंकि अभी समय जो चल रहा है इसका 12 से लेकर रात 8 बजे तक है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसको 6 से लेकर रात 10 बजे तक का किया गया, जो की अभी प्रक्रिया दिन है। इसका खास फायदा क्या है कि इसमें जो हमारा एक टोल फ्री नंबर

0: होता है 1962, जिससे कोई भी फॉरवर्ड कॉल करेगा तो उस कॉल से उसको रिवर्ट बैक उसको वापिस फोन आ जाएगा कि उसके घर पे डॉक्टर कितनी देर तक पहुंच जाए।
1: कृषि एवं कल्याण विभाग द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत कृषि यंत्रों पर 50% अनुदान दिया जाएगा। पलवल में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डॉ. बाबूलाल ने बताया कि किसान योजना का लाभ लेने के लिए 15 जून तक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के उपरांत 25 जून को उपायुक्त की अध्यक्षता में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ड्रॉ निकाला जाएगा।
2: डीआरएम स्वरूप रेजिड्यू मैनेजमेंट स्कीम के तहत हमारे पास टारगेट आ रहे हैं। इसमें 12 मशीनें हैं जो हमारे आने वाले टाइम में सीआरएम जो स्ट्रबल बर्निंग उसको मैनेजमेंट करने के लिए काम आएंगी और 15 तारीख तक किसान भाई अपने रजिस्ट्रेशन करवा के इसका लाभ ले सकते हैं। इसमें सुपर सीडर है और बेलर मशीन भी है, हे रेक है और सुपर सीडर भी है और रोटरी स्लेसर है। इसमें
1: योजना के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए किसान कृषि अभियंता कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। सरकार द्वारा अनुदान की राशि सीधे किसानों के खाते में डाली जाएगी। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में आंधी, बादल गरजने और बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में आज 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है, जबकि 30 तारीख को इक्का दुक्का जगहों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। आज और कल कई जगहों पर और 31 तारीख को इक्का दुक्का जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। हरियाणा और चंडीगढ़ में आज इक्का दुक्का जगहों पर ओलावृष्टि होने का अनुमान भी जताया गया है। पंचकुला के रामगढ़ स्थित टीबीआरएल रेंज ने 31 मई को होने वाले हाई कैलिबर बस परीक्षण को लेकर एडवाइजरी जारी की है। प्राप्त पत्र के अनुसार यह परीक्षण 31 मई को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक वायुसेना के उच्च अधिकारियों की देखरेख में किया जाएगा। इस हाई कैलिबर बम के ट्रायल से उड़ने वाले कण आसमान में 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई और जमीन पर 2 किलोमीटर के रेडियस तक के गांव भानू और गांव बिल्ला स्प्लिंटर प्रभावित हो सकते हैं। स्थानीय प्रशासन को इन गांवों में लोगों को इस समयावधि के दौरान घर के अंदर रहने के दिशा निर्देश जारी करने की सलाह दी गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार अनुप्रसारित किए गए आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी का हिसार केंद्र। दिन के 1:10 हुए हैं और अब समय है विविध भारती मुंबई से अनुप्रसारित रंगारंग कार्यक्रमों का।
4: गीतों के साथ जुड़े हैं, संगीत के साथ जुड़े हैं और संगीत अगर जिंदगी में हो तो जिंदगी खुशहाल हो जाती है। साथ ही सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यारे से संदेशों का। और हमारे जो साथी है फेसबुक के, वो भी एक दूसरे का स्वागत करते हैं। एक श्रोता कहते हैं कि आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, विविध भारती के सभी कार्यक्रमों में व्यस्त रहे, यही शुभकामनाएं हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप एक दूसरे का भी अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। ऐसा लगता है एक ऐसी जगह है जहां पर हम सब मिल बैठे हैं इस वक्त और बातें कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा ये अनुभव है और बहुत ही प्यारा ये एहसास है। हमारे श्रोता कहते हैं कि प्रेम में ऐसा ही होता है, सारी दुनिया हसीन नजर आने लगती है। प्रेम से गुंधे गाए कुछ शब्द अपने आप जुबान पर चढ़कर महकने लगते हैं। ये जुल्फ, ये काजल कविता बनकर दिल में उतर आते हैं और गीत की शक्ल में कब ढल जाते हैं पता ही नहीं चलता। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि आज के शब्दों के आधार पर गाने चुनने का मजा ही कुछ और है। विविध भारती को सुनते रहिए और मजे लेते रहिए। हमारे एक और श्रोता ने आंखों का काजल, पायल की खनक, उसकी बिंदिया का आकर्षण, चांदनी आदि आदि इन शब्दों को चुना है और कहा है कि मोहब्बत से पूर्ण शायराना इबारत, इबारती सफर का इंतजार है। बहुत बहुत धन्यवाद। सफर का इंतजार खत्म हुआ और हम सफर में हैं। कभी कभी मन इतना उदास होता है कि किसी काम में मन नहीं लगता और न ही संगीत से कोई खुशी मिलती है। तब दिल में उस ईश्वर को याद करना चाहिए, उनके पास बैठकर रोना चाहिए, उन्हें अपनी उलझनें बतानी चाहिए। लेकिन आज जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत से शुक्राने निकले, बहुत सारी चीजों के लिए उन्होंने शुक्रिया अदा किया और फिर हमें ऐसा लगता है कि कितनी सारी

चीजें हैं जिसके लिए हम शुक्रिया अदा कर सकते हैं, लेकिन हम उन चीजों की तरफ ध्यान देते हैं जिनसे हमें तकलीफ है या जो हमारी जिंदगी में नहीं है। ये बहुत ही खूबसूरत मैसेज है, खूबसूरत संदेश है आप सभी के लिए कि क्यों ना हम उन चीजों का शुक्रिया करें जिंदगी में हर रोज, हर सुबह सबसे पहली चीज। और कहते हैं ना कि जब हम धन्यवाद करते हैं ऐसी चीजों का और गिनते हैं कि हमारी जिंदगी में कितनी अच्छी चीजें हैं, तो भगवान हमें वो ही और देता है, भर भर के देता है। हमारे साथी लिखते हैं कि बहुत बढ़िया और खूब इबारत उकेरा है, किसी शायरा से आप कम नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके साथ रहकर संगत का सर है ऐसा कहूंगी मैं। और साथ ही हमारे और श्रोता हैं जिन्होंने कहा है कि आज का ये जो गद्यांश है श्रृंगार रस में सरोवर है, और बहुत सारी शब्द जो उनको नजर आ रहे हैं, जुल्फ, निगाह, काजल, कजरा, महक, बिंदिया, पायल, चांदनी, वादा, इशारा, ख्याल, धड़कन, दिल, इनमें पिरोकर मोहब्बत के एहसास को दर्शाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, श्रृंगार रस में आज की इबारत जरूर है और गीत भी बहुत ही खूबसूरत होंगे। चलिए हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ, लेकिन लेकिन ये जो गीत अभी आपने सुना कजरा मोहब्बत वाला, यहाँ पर मीना बाजार की बात की गई थी, है ना। मीना बाजार, जौहरी बाजार, इस तरह के बाजार खूब लगते थे और खूब आज भी पॉपुलर हैं, आज भी उनके नामों से हम पहचान जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि जब से ये मॉल या सुपरमार्केट्स या ऑनलाइन सामान हम घर पे मंगवा लेते हैं, चाहे हमें एक चीज की जरूरत हो चाहे 100 चीजों की जरूरत हो, तो कहीं ना कहीं बाजारों का जो चलन है या बाजारों की परंपरा कहीं खो गई है। आप मुझे लिख भेजिए ना कि आपने ऐसे कौन कौन से बाजार घूमे हैं और क्या क्या शॉपिंग की है, कौन कौन से ऐसे बाजार हैं जो हम भूलते चले जा रहे हैं। मुझे आपके संदेशों का इंतजार है। आप मैसेजेस भेजिए, तब तक ये गीत।

प्रेम पर्वत इस फिल्म से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को, और जान निसार अख्तर ने इस गीत को लिखा था, जयदेव का संगीत था, और इस गीत के लिए बहुत से संदेश मुझ तक पहुंचे। ऐसा लग रहा है जैसे गर्मी में ये ठंडी छांव की तरह आया है ये गीत, है ना। मैं भी इससे इत्तेफाक रखूंगी बिल्कुल। साथ ही साथ हमारी एक साथी लिखती है कि ये मेरा पहला संदेश है मगर सुनती हमेशा ही हूँ, देर से आने के लिए माफी चाहूंगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप बिल्कुल देर से नहीं आए, आप इस प्रोग्राम में और बहुत बहुत स्वागत आपका। साथ ही साथ जब हम बात कर रहे थे बाजारों की, तो दिल्ली का लाल किला, मीना बाजार घूमा है, इन्होंने एक साथ ही लिखते हैं, और बार बार यही नाम फिर से आ रहा है, लाल किला, मीना बाजार, दिल्ली का पहाड़गंज, पालिका बाजार घूमे हैं, और बड़े मॉल में भी मीना बाजार नाम की दुकान दिखी जाती है। बिल्कुल, बाजारों की अगर बात की जाए तो कुछ और बाजारों के नाम अगर आ जाए तो मजा आ जाएगा। और वहां पर आप क्या क्या शॉपिंग करना पसंद करते हैं, या फिर आपको यही आरामदायक लगता है कि चलो ऑनलाइन हम लोग करवा लेते हैं ऑर्डर और सामान घर पर आ जाएगा। मॉल में घूमने का मजा कुछ और है, और सुपरमार्केट्स में एक ही जगह से हर तरह की चीजें खरीदने का भी मजा कुछ और है। तो आपकी राय इसमें क्या है, मैं ये जानना चाहती हूँ। साथ ही ये जो गीत अभी आप सुन रहे थे प्रेम पर्वत से, ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये किन पर फिल्माया गया है, आप इसका जवाब भी मुझे दें, मुझे इंतजार रहेगा। चलिए बढ़ते हमारे अगले गीत की तरफ, और आपके इन दो जवाबों का इंतजार, यानी कि प्रेम पर्वत किस पर फिल्माया गया है, और साथ ही साथ बाजारों के नाम और वहां पर क्या शॉपिंग कर सकते हैं, मुझे लिख लीजिए। चलिए

आ गले लग जा इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। साहिर लुधियानी ने इसे लिखा था और आर डी बर्मन की तर्ज। और बाजारों की बात हुई थी और खूब सारे संदेश मुझ तक पहुंच गए हैं। एक हमारे साथी लिखते हैं कि हमारे शहर जयपुर का जौहरी बाजार खरीदारी शौकीनों के लिए स्वर्ग समान है, खरीदारी के शौकीनों के लिए। जी हाँ, और यहाँ आभूषण और कपड़ों की दुकानों से भरे पड़े हैं, आभूषण और कपड़ों की दुकान भरी पड़ी है। यहाँ साड़ियों, लहंगों और पारंपरिक जूते चप्पल का अद्भुत संग्रह मौजूद है और साथ ही रेस्टोरेंट भी है वहां पर, LMB। जी हाँ, बिल्कुल घूमा हुआ मैंने जौहरी बाजार भी। और एक और हमारे साथी लिखते हैं कि साप्ताहिक बाजार लगते हैं वहां जहां वो रहते हैं, जहां घूमने का आनंद ही कुछ और है। साथ ही हमारे एक साथी है जो ओडिशा से लिखते हैं कि वहां भी मेला लगता है, बाली यात्रा कहा जाता है उसे, और ये मेला महानदी के किनारे लगभग 4 किलोमीटर लंबे इलाके में लगता है और लाखों दुकानें इसमें लगती है, करोड़ों की भीड़ जुड़ती है और बहुत सी बातें इन्होंने लिखी है कि बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत अच्छी बात है। और एक हमारे साथी लिखते हैं कि हमारा ये बड़ा घर ही तो है विविध भारती और सभी श्रोता आपस में सखा मित्र भाई बहन है। फेसबुक पर हमारा पोस्टकार्ड समझ लीजिए जिसके माध्यम से हम सुख दुख की चर्चा, आपस में हालचाल पता कर लेते हैं। हमारे एक साथी ने मीना बाजार दिल्ली के बारे में चर्चा की है और काफी कुछ लिखा है कि यहाँ पर पारंपरिक कपड़े, हस्तशिल्प और काफी लजीज स्ट्रीट फूड के लिए जाना जाता है और ऐतिहासिक छत्ता बाजार भी लगता है यहाँ पर लाल किले के अंदर। जी हाँ, और वहां पहुंचने के लिए भी कैसे पहुंचा जाए, बहुत खूबसूरती से उन्होंने पूरा गाइडेंस दिया है, पूरा रास्ता समझाया कि कैसे आप वहां तक पहुंच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही सूरत से हमारे साथी लिखते हैं कि चौरा बाजार है वहां पर, जहां पर ना घूमे तो बेचैनी सी लगती है, तो वो काफी घुमक्कड़ है और घूम के आते हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि शिमला का माल रोड घूमे हैं और वहां से दुपट्टे खरीदे हैं और वहां पर लकड़ी के भी काफी सामान मिलते हैं, बहुत ही खूबसूरत लकड़ी के पर्स मिलते हैं। जी हाँ, मैं काफी पहले घूमी हूँ तो काफी कुछ लिया है वहां से, की चेन वगैरह तो है ही, लेकिन साथ में पर्स भी मिलते हैं लकड़ी के और बहुत सी दूसरी चीजें मिलती हैं माल रोड शिमला में। लखनऊ में अमीनाबाद का गड़बड़ झाला यहाँ भी घूमा हूँ, शॉपिंग भी की है, रेवड़ी और गच्चक भी खाई है। अरे वाह, सर्दियों में इसका मजा ही कुछ और होता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि हैदराबाद का नाइट बाजार जो कि रात भर खुला रहता है और वहां पर हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की दुकानें रहती है, एक बार जाने का मौका मिला था। और इसके अलावा दिल्ली के पास पंचकुला में भी हाट बाजार लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंचाते रहिए और हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

लेकिन वो बात कहा मोहम्मद रफी को आप सुन रहे थे फिर वही दिल लाया हूँ इस फिल्म से। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा था और ओपी नैयर का संगीत। साथ ही इन गीतों को सुनते हुए हमारे एक श्रोता कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि इतनी भरी चिलचिलाती धूप में ठंडे गानों की बौछार हो रही है और विविध भारती को सुनते हुए मन प्रसन्न हो रहा है और सुखद प्राप्ति हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इन प्यारे संदेशों के लिए, जिस तरह से हम गीतों की बौछार कर रहे हैं ठंडक दिलाने के लिए, और आपके जो संदेश है वो हम तक पहुंचकर हमें ठंडक दिला रहे हैं। बिल्कुल। और बाजारों की बात अगर हम करते हैं तो हमारे निमाड़ का एक प्रसिद्ध हाट है जो भगोरिया हाट कहलाता है, जो होली के 7 दिन पहले से लगता है। भगोरिया हाट का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि ये आदिवासी समाज को अपनी जड़ों से जोड़ता है। और यहाँ पर क्या क्या मिलता है, यहाँ पर पान खिलाना और गुलाल एक दूसरे पर रंग डालना सामाजिक भाईचारे को प्रगाढ़ करता है। जी हाँ, देखिए आज कितना कुछ पता चल रहा है हमें। हमारे एक और साथी कहते हैं कि मैं ज्यादातर अपने लोकल मार्केट या मॉल से ही शॉपिंग करती हूँ। शॉप पर जाकर चीजों को हाथों से चुनना, परखना और चीजों को खरीदने का एहसास कुछ अलग होता है, संतुष्टि भी मिलती है इससे। और ऑनलाइन मंगाते हैं तो बहुत सारी फालतू की चीजें भी आ जाती हैं जिसकी एक्चुअली जरूरत नहीं होती है, और नई चीजों को एक्सप्लोर भी कर लेते हैं वहां जाकर जरूरत पड़ने पर। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी साथी ने बहुत ही सटीक सा जवाब दिया है। साथ ही एक और बाजार के बारे में बात हो रही है। हमारे साथी लिखते हैं कि मेरा शहर वडोदरा, यहाँ गुजरात का प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र है और यहाँ के बाजार और मेले इस शहर की जीवंत परंपराओं और समृद्ध इतिहास को दर्शाते हैं। जी हाँ, यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट्स भी मिलता है, कपड़े भी काफी अच्छे मिलते हैं और बेहतरीन डाइनिंग विकल्प मिलेंगे यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। और काफी लंबा मैसेज दिया है इन्होंने और जरूर आप पढ़ें और जरूर यहाँ पर घूमने जाएं। साथ ही साथ एक और साथी लिखते हैं कि प्रसिद्ध बाजार अजमेर के डिगी बाजार, नाला बाजार, दरगाह बाजार, नया बाजार और भीलवाड़ा के भी प्रसिद्ध बाजार है, सांगानेर बाजार, पवन बाजार, आजाद बाजार। जी हाँ बिल्कुल, मैं वाकिफ हूँ इससे भी क्योंकि यहाँ पर भी मैं घूमी जरूर हूँ। तो कितना अच्छा लगता है ना, अलग अलग जगह की जानकारियां मिल रही हमें। हमारे एक और साथी कहते हैं कि साप्ताहिक घाट तो हर जिला गांव में लगते हैं, बिहार के बांका जिले में एक जगह कपड़ों की हाट लगती है जहां हाथ के बने हुए कपड़े मिलते हैं। महाराणा हाट बुनकरों द्वारा बनाए हुए सिल्क और सूती कपड़े गमछे वो ले लेती हैं। भोपाल हाट भोपाल में एक प्रमुख बाजार है जहां विभिन्न प्रकार के सामान मिलते हैं। यहां जड़ी बूटियां और आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ साथ मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा और जूट उत्पादों जैसे स्थानीय रूप से बने सामान मिलते हैं। और यहां पर काफी सारे हस्तशिल्प और वैकल्पिक चिकित्सा विकल्पों का पता लगाने के लिए एक शानदार जगह बताता है। जी हाँ, यहाँ पर जाकर आपको इन सब चीजों के बारे में जानकारी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आज तो बहुत ज्ञानवर्धक मैसेज मुझ तक पहुंच रहे। चलिए हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ और आपके मैसेजेस पर मैं आती हूँ।

फिल्म मोहरा से गीत अभी आप सुन रहे थे साधना सरगम और पंकज उदास की आवाजों में। इंदिवर ने इसे लिखा था और विजू शाह का संगीत था। आपके संदेशों तक पहुंची हूं मैं और साथ ही साथ ये भी जानना चाहती हूं कि कौन कौन से शब्द और कितने गीत आपकी लिस्ट के हमारे साथ मैच किए, ये भी तो हमें जो बताइए। बाजारों की बातें तो चलती है, चलती रहेगी। चलिए बाजारों की बात चलिए तो कुछ उस बारे में बताया जाए कि एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे शहर इंदौर में सराफा बाजार बहुत प्रसिद्ध है। ये राजबाड़ा के नजदीक है जिसमें ज्वेलरी, फैशन के सामान के साथ कचौड़ी, समोसे, मिठाई सभी कुछ मिलता है। बहुत ही स्वादिष्ट और खरीदारी का मजा तो बाजार में ही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में ऐसा बाजार लगता है जहां मुर्गों की लड़ाई कराई जाती है। जी हाँ, ये भी हमारे एक श्रोता लिखते हैं। और एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि बाजार तो अब गांव तक पहुंच रहे हैं, फिर शहरों की बात ही क्या। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि अमृतसर में गुरुद्वारे में दर्शन किए उन्होंने, गोल्डन टेम्पल में, और उसके आसपास काफी घूमे हैं। वहां पर अमृतसरी नान और लस्सी भी पी है, वहां का पापड़ बढ़िया भी, क्या बात है, स्वाद आ जाता है। बिल्कुल, अमृतसरी नान वहां का बहुत ही स्वादिष्ट है। राजस्थान के उदयपुर जिले में बड़ा बाजार है जहां हस्तशिल्प, अच्छी डिजाइन की मोजड़ियां, सांगानेरी प्रिंट के कपड़े, लकड़ी से निर्मित वस्तुएं भी मिलती है। हमारे एक और साथी हमें लिखते हैं कि हमारे शहर कटक में चांदी की महीन कारीगरी की जाती है, तारकशी इसे कहते हैं शायद, और लोग दूर से चांदी के कोणार्क, चक्र आदि महीन वस्तुएं खरीदते हैं। दूर से आते हैं और ये वस्तुएं यहां से खरीद के जाते हैं। साथ ही हमारे एक और साथी ने लिखा है कि कुछ समय पहले वे नैनीताल गए थे और वहां के मशहूर मार्केट माल रोड, बड़ा बाजार, भोटिया मार्केट से गरम स्वेटर, बैग्स, बैंगल्स और शोपीस खरीदे थे। बहुत भीड़ वाला मार्केट था वो। इटारसी में भी एक मार्केट है, बाजार है, जिसे पटवा बाजार कहा जाता है शायद, अगर मैं सही से इसे बता पा रही हूं तो। और यहां पर शादी के काफी सारे सामान मिलते हैं, शादी की शॉपिंग की जाती है और श्रृंगार का भी काफी कुछ सामान मिलता है। ऐसे ही भोपाल में गौहर महल है जहां पर लगभग पूरे साल हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट से संबंधित क्राफ्ट्समैन को प्रोत्साहन देने के लिए मेला लगाया जाता है और ये जगह तालाब के पास होने से बहुत ही सुंदर है। ऐसे ही पीपली गांव जो कि पूरी जिले में है, वहां पर भी काफी प्रसिद्ध रंगीन छतरियां, गृह सज्जा का सामान और कैनोपी से बने जो चीजें हैं वो मिलती है। कैनोपी खरीद कर लेकर जाते हैं लोग बाग, लैंप कवर आदि। जी हाँ, बाजारों की बात की जाए तो भिंडी बाजार बॉम्बे, इसका भी जिक्र आया है। हमारे श्रोता लिखे हैं कि बहुत पहले यहां पर आए थे और घूमे थे, लेकिन इसका नाम क्यों पड़ा है वो कुछ समझ नहीं आया। काफी सारे एंटीक्स यहां पर मिलते हैं और काफी लंबा मैसेज है तो मैं बहुत लंबा ये पूरा मैसेज नहीं पढ़ूंगी, लेकिन हाँ, भिंडी बाजार को भी शामिल किया जाएगा। साथ ही एक और श्रोता लिखते हैं कि हैदराबाद का बेगम बाजार बहुत

बाजारों की बातें तो हो ही रही है, तो ऐसे में एक हमारे साथी लिखते हैं कि लखनऊ का अमीनाबाद एक अच्छा बाजार है, सस्ता महंगा हर कैटेगरी की दुकानें हैं यहाँ पर, कपड़े बर्तन जूते सोने चांदी, अच्छे रेस्टोरेंट भी है यहाँ पर और हर तरह के सामान मिलते हैं, स्कूल की ड्रेसेस आदि भी बहुत मिलती हैं यहाँ पर, उसका भी बड़ा बाजार है। और साथ ही साथ बाजारों की बात की जाए, जी हाँ, कहने को गोरखपुर में हिंदी बाजार माया बाजार है, लेकिन सिंगार के सामान कपड़े और आभूषण हिंदी बाजार में और इलेक्ट्रॉनिक के सामान माया बाजार में मिलते हैं। हमारे एक और साथी कहते हैं कि मैं दिल्ली की करीब करीब सभी मार्केट में घूमी हूँ, चांदनी चौक की गलियों में बहुत घूमी हूँ मैं। गानों की बात की जाए तो हमारे श्रोता कहते हैं कि अभी तक मेरे बताए कोई भी गीत नहीं आए हैं और उन्हें इस चीज का दुख हो रहा है, लेकिन देखिए ना, एक से बढ़कर एक गीत आ रहे हैं और साथ ही साथ कितनी सारी बातें हो रही है, ये क्या काम है। आप हमारे साथ बने हैं और हम आपके साथ बने हैं। विक्टोरिया मार्केट की बात भी हुई है यहाँ पर, जिसमें पहले चाट की दुकानें थी लेकिन अब किताबों का मार्केट है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि गानों की कोई लिस्ट उन्होंने जारी नहीं की है, बस वो हमारे साथ हैं, हमारा साथ दे रहे हैं और जो भी गीत बज रहे हैं वो बस बड़े अच्छे मन से सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही कश्मीर की कली का शानदार गीत, इसकी प्रशंसा की है और ये भी लिखा है कि शम्मी कपूर का अनोखा अंदाज देखने को मिलता है इस, खासकर इस गीत में, जो कि बहुत अच्छी बात है। और गीत तो हम एक से बढ़कर लेकर आए हैं आपके लिए और अब इसी फेहरिस्त में यह अगला गीत।

कश्मीर की कली इस फिल्म से गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाजों में। और आप सबने इस गाने की डिटेल्स तो लिखी दी है मुझे,

सुरीला सफर का वक्त अब खत्म होने को है, लेकिन आपके प्यारे प्यारे संदेश अब तक है मेरे पास। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज पूरे 1000 कमेंट तक पहुंचने वाले थे, लेकिन थोड़े से रह गए, लेकिन किसी दिन इतने सारे कमेंट्स के साथ जरूर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। गोरखपुर में गोलघर भी है, नौका विहार भी है, भारत का सबसे लंबा स्टेशन रामगढ़ ताल भी घूमकर आए हैं ये। बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं SH बिहारी के लिखे बोल बहुत ही सीधे और दिल में उतरने वाले होते हैं, और ये जो गीत अभी इन्होंने सुना ये बहुत ही अच्छा लगा। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इतने प्यारे और मीठे संदेशों के लिए। और मैं अनुराधा इजाजत चाहती हूँ आज इस प्रोग्राम से जिसका नाम है सुरीला सफर। आप बने रहे विविध भारती के संग। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 30वीं कड़ी।

0: राष्ट्रीय सभा का 21वां अधिवेशन 27 दिसंबर 1905 को बनारस में हुआ। नरमपंथियों के नेता नामदार और प्रखर देशभक्त गोपाल कृष्ण गोखले इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अगस्त महीने से बंग भंग विरोधी आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन भड़का हुआ था। उसी समय प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए। कुछ रियासतों के साथ ब्रिटिश समर्थक प्रतिष्ठित लोगों ने खुशी जताते हुए उनका स्वागत किया। इतना ही नहीं, इस वाराणसी अधिवेशन में उनके भारत आगमन पर आनंद व्यक्त करते हुए इस आशय का प्रस्ताव भी पारित किया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे रविंद्रनाथ को कांग्रेस की यह राजभक्ति बिल्कुल पसंद नहीं आई। वे लिखते हैं,
1: राजपुत्र आए, मुल्क के सभी पात्रों के पुत्रों ने उन्हें घेर लिया, अन्य कोई भी वहां प्रवेश न पा सका। इस घेरे पर कोतवाल पुत्रों का पहरा लग गया, इसलिए उन्हें शिरोपा प्राप्त हुआ। इसके बाद ढेर सारे पटाखे छूटे और राजपुत्र जहाज पर चढ़कर वापस चले गए।

भी इस अधिवेशन से राजसत्ता के विरुद्ध उपयोग की जाने वाली नेताओं की नरम भाषा धीरे धीरे बदलने लगी। बंग भंग विरोधी आंदोलन की शुरुआत में ही अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचारों की खबरें देश भर में पहुंच चुकी थीं। इस आंदोलन में बंगाली जनता के पीछे देश की संपूर्ण भारतीय जनता खड़ी है, इसका एहसास इस अधिवेशन से हुआ। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर बंगाल के विभाजन को रद्द करने का आह्वान ब्रिटिश राजसत्ता से किया गया।

वंदे मातरम की दृष्टि से यह अधिवेशन स्मरणीय रहा। रविंद्रनाथ की बड़ी बहन स्वर्ण कुमारी की बेटी सरला देवी चौधरानी और उनके पति रामभुज दत्त इस अधिवेशन में उपस्थित थे। सरला देवी का हाल ही में विवाह हुआ था। भगिनी निवेदिता और उनकी सहकर्मी अबला बसु भी अधिवेशन में उपस्थित थीं। अधिवेशन शुरू हुआ और दर्शकों में से आग्रह होने लगा कि सरला देवी चौधरानी वंदे मातरम गीत गाएं। सरला देवी चौधरानी एक उत्तम कवियत्री और गायिका भी थीं। श्रोताओं के इस आग्रह से अध्यक्ष नामदार गोखले चिंतित हो गए। बंग भंग विरोधी आंदोलन की पृष्ठभूमि के कारण वंदे मातरम शब्दों के उच्चारण पर भी जिलाधीश ने प्रतिबंध लगा दिया था। ऐसे समय में मंच से ही वंदे मातरम का गायन होना नरमपंथी गोखले जी को खतरनाक लगने लगा। अंततः श्रोताओं के आग्रह के कारण उन्होंने सरला देवी से कहा कि वंदे मातरम की शुरुआती कुछ पंक्तियां ही गाएं, परंतु सरला देवी ने अपने मधुर स्वर में वंदे मातरम गाना शुरू किया और पूरा गाकर ही समाप्त किया।

वंदे मातरम की घोषणाओं से सारा अधिवेशन गूंज उठा। इसी समय सरला देवी ने ये गीत गाते हुए सप्त कोटि कंठ इन शब्दों की जगह त्रिशत कोटि कंठ शब्द बदल दिए। वंदे मातरम के शब्दों में किया गया ये पहला बदलाव था। इस अधिवेशन में एक और ऐतिहासिक घटना घटी, वो ये कि भारत के पहले राष्ट्रध्वज का प्रदर्शन इसी अधिवेशन में पहली बार हुआ। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भी एक ध्वज के नीचे नहीं लड़ा गया था। ब्रिटिश राज सत्ता से जूझते समय अपनी स्वतंत्र पहचान वाला भारत का राष्ट्रध्वज होना चाहिए, ये विचार सन 1900 के बाद सामने आया। 1905 में बनारस में हुआ

0: इस कांग्रेस अधिवेशन में पास के एक अलग मंडप में स्वदेशी वस्तुओं की एक प्रदर्शनी लगाई गई थी। इस प्रदर्शनी के बीचों बीच भारत का कहा जाने वाला पहला ध्वज जानबूझकर प्रदर्शित किया गया था। विशेष बात ये कि पूरी तरह भारतीय संकल्पना वाले इस ध्वज की मूल परिकल्पना जन्म से विदेशी और मन से पूरी तरह भारतीय बन चुकी मार्गरेट नोबल यानी भगिनी निवेदिता की थी।
1: लाल रंग के इस वर्गाकार ध्वज पर बीच में इंद्र के वज्र का पीले रंग का चित्र था। इस चिन्ह के एक ओर वंदे और दूसरी ओर मातरम, ये बांग्ला लिपि के शब्द थे। ध्वज के किनारों पर 108 पीली ज्योतियां थी। यह ध्वज उस प्रदर्शनी में केवल प्रदर्शित हुआ, उसे कहीं भी फहराया नहीं गया, इसलिए इसे पहले ध्वज का दर्जा नहीं मिल सकता। फिर भी तैयार किया गया यह आद्य राष्ट्र ध्वज ही माना जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन रहे वंदे मातरम शब्दों का इस पहले ध्वज पर उपयोग किया जाना सबसे महत्वपूर्ण बात है। वंदे मातरम शब्दों का महत्व और सामर्थ्य जैसे जैसे सामान्य जनता के ध्यान में आने लगा, वैसे वैसे अंग्रेज सरकार को उसका उपद्रव महसूस होने लगा। सरकार ने वंदे मातरम गाने या शब्द उच्चारने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रतिबंध के कारण वंदे मातरम का प्रभाव और बढ़ने लगा। भंग भंग विरोधी आंदोलन को वंदे मातरम, स्वदेशी का समर्थन, विदेशी माल का बहिष्कार, इन बातों ने और अधिक बल दिया।
0: अगस्त को टाउन हॉल में हुई सभा के कारण बंगाल के विभाजन का आम जनता में जो विरोध था, उस सभा में उसकी हुई तीव्र निंदा और स्वदेशी का आग्रह, ये बातें पूरे देश में फैल गईं। उसमें से पहली बड़ी चिंगारी महाराष्ट्र के पुणे में गिरी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपने समाचार पत्र केसरी में बंगाल के विभाजन पर और कर्जन पर अत्यंत कठोर शब्दों में टीका की थी। स्वतंत्रता वीर विनायक दामोदर सावरकर उस समय पुणे में फर्ग्यूसन महाविद्यालय में पढ़ रहे थे। 1 अक्टूबर को एक सभा बुलाकर युवा सावरकर ने पुणे के लोगों से विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने का आह्वान किया।
1: इस सभा में समाचार पत्र काल के संपादक शिवराम महादेव परांजपे और नची केड़कर उपस्थित थे। इस सभा के बाद बाहर गांव से लौटे लोकमान्य तिलक तक ये बात पहुंची तो उन्होंने विदेशी कपड़ों की होली और बड़े पैमाने पर करने का सुझाव दिया। 7 अक्टूबर 1905 के दिन लकड़ी पुल के पास मुठा नदी के किनारे पूरे पुणे में घूमकर इकट्ठा किए गए और जुलूस के साथ बड़ी गाड़ी पर लादकर वहां लाए गए विदेशी वस्त्रों की होली की गई। इस होली की आग ब्रिटिशों के लंदन स्थित राज सिंहासन तक पहुंचे बिना नहीं रहेगी, ऐसा भाषण उस समय लोकमान्य तिलक ने दिया। वंदे मातरम की घोषणाओं के बीच जलती लपटों ने पूरा वातावरण उज्जवल कर दिया। पुणे में हुई विदेशी वस्त्रों की उस विशाल होली के बाद पूरे देश भर में ऐसी होलियां जलने लगी।
0: 1905 के अंतिम 4 महीने ऐसे ही जबरदस्त हलचल के बीते। विभाजन विरोधी आंदोलन की तीव्रता बढ़ी, फिर भी नए आए लॉर्ड मिंटो ने कर्जन की ही नीति आगे चलाई। कर्जन और फुल्लर के जैसे बागबान न छोड़ते हुए इस आंदोलन के नेताओं को कभी मीठी मीठी बातों से फुसलाकर तो कभी धमकी देकर कार्रवाई का डर दिखाकर इस आंदोलन की हवा निकालने का वे प्रयास कर रहे थे, परंतु आंदोलनकारियों का निश्चय और पक्का होता गया, जिससे लॉर्ड मिंटो भी दमन की नीति और कड़ाई से लागू करने लगे। इसी आंदोलन के कारण पूरे विश्व को ब्रिटिश राजसत्ता के उन्मत्त, अमानवीय और हिंसक व्यवहार का दर्शन हुआ। उसके लिए निमित्त बने वे वंदे मातरम शब्द और बारिसाल में हुआ राष्ट्रीय सभा के युवाओं का अधिवेशन।
2: सेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भ्रम, वेदों से भी वंदनीय है। जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।
3: वंदे मातरम एक जय घोष, इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 30वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर और मंदाकिनी जोशी, गायिका अपर्णा केलकर, संगीतकार अजय पराड़, तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

0: सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल, इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान, कई राज्यों में लू की संभावना। हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। एक रिपोर्ट।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनः परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के सम्पन्न की जाएगी।
2: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है और री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: छात्रों को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है। उन्होंने स्वीकार किया कि छात्रों के विश्वास को ठेस पहुंची है। श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच त्रुटि रहित परीक्षा आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
2: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है, हमारे ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ, जो शिक्षक

0: को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए, उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारा प्रयास।
1: परीक्षा प्रक्रिया में भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों के बारे में श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए समझौता करने पर ओडिशा सरकार, इंटेल और 3DGS को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और सुधारों तथा नीतिगत समर्थन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। आंध्र प्रदेश के दो दिन की यात्रा के दौरान आश्रय सिंह ने कृष्णा जिले के मल्लावल्ली औद्योगिक पार्क में स्थित मोहन स्पिनटेक्स कंपनी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत के वस्त्र बाजार का कारोबार 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक है और सरकार वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक करने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक स्तर पर अधिक पहचान मिली है।
2: 12 साल अगर कंपेयर करूं मैं तो एक ही चीज कहा, इकोनॉमी में, एक्सपोर्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो जो बेसिक चीजें हैं एजुकेशन में, IIT, एम्स, मेडिकल कॉलेज, ये कई ऐसे सवाल हैं। मोदी ने बेसिक चीजों को 12 साल में ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है बल्कि नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक अभूतपूर्व सफलता थी जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 4 दिन में ही युद्ध विराम के लिए विवश कर दिया। ये भारत के अब तक के लड़े गए सभी युद्धों से अलग था। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर स्मृति प्रकाशन जारी करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये प्रकाशन केवल ऐतिहासिक विवरण तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें वीर सैनिकों के व्यक्तिगत अनुभवों को भी समाहित किया गया है। श्री सिंह ने कहा कि ये आधुनिक युद्ध के मानवीय पहलू की भी झलक देता है जहां नेतृत्व, साहस, दबाव में निर्णय लेने की क्षमता और प्रतिबद्धता रणनीति को सफलता में बदल देती है। रक्षा मंत्री ने इस प्रकाशन से प्रेरणा लेने और देश की सुरक्षा तथा संप्रभुता को सुनिश्चित करने और बलिदान योग्य नागरिक बनने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आंतरिक और वैश्विक शांति प्राप्त करने के लिए भक्ति और ध्यान को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। आज बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इंटरनेशनल सेंटर के 45वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भक्ति स्वयं, परिवार, समाज, राष्ट्र और मानवता के प्रति समर्पण का प्रतीक है। रिजर्व बैंक ने आज अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि ऊर्जा की ऊंची कीमतों, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक बाजार में अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बाद भी मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी कारक चालू वित्त वर्ष में भारत के विकास गति को बनाए रखेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉरपोरेट और बैंकिंग क्षेत्रों की स्वस्थ बैलेंस शीट, साथ ही पूंजीगत व्यय पर सरकार का निरंतर ध्यान आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करेगा। इसमें भू राजनीतिक संकट और पश्चिम एशिया संघर्ष, वैश्विक विकास तथा मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाली प्रमुख चिंताओं के रूप में उभरे हैं।

0: संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज संसद भवन परिसर में संसदीय कार्य मंत्रालय के हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मेघवाल ने कहा कि बैठक में सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रभावी, सरल और व्यापक उपयोग पर सार्थक चर्चा हुई। श्री मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिंदी भाषा को सुशासन, जनभागीदारी और लोकतांत्रिक संवाद का एक सशक्त माध्यम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुज जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है। ईरान की सरकारी एजेंसी ने बताया है कि ईरान के प्रस्तावित पारगमन शुल्क को लेकर जारी तनाव के बीच इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने 24 घंटों में 23 वाणिज्यिक जहाजों को जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दी। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। सशस्त्र सीमा बल ने 2 थाई महिला नागरिकों को भारत नेपाल सीमा के खारीबारी क्षेत्र से नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया। ये महिलाएं फर्जी आवेदन मोहरों का इस्तेमाल कर नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थीं। जांच जारी है। दिल्ली सरकार 21 जून को होने वाली नीट UG परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को दिल्ली परिवहन निगम की सभी बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उम्मीदवार वैध प्रवेश पत्र दिखाकर मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली एकीकृत अगली पीढ़ी की विमानन, मौसम और कोहरे की निगरानी प्रणाली स्काईकास्ट का उद्घाटन किया। ये उद्घाटन मिशन मौसम के अंतर्गत किया गया है। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि इस नई प्रणाली का उद्देश्य हवाई अड्डे पर मौसम की निगरानी और कोहरे के पूर्वानुमान को मजबूत करना है।
1: आज हम विमानन क्षेत्र के जरिए देश को एक इंटीग्रेटेड मौसम निगरानी सिस्टम समर्पित कर रहे हैं। यह सिस्टम हवाई यात्रियों, एयर क्रू और पायलटों को मौसम का सटीक अनुमान लगाने में सक्षम बनाएगा, खासकर उस समय जब कोहरे और धुंध वाले मौसम में प्रदूषण और हवा में मौजूद अन्य कणों के कारण दृश्यता काफी प्रभावित होती है। यह एक इंटीग्रेटेड उपकरण स्काईकास्ट के माध्यम से संभव होगा।
0: मौसम विभाग ने जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में देश भर में सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए विभाग के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि जून माह में देश की औसत वर्षा सामान्य से कम रहने की सबसे अधिक संभावना है।
2: 2026 के जून से सितंबर के दौरान पूरे देश में सामान्य से कम बारिश होने का सबसे ज्यादा संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में सामान्य वर्षा होने का संभावना है। अभी जून महीने के तापमान की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में तथा महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में सामान्य से अधिक हीट वेव कंडीशन डेवलप होने का उम्मीद किया जा रहा है। हालांकि राजस्थान और झारखंड में सामान्य से कम उष्ण लहर होने का संभावना है।
0: मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों के लिए तूफान और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिमी राजस्थान और

0: विदर्भ के कुछ हिस्सों में आज भी लू चलने की आशंका है। रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इस स्पर्धा में पदक जीतने वाली वे पिछले 25 वर्ष में पहली भारतीय महिला बनी। वहीं महिला ट्रिपल जंप में साधना रवि ने रजत पदक जीता। नितिन गुप्ता ने पुरुष वर्ग में 5000 मीटर पैदल चाल का खिताब जीता। पुरुषों के अंडर 18 एशिया कप में भारत ने आज जापान के काका मिगाहरा में कजाकिस्तान पर 13-0 की शानदार जीत दर्ज की। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने दिवंगत नेता की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल। इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान। कई राज्यों में लू की संभावना। और हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: झनक झनक पायल बाजे, इस फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में हसरत जयपुरी ने से लिखा, वसंत देसाई का संगीत था।
1: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता।

0: ಕತ್ತಾಗಿರೋಲಿ. दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी.
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को.
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी. 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप.
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम.
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग.
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको.
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे.
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे.

गीत गाया पत्थरों ने, ये था फिल्म का नाम। किशोरी अमोनकर और सखियों की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे विविध भारती से।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति।

0: जो शहीद हुए
1: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

0: फिल्म बंदिनी से आप ये गीत सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा था और संगीत दिया था एसडी बर्मन ने। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नव में यही समाप्त होता है।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: आप सभी सुनने वालों को आपकी सखी चंचल वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है, जिसे हम एक बार गवा दें तो फिर वापस कभी नहीं पा सकते। सखियों, वो अनमोल पूंजी है समय। दुनिया भर की दौलत लुटाकर भी हम गुजरा वक्त नहीं खरीद सकते। बीता हुआ एक भी पल कभी वापस नहीं आता। सखियों, हम भी आपके समय की कीमत को समझते हैं। आप सब लगातार प्रयास करती हैं हमारे साथ फोन पर जुड़ने के लिए। आप अपना सारा काम छोड़कर लगातार अपना समय हमें देती हैं। और देखिए ना, स्टूडियो के फोन की घंटी लगातार बज रही है, तो देखें पहला कॉल कहाँ से आया है और किस सखी ने हमें ये कॉल किया है। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली जी, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, नाम बताइए अपना, कौन बोल रही हैं और कहाँ से बात कर रही हैं?
1: मैं संगीता फुलमाली बात कर रही हूँ, इंदौर से, न्यू चित्रा नगर वेलो सिटी के पीछे से।
0: संगीता जी, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: जी, मेरा बुटीक है, मैं ब्लाउज वगैरह बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड भी कटिंग मास्टर है, तो रेडीमेड फ्रॉक उनकी कटिंग करते हैं, फैंसी।
0: तो आप दोनों का काम अलग अलग रहता है या एक साथ मिलकर काम करते हैं आप?
1: जी, वो मतलब मार्केट भी जाते हैं तो वहीं पे दुकान पे मतलब कटिंग वगैरह करते हैं, कारीगर हम बनाते हैं माल।
0: अच्छा,
1: और मैं घर पे ब्लाउज वगैरह बनाती हूँ।
0: तो आप ऑर्डर्स किस तरह लेती हैं, किस तरह से आपको ऑर्डर्स मिलते हैं, इस बारे में कुछ बताएंगे हमें?
1: जी, मेरा तो गिराक के काम है मैम, मैं मतलब ब्लाउज वगैरह लेडीज को नहीं आती है बनवाने के लिए। हाँ, सूट सलवार राजस्थानी पोशाक तो बना लेती हूँ।
0: आपने कहीं से सीखा था या?
1: जी, सीखा था मैम, और मेरे पति भी।

0: ट्रांसफर हुए पहले से तो उन्होंने और मुझे ज्यादा ट्रेन कर दिया।
1: और पिछले कितने सालों से आप इस काम को कर रही हैं?
0: मैं कम से कम 6-7 सालों से कर रही हूँ।
1: अच्छा, इसके अलावा हाँ। जिस तरह से आजकल बैग बनाने का काम भी बहुत चल रहा है, ऐसे काम भी करती हैं सिर्फ जो महिलाओं की पोशाकें हैं वही बनाती हैं आप?
0: सिर्फ पोशाक होनी है ना वही बनाती हूँ, ब्लाउज सब।
1: अच्छा, आपके अलावा घर में और कौन कौन है आपके?
0: मेरे पति है और मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है 10 साल का पूरा कम्प्लीट।
1: अच्छा, और काम करते करते आप रेडियो भी सुनती रहती हैं?
0: जी, मैं रेडियो तो मैं कई सालों से सुन रही हूँ, कम से कम 10-15 साल से ज्यादा ही हो गए, और मेरा पहली बार कॉल लगा है इसमें।
1: आपको बहुत बहुत बधाई, आपका कॉल लग गया। अब ये बताइए कि आप आज गीत कौन सा सुनना चाहती हैं?
0: जी, थानेदार फिल्म का, और भला क्या मांगू मेरा बुफे, मुझे तेरा प्यार मिला।
1: आपको
0: मैं मेरे पति का नाम लेना चाहूंगी मैम।
1: हाँ जी मैम, ले लीजिए।
0: उनका नाम है गुड्डू फुलमाली और राजवाड़े पे मतलब मास्टर है, कटिंग करते हैं।
1: तो आपको सुनवाते हैं थानेदार फिल्म का, आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: आप कौन बात कर रही हैं?
1: हम प्रेरणा प्रलखन लरे नांदेड़ से बात कर रहे थे।
0: नांदेड़ से प्रेरणा बात कर रही हैं?
1: हाँ हाँ हाँ।
0: प्रेरणा जी कैसी हैं आप?
1: हाँ बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। प्रेरणा जी मुझे बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं घर पे हूँ, मेरे बीए तक पढ़ाई हुई है
0: जी,
1: और मुझे अभी अंधत्व आया है। मैं 100% अब अंधी हो गई हूँ। उसके बाद मैंने एक्यूप्रेशर एंड मसाज का कोर्स किया। अभी मैं हजारों पेशेंट अच्छी करती हूँ।
0: बहुत अच्छी बात
1: और
0: है।
1: घर का सारा काम भी करती हूँ।
0: देखिए इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती कि कई बार

0: बार हमारे अंदर ऐसी कोई कमी आ जाती है चाहे अनचाहे, लेकिन उससे उबर कर हम दूसरों के लिए प्रेरणा बन पाते हैं। तो आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, खुद को भी संभाल रही हैं, अपने परिवार को संभाल रही हैं, और कितने अन्य लोग हैं जिन्हें आप अपनी सेवाएं दे रही हैं।
1: हाँ, बहुत सारे लोग हैं, उनकी बहुत पीड़ा मैंने बहुत अच्छी तरह से ठीक किया उनको।
0: तो किस तरह का काम होता है आपका, बताएंगे?
1: कौन से भी पेशेंट आए, मैं लेडीज को ही देखती हूँ, और स्पर्श किया तो किस नाड़ी में क्या प्रॉब्लम है ये मुझे समझ में आता, स्पर्श करने के बाद ही।
0: सिर्फ नाड़ी देखकर तो आप रोग का पता लगा लेती हैं?
1: हाँ हाँ, नाड़ी देखकर सिर्फ मैं स्पर्श कर सकती हूँ, उसके बाद का कोई मुंह टेढ़ा होना, अर्धांग वायु, पेट का दर्द, घुटनों का दर्द, पीठ का दर्द, ऐसे सब मैंने ठीक किए हैं।
0: और जो रोगी होते हैं इन्हें ठीक होने में कितना समय लग जाता है?
1: ज्यादा दिन से रोगी है तो ज्यादा दिन लगेंगे, कम है तो कम लगेंगे। एक लड़का मेरे पास आया था, 6.5 साल का बच्चा था, वो जन्म से ही कभी चलता ही नहीं था, लेकिन मैंने उसको 1.5 महीने में अपने पैरों पे खड़ा किया और 3 महीनों में वो काठी के सहारे चलना सिखाया।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। उन माता पिता को कितना अच्छा लगा होगा आपके उपचार के बाद में कि जो बच्चा चल नहीं सकता था उसे आपने अपने पैरों पर खड़ा कर दिया।
1: बहुत उनको अच्छा लगा, उन दिनों में बहुत दुआई दी।
0: उपचार के लिए आप कोई दवाइयाँ देती हैं या
1: नहीं? दवाइयाँ नहीं, मैं सिर्फ अपने स्पर्श से नाड़ी देखती हूँ और उसके एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाती हूँ और मसाज करती हूँ।
0: आप रेडियो किस वक्त सुनती हैं फिर, क्योंकि मरीजों को देखने के बाद में आपको कब समय मिलता है रेडियो सुनने के लिए?
1: वो चालू ही रहता है रेडियो, क्योंकि मैं घर पे ही मरीज को देखती हूँ, दिखाई नहीं देता इसलिए मैं कभी नहीं जाती बाहर।
0: अच्छा।
1: घर का खाना बनाना, बच्ची को स्कूल भेजना, पेशेंट देखना, काम करते करते ये सुनती भी हूँ और काम भी करती हूँ।
0: आपकी बच्ची कितनी बड़ी है?
1: मेरी बच्ची अभी 8 साल की है।
0: तो फिर तो बड़ी मुश्किल होती होगी आपको उसे भी संभालने के लिए?
1: नहीं, मुझे कुछ मुश्किल नहीं होती, अंदर से मुझे बहुत सारी निसर्ग ने शक्ति दी है। बीच में ही ऐसे अंदर तो आने के बाद कोई भी ऐसे ही हो जाता, लेकिन मैं अपनी हिम्मत से खड़ी हुई और मैंने 2 साल की बच्ची अडॉप्ट की।
0: प्रेरणा जी, आपका जो नाम है, आप इसे सार्थक कर रही हैं, आप बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बन रही हैं, और हमें भी बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानकर, आपकी कहानी सुनकर। अब ये बताइए कि आप कौन सा गीत आज सुनना चाहती हैं?
1: मेरे बच्चे को बहुत अच्छा लगता है तो यादों की बारात का, चुरा लिया है मैंने ये दिल को।
0: आपको सुनवाते हैं यादों की बारात फिल्म का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और शुरू करते हैं सिलसिला सखियों के फोन कॉल्स का। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: नमस्ते सहेली जी, बताइए कौन बोल रही हैं और कहाँ से आप बात कर रही हैं?
1: मैं उत्तराखंड से पुष्पा डोबरियाल बोल रही। मैम
0: पुष्पा डोबरियाल
1: जी
0: उत्तराखंड से बात कर रही हैं?
1: जी मैम।
0: उत्तराखंड के कौन से शहर से बात कर रही हैं?
1: देहरादून शहर से बोल रही मैम।
0: अरे बहुत खूबसूरत शहर है आपका।
1: जी मैम थैंक यू। और मैम तो आपके प्रोग्राम सारे सुनते हैं मैम।
0: मैडम हमें देहरादून के बारे में कुछ बताइए। बहुत खूबसूरत शहर है और ये ऐसा शहर है इस समय पर खास तौर पर वहाँ चहल पहल रहती होगी क्योंकि जब गर्मी से लोगों को
1: आजकल तो बहुत ट्रैफिक इतना है मैम कि बहुत मतलब यात्री कई कई टूरिस्ट आते रहते हैं। मसूरी है यहाँ से और ऋषिकेश राम झूला लक्ष्मण झूला और हरिद्वार यहाँ से सारे आते रहते हैं यहाँ पे।
0: आपने जितनी भी जगहों के भी नाम लिए ना ये सब वो जगह है मध्य भारत में और उत्तर भारत में गर्मी बहुत तेज हो जाती है ना तो उस गर्मी से राहत के लिए ऐसी जगह पर ही जाना लोग पसंद करते हैं और वहाँ का जो वातावरण है
1: मसूरी हो गया केदारनाथ हो गया बद्रीनाथ हो गया हेमकुंड साहिब हो गया और हरिद्वार ऋषिकेश यहाँ पे तो टूरिस्ट बहुत ज्यादा आ रखे मैम आजकल।
0: अच्छा आप बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं तो घर पे ही रहती मैम।
0: पुष्पा जी घर पर समय काटने के लिए आपका सबसे पसंदीदा काम कौन सा होता है?
1: मेरे को तो साफ सफाई अच्छी लगती है मैम और रेडियो सुनना।
0: अच्छा रेडियो के कौन से प्रोग्राम आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं?
1: सखी सहेली हेलो फरमाइश।
0: आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: पतंग फिल्म का गाना सुना दीजिए।
0: तो आपको सुनाते हैं पतंग फिल्म का गाना जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेनी मैडम।
0: हाँ बताइए, आप कौन बोल रही हैं?
1: हम आरती वर्मा बोल रहे कानपुर से। हाँ
0: कानपुर से आरती जी बात कर रही हैं। आरती जी, कानपुर में तो बहुत गर्मी होगी ना इस समय,
1: हाँ मैं गर्मी तो पड़ रही बहुत।
0: और अभी गर्मियों की छुट्टी भी चल रही होंगी बच्चों की,
1: हाँ छुट्टी चल रही है।
0: तो बच्चों को बाहर जाने से रोकना पड़ता होगा ताकि वो धूप में जाकर परेशान ना हो जाएं।
1: हाँ मैडम जी, घर में रखते, निकलने नहीं देते, बाहर बहुत धूप रहती है, इसी वजह से अंदर रखते हैं बच्चों को।
0: आरती, आप क्या करती हैं बताइए?
1: हम घर में रहते मैडम, घर ही के काम काज करते हैं।
0: अच्छा, आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आज?
1: हम नगीना का सुनेंगे, तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा।
0: नगीना फिल्म का ये गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन सी सखी बात कर रही हैं हमसे?
1: मैं त्रिपुरा से, मैं बुल्टी दास बोल रही हूँ।
0: बुल्टी दास त्रिपुरा से बात कर रही हैं
1: जी।
0: क्या करती हैं आप?
1: मैं हाउसवाइफ।
0: जी, मुझे बताइए कि आप विविध भारती सुनती हैं?
1: जी जी मैम सुनती है। हेलो सहेली, हेलो फरमाइश।
0: इसके अलावा आपके परिवार में और कौन कौन है?
1: एक बेटा दुई बेटी।
0: एक बेटा और दो बेटियां हैं आपकी?
1: हस्बैंड।
0: अच्छा मुझे बताइए, त्रिपुरा जो शहर है इसका मौसम कैसा रहता है? यहाँ सर्दी गर्मी ज्यादा होती है या बारिश ज्यादा होती है?
1: बारिश बारिश बारिश होती है मैम, ज्यादा बारिश।
0: तो अभी तो बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, फिर वहाँ बहुत बारिश होंगी।
1: जी मैम, बहुत बारिश चलते हैं।
0: सखी आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म का नाम अंधा कानून, गाने का भूल है रोते रोते हंसना।
0: रोते रोते हंसना सीखो, ये अंधा कानून फिल्म का गाना है जो आज आप सुनना चाहती हैं।
1: जी
0: आपको सुनवाते हैं बुल्टी दास जी आपकी पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और शुरू करते हैं सिलसिला सखियों के फोन कॉल्स का। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: सहेली अपना नाम बताइए, आप कौन बोल रही हैं और किस शहर से आपने कॉल किया है हमें?
1: मेरा नाम मोनिका साहू है, मैं बोरिया खुर्द रायपुर छत्तीसगढ़ से बात कर रही हूँ।
0: मोनिका साहू जी, अपने बारे में कुछ बताइए हमें कि आप क्या करती हैं?
1: मैं बीएससी फोर्थ सेम में हूँ अभी और मेरे अभी फोर्थ सेम के फाइनल एग्जाम चल रहे हैं।
0: अच्छा, आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही हैं और आपको रेडियो सुनने के लिए समय मिल जाता है अपनी पढ़ाई, स्कूल कॉलेज वगैरह सबसे?
1: हाँ, कभी कभी नहीं मिल पाता तो फिर मैं मोबाइल में सुन लेती हूँ, और जब मिलता है फोन तो मतलब या फिर नहीं मिलता घर में सुनती हूँ। हमारे घर में हम लोग सभी रेडियो में सुनते हैं विविध भारती।
0: और मोबाइल पर जब आप सुनती हैं तो न्यूज ऑन एयर ऐप पर सुनती हैं?
1: नहीं, मैं ज्यादातर तो यूट्यूब पे ही सुनती हूँ क्योंकि उसमें लाइव और सारे वीडियोस मिल जाते हैं मुझे मेरे सुनने वाले पे, जैसे सखी सहेली, हेलो फरमाइश, ये सब मैं सुनती हूँ।
0: तो जो पुराने प्रोग्राम है उन्हें सुनती है या लाइव सुनती है यूट्यूब पर आप?
1: लाइव भी सुनती हूँ और पुराने प्रोग्राम भी सुनती हूँ मैं।
0: आप लाइव सुनना चाहती हैं तो न्यूज ऑन एयर ऐप के जरिए आप सभी प्रोग्राम सुन सकती हैं, विविध भारती के भी और प्रसार भारती के सभी कार्यक्रम आप सुन सकती हैं।
1: हाँ।
0: और आप बताइए कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है अभी?
1: अभी मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, अभी तो मेरे एग्जाम चल रहे हैं, अभी सिर्फ दो ही एग्जाम हुए हैं और बाकी के अभी बच्चे हैं।
0: अच्छा, और इसके बाद में आपके जो भविष्य की योजनाएं हैं वो क्या हैं? इसके बाद आप और आगे पढ़ना चाहती हैं या कोई नौकरी वगैरह करना चाहती हैं?
1: मैं वैसे तो टीचर बनना चाहती हूँ और मैं बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। मैं अभी भी मेरे भाई को और मेरे आस पड़ोस में

0: जितने भी लोग हैं उनको पढ़ाती हूँ, समझाती हूँ।
1: तो ये आप ट्यूशंस लेती हैं या इसी तरह बस यूं ही मदद करने के लिए आप पढ़ाती हैं?
0: नहीं, मैं ट्यूशंस नहीं लेती हूँ, बस ऐसे ही कभी किसी को डाउट हो जाता है तो
1: अच्छा।
0: उन्हें क्लियर करती हूँ, और अपने लिए भी करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है किसी को किसी चीज के बारे में अच्छे से बताना और समझाना।
1: बहुत अच्छा काम होता है एक शिक्षक का, और आप इस काम को चुनना चाहती हैं। बहुत सारे लोगों को राह दिखाएंगी, और शिक्षक वो काम है जो बहुत सारे लोगों के लिए एक खुद जलकर रोशनी फैलाता है। और आप बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: मुझे मासूम पिक्चर का लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा सॉन्ग सुनना है।
1: क्या बात है, आपकी उम्र के हिसाब से जो छोटे बच्चों वाली सोच है और जैसी पसंद है आपकी, ये हमें बड़ा अच्छा लगा। सुनवाते हैं आपको अपनी पसंद का ये गीत, जिसे हमने लिया है मासूम फिल्म से।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, मुझे बताइए आप कौन सखी बात कर रही हैं?
1: मैं इंदौर से बोल रही हूँ, जीनत परवीन।
0: इंदौर से जीनत परवीन बात कर रही हैं
1: जी।
0: जीनत जी, अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
1: हाउसवाइफ हूँ।
0: तो घर पे करने के लिए काम बहुत सारे होते हैं, जो शायद बाहर महिलाएं जाती हैं ना, उससे कहीं ज्यादा काम एक घर में काम करने वाली महिला को होते हैं
1: जी।
0: और आपके घर में कौन कौन है जीनत जी?
1: जी, हस्बैंड है, मैं हूँ, बच्चे हैं, तीन लड़के। सबसे छोटे वाला 13 साल का है बस, और एक 15 साल के और एक 21 साल का।
0: तो अभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तीनों?
1: जी, दो पढ़ाई कर रहे हैं और बड़े वाले उनके पापा के साथ जाते हैं ड्यूटी।
0: तो अपने पिताजी के काम है उसमें वो हाथ बटाते हैं
1: जी।
0: आपके पति क्या काम करते हैं?
1: वो आरओ का प्लांट पे ये बनाते हैं, जो उसको फैक्ट्रियों में लगते हैं ना बड़े बड़े
0: जी,
1: तो बाहर का काम है सब, अमेरिका और यहाँ जाते हैं तो बड़े प्लांट बनते हैं।
0: और आप बताइए, आप घर में समय काटने के लिए क्या क्या करती हैं?
1: अपना काम निपटा लेती हूँ 1 बजे तक।
0: हाँ,
1: रेडियो सुनती रहती हूँ सुबह।

0: से चालू रहता है रेडियो 7 बजे से तो रात के 11 बजे तक चलता है, और फिर अपने काम निपटा के 3 बजे रेस्ट करती हूँ, तो अपने लिए समय निकालती हूँ थोड़ा।
1: जब आप अपने लिए समय निकालती हैं तब आपका पसंदीदा काम क्या होता है?
0: नहीं बस यही रेडियो सुनती रहती हूँ, और उसमें कभी नींद आ जाती है थोड़ी देर लेट जाती हूँ।
1: आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: शान पिक्चर का सुनूंगी, यम्मा यम्मा यम्मा यम्मा ये खूबसूरत समा।
1: सुनवाते हैं आपको शान फिल्म का ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली।
0: अपना नाम बताइए। आप कौन बात कर रही हैं और कहाँ से आपने हमें कॉल किया है? भोपाल
1: हाँ, मैं सोनू बोल रही हूँ, भोपाल से। जी
0: मध्य प्रदेश से सोनू बात कर रही हैं। सोनू जी, अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
1: घर में ही रहती हूँ मैं, शाम के प्रोग्राम सुनती हूँ और एक ब्यूटिशियन भी हूँ।
0: अच्छा, ब्यूटिशियन का काम भी करती हैं और आपको खाली समय में रेडियो सुनना पसंद है?
1: हाँ, रेडियो तो पूरा ही टाइम सुनती हूँ, सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक।
0: आप ये बताइए, आपका जो ब्यूटी पार्लर है वो आपने घर में ही किसी हिस्से में बनाया है या कहीं अलग से आपका ब्यूटी पार्लर है?
1: घर में ही है, साइड
0: अच्छा
1: में बनाया है, शॉप जैसा।
0: अच्छा और कितने समय से आप अपना ब्यूटी पार्लर चला रही हैं? तो
1: हाँ, पार्लर चलाते हुए तो 22 साल हो गए मेरे को। जी,
0: फिर तो आपका बहुत अच्छा हाथ बैठा हुआ होगा।
1: सारे काम कर लेती हूँ, इस टाइम के भी, पुराने टाइम के भी, सभी आता है मुझे।
0: अपने काम में अपनी एक पहचान बनाना ये बहुत जरूरी होता है और आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लोगों को सजा संवार रही हैं, खूबसूरत बनाती हैं। और गीत किस तरह के सुनती हैं, संगीत किस तरह का पसंद है आपको? जैसे विविध भारती के सारे ही प्रोग्राम आप सुनती हैं, तो कौन से?
1: विविध भारती के तो सभी प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन पुराने गाने ज्यादा पसंद है मुझे। हेलो
0: आपका पसंदीदा कार्यक्रम कौन सा है
1: सहेली फेवरेट है मेरा, हेलो फरमाइश फेवरेट है।
0: ये बताइए कि गीत कौन सा सुनना चाहिए?

0: आते हैं।
1: 30 साल बाद पिक्चर का गाना है हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे। अनुराधा जी और मोहम्मद अजीज की आवाज में है ये और मिथुन वाली 20 साल बाद पिक्चर है ये।
0: ठीक है, आपको सुनवाते हैं ये गीत हम तुम्हें कितना प्यार करें।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, मैं खुशी कौशल बात कर रही हूँ इंदौर से।
0: इंदौर से खुशी कौशल बात कर रही हैं।
1: जी हाँ।
0: आपका शहर तो बहुत खूबसूरत है और खास तौर पर इंदौर जाना जाता है अपनी साफ सफाई के लिए।
1: जी, मुझे बहुत गर्व है कि मैं इंदौर शहर में रहती हूँ। मतलब प्राउड होता है इंदौर का नाम लेके।
0: इंदौर का जब हम नाम सुनते हैं तो एक बहुत साफ सुथरी जगह की छवि हमारे जहन में आती है, और आप जैसे जो इस शहर में रहने वाले लोग हैं, इसका बहुत बड़ा सहयोग है कि ये शहर इतना सुंदर है और साफ भी है।
1: जी
0: खुशी, आप क्या करती हैं?
1: मैम, मैं स्टूडेंट हूँ अभी 10th क्लास में।
0: 10वीं में जाएंगी, मतलब 9वीं की आपने परीक्षा दी है अभी,
1: हाँ
0: तो अब 10वीं के लिए तो बहुत अच्छी तैयारी आपको करनी पड़ेगी, बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी,
1: जी मैम।
0: क्योंकि 10वीं वो पहला पड़ाव होता है जहाँ से आपकी पढ़ाई की नींव डलती है, और फिर इसके बाद में ही आपको अपना करियर चुनने के लिए आगे और क्या पढ़ना है इसमें बहुत मदद मिलती है। खुशी, आप क्या करना चाहती हैं आगे चलकर, क्या बनना चाहती हैं?
1: मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरी मम्मी का सपना था कि मैं मेरी बेटी को डॉक्टर बनाऊंगी।
0: बहुत अच्छा सपना आपकी मम्मी ने देखा है, लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आप जरूर एक दिन बहुत बड़ी कामयाब डॉक्टर बने। और मुझे बताइए कि पढ़ाई आप करती हैं, फिर आप रेडियो सुनती हैं, तो ये आपकी पढ़ाई में बाधा तो नहीं बनता? ये आपको
1: नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है रेडियो सुनना। मैं जब बचपन से छोटी थी, मेरे पापा मम्मी दोनों रेडियो सुनते, तो मुझे इतना अच्छा लगता है रेडियो सुनना। मतलब ऐसा लगता है कि तो मेरी फैमिली है रेडियो। मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ। मैंने पापा मम्मी को आज तक मैंने ऐसे सामने से नहीं बोला, पर मैं रेडियो के माध्यम से बोलना चाहूंगी। पापा मम्मी, आप वर्ल्ड के बेस्ट पेरेंट्स हो। मुझे आप दोनों पे गर्व है कि आप मुझे इतना प्यार करते हो।
0: बहुत अच्छी बात है खुशी की, आप जैसी प्यारी बिटिया उनकी है, और खुशी को बहुत खुशी हो रही है कि आज इसका कॉल लग गया, और खुशी से

0: बात करके हमें भी खुशी हो रही है। तो अब बताइए खुशी की कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मेरे मम्मी पापा के लिए अलग गीत सुनना चाहूंगी, मुझे माफ करना, ओम साईं राम।
0: सुनवाते हैं आपको।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली
0: कौन सी सहेली हमसे बात कर रही है इस समय?
1: जी, मैं हर्षिता गुजराती बात कर रही हूँ।
0: हर्षिता जी, कहाँ से कॉल लगाया है आपने?
1: मैं हरपन मौला कलाकार किशोर कुमार की नगरी खंडवा मध्य प्रदेश से बात कर रही हूँ।
0: क्या बात है, आपने जो अपने शहर का परिचय दिया है ये बड़ा अच्छा था।
1: जी, मैं बहुत दिनों से हेलो सहेली में फोन ट्राई कर रही थी, आज सफलता मिल ही गई।
0: अच्छा, आप किशोर कुमार की नगरी में रहती हैं, तो क्या आपने कभी किशोर कुमार का जो वहाँ पर निवास स्थान है वो देखा है जाकर?
1: जी, मैं स्थान पर गई हूँ
0: जी
1: और जो किशोर कुमार की नगरी है वहाँ पे समाधि है, मैं वहाँ भी गई हूँ। वहाँ पे कार्यक्रम होते रहते हैं, मेरे पापा के साथ में जाती हूँ, मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट है।
0: और आपको भी किशोर कुमार के गाने पसंद हैं?
1: जी
0: और आपके पिताजी को भी किशोर कुमार के ही गाने पसंद होंगे ज्यादा?
1: जी पापा तो पहले से ही किशोर कुमार, रफी साहब, इन सभी के गीत सुनते थे और धीरे धीरे फिर मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ा, तो उसके बाद फिर मैं पापा से जुड़ गई इस चीज के लिए।
0: हर्षिता, आप क्या करती हैं?
1: मैंने एमकॉम की डिग्री प्राप्त करी है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से,
0: जी
1: और अभी मैं संस्कार भारती की स्कूल सरस्वती विद्या मंदिर में इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ।
0: अच्छा, अपनी डिग्री लेने के बाद में अभी आपने पढ़ाने का काम भी शुरू कर दिया है?
1: जी,
0: बहुत अच्छी बात है, एक शिक्षक के कांधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और इसे आप निभा रही हैं।
1: जी।
0: और आपके फ्यूचर के क्या, भविष्य के क्या योजनाएं हैं?
1: मेरी भविष्य की यही योजना है कि मैं संस्कार भारती से जो जुड़ी हुई हूँ, विद्या भारती से,
0: जी
1: वहाँ जितना मुझसे हो सके मैं अपना 100% देने की कोशिश करूँगी। वहाँ से मैं सीख भी रही हूँ और सिखा भी।

0: और आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं हर्षिता?
1: मैं आज नाइट इन लंदन फिल्म से बाहुशो हवाल दीवाना
0: रफी साहब का गाया हुआ।
1: जी जी जी।
0: हर्षिता आपको सुनाते हैं आपकी पसंद का नाइट इन लंदन फिल्म का ये गाना।

आज के हेलो सहेली कार्यक्रम में कॉल करने वाली सभी सखियों का धन्यवाद। आप सभी सखियों से अनुरोध है कि जिनके कॉल आज के कार्यक्रम में शामिल हो गए, अगले 2 महीने तक वो कॉल ना करें, ताकि हमारी अन्य सखियों को भी इस कार्यक्रम से जुड़ने का मौका मिल सके। हेलो सहेली कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपको करना होगा अगले मंगलवार तक का इंतजार। आप हमें कॉल कर सकते हैं इन नंबर पर 02240024662 02228670288। नंबर आपको फिर से बता देते हैं 02240024662। एक अन्य नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं 02228670288। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं मंगेश सांगले, संपादन सहयोग मिला नम्रता टिकोले से, विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज के हेलो सहेली कार्यक्रम से दीजिए चंचल वर्मा को इजाजत। नमस्कार सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी, आइए आज सुनते हैं विधि जैन की लिखी गीतों भरी कहानी रिश्ते। वाचन स्वर विधि जैन का। वक्त की मार, रिश्तों का सार। रिश्ते जीवन का आधार होते हैं। जीवन में अगर देखा जाए तो मनुष्यता की पहचान रिश्ते ही तो है। ये रिश्ते कभी रक्त के बंधन होते हैं तो कभी प्रेम के। ऐसे ही रिश्तों को सहेजना अति आवश्यक कार्य है, क्योंकि मन का सुकून और शांति इससे ही है। आज की कहानी इन्हीं रिश्तों के सम्मान और आवश्यकता की है। चलते हैं गांव की ओर, जिस गांव का नाम है शिवपुर।

शांत और सौम्य होती थी। तलैया के पास खड़े बरगद के पेड़ के नीचे बुजुर्गों की बातें और सूरज की पहली किरण फसल पर पड़ते ही पूरा गांव मानो जाग उठता। प्रेम है एक दूसरे का, सत्कार है और साथ ही है अपनापन। मंदिर की घंटियां, की आवाजें, गाय का रंभाना, बच्चों की खिलखिलाहट, पनघट पर पनिहारियों की हंसी ठिठोली और संतोष के साथ गुजर बसर करते लोग। इसी गांव के एक कोने में पुराना लेकिन बेहद स्नेह से भरा घर, राम नारायण का घर। राम नारायण और उनकी पत्नी कमला गांव में सबके आदर का पात्र हैं। मेहनती, ईमानदार और रिश्तों को सबसे ऊपर रखने वाले। इनके दो बेटे विक्रम और अमित बचपन से ही एक दूसरे की छाया की तरह एक दूसरे के साथ रहते हैं। दोनों में इतना गहरा प्रेम है कि लोग उदाहरण देते हैं कि राम नारायण के दोनों बेटे सच में राम लक्ष्मण जैसे हैं। एक दूसरे के लिए तो सदा खड़े रहते हैं और दूसरों के लिए भी साथ में खड़े हो जाते हैं। राम नारायण जी ने उन्हें व्यवहारिक शिक्षा दी है तो माँ यानी कमला जी ने उन्हें सांसारिक और आध्यात्मिक। कुल मिलाकर दोनों बालक ऐसे हैं जैसी चाह सभी को होती है और सभी चाहते हैं उनके बच्चे भी

विक्रम बड़ा भाई है तो स्वाभाविक तौर पर जिम्मेदार और शांत भाव का है, और अमित छोटा है तो यह तो तय है कि वह चंचल होगा, पर दिल का साफ है। बच्चे विद्यालय जाते, थोड़ा खेलते, पढ़ते और खेतों में पिता के साथ काम करते। माँ के हाथ का बना भोजन बिना नानुकुर के बड़े प्रेम से करते, और शाम को मित्रों के साथ कभी कभी गांव के मेले में भी घूम आते। दोनों की हंसी सुनकर लगता जैसे घर में कभी कोई तूफान आ ही नहीं सकता। प्रेम देखकर लगता कि कोई शक्ति इन्हें अलग कर ही नहीं सकती। जीवन का सारा पाठ बचपन में ही सीख लिया है इन्होंने। और यह सब देखकर रामनारायण जी और कमला जी ईश्वर को धन्यवाद देते, और रामनारायण जी अक्सर कहा करते, मेरी असली कमाई, असली धन ये दोनों हैं।

समय बीतता गया। पढ़ाई में होशियार तो थे ही, सो बड़े होते होते दोनों शहर में जाकर पढ़ने लगे और यहीं से आवो हवा बदलने लगी। शहर की चकाचौंध रास आने लगी और मासूमियत कहीं खोने सी लगी। फिर दोनों के जीवन में नए सपने, नए विचार, आगे बढ़ने की आकांक्षा, अनंत तक चलने की दौड़ का हिस्सा बनने की चाह, और जो कि बिल्कुल गलत नहीं था, हर किसी को आगे बढ़ना और नई संभावनाएं खोजना भी चाहिए। परंतु दुर्भाग्य यह था, इन्होंने कई बातें मासूमियत के कारण सीखी ही नहीं, तो बड़ा बनने की लालसा ने इनके अंदर थोड़ा थोड़ा लालच भी भर दिया। अब विक्रम का विवाह सीमा से हुआ, जो महत्वाकांक्षी थी, परंतु महत्वाकांक्षा के गुण के साथ एक अवगुण भी था, स्वार्थ परता का। उसे सब कुछ अपने हिसाब से और स्वयं के लिए चाहिए था। उसके हिसाब से तो दुनिया भी उसके लिए ही घूम रही थी, परंतु प्रेम के वशीभूत विक्रम ने उसे पसंद कर लिया और इन अवगुणों पर ध्यान तक ना दिया। वहीं अमित की शादी गांव की सादगी भरी राधा से हुई, जो परिवार को जोड़कर रखने में विश्वास करती थी। उसके भी सपने थे जीवन के, पर चाहत सभी के साथ उनको पूरा करने की। दोनों के मन में लालच तो पहले से आ ही चुका था और विवाह के बाद घर की हवा बदलने लगी। धीरे धीरे ख्वाहिशें विष का काम करने लगी और जहां कल तक दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित थे, आज विषवेल फैलने लगी थी। लालच, अहंकार, स्वार्थ अपनी जड़ें जमाने लगे थे और इसका प्रभाव पूरे परिवार पर दिख रहा था।

घर की बड़ी बहू विक्रम की पत्नी सीमा अक्सर कहती, इतनी बड़ी जमीन है लेकिन फायदा कुछ नहीं, बांट लेना चाहिए, हमारा अपना भी तो परिवार है, उसको देखना है, कब तक सबको ढोकर चलेंगे। और वहीं छोटी बहू अमित की पत्नी यानी राधा ये सोचकर दुखी होती, जमीन तो रहती ही है पर रिश्ते टूट गए तो घर कैसे रहेगा, हमारा भविष्य अपनों के साथ है, संस्कार है, अपनापन है और यही तो जीवन की पूंजी है। और विक्रम अमित दोनों अपने अपने जीवन में इतने व्यस्त थे कि उन्हें इस कड़वाहट का पता ही नहीं चला, कहां क्या अंधकार पनप रहा है, जीवन की चकाचौंध में वह देख ही नहीं पाए। धीरे धीरे उनके दिलों में दूरियां और बढ़ने लगी। रामनारायण कमला जी प्रयास कर रहे थे, देख रहे थे कि किसी तरह से इसे संभाल लिया जाए, दोनों बेटों को समझा रहे थे, परंतु उनकी सुनता कौन था, शायद उनके पास सब कुछ संभालने के लिए समय भी बहुत

कमला यानी दोनों की माँ रात को अक्सर आंगन में बैठकर दीपक की लौ देखते हुए कहती, नारायण जी हमसे कहाँ गलती हो गई, जो लड़के एक रोटी में साथ खा लेते थे आज एक घर में रहने से डरते हैं। कल तक जिन पर पूरा गांव गर्व करता था वैसे ही बालक बनाने की प्रार्थना करता था, आज हम भी लोगों के किस्सों में शामिल हो गए। और वह रोने लग जाती। वहीं रामनारायण जी के पास कोई उत्तर नहीं था, चुपचाप सुनते और दोनों माता पिता जागती आंखों में ही रातें बिता दिया।

अब लालच का पेड़ बहुत बड़ा वट वृक्ष बन चुका था और इसी लालच ने रूप ले लिया था बहस का, विवाद का। और एक सुबह जमीन बांटने की बात पर दोनों भाइयों में बहुत भयंकर झगड़ा हो गया। परिवार का छोटा बेटा में चिल्लाया, भैया माँ बाप की सेवा की बात करो, तुम बस जमीन के हिस्से गिनते हो, माता पिता की आवश्यकताओं को तो देखना भी आवश्यक लगता नहीं तुम्हें, सब सब मैं अकेले कर रहा हूँ। बड़े बेटे विक्रम ने गुस्से में जवाब दिया, और तुम तो बस यही चाहते हो कि मैं कुछ भी ना बोलूं, सब तुम्हें मिल जाए, सेवा का दिखावा करके पूरा मेवा अकेले खाना चाहते हो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और यही विवाद बैठक से गुजरता हुआ रसोई तक पहुंच गया। साथी सीमा और राधा दोनों के बीच तनाव बढ़ता गया और यह तनाव इतना बड़ा कि रसोई में बना भोजन अमृत नहीं विष का काम करने लगा और दूरियां बढ़ा रही थी। और बूढ़े हो चुके माता पिता ने जब रोकने की कोशिश की, अपनी असहायता भी दिखाई, संस्कारों की दुहाई भी दी, उनके बचपन का प्रेम भी याद दिलाया, यूं कहें कि सारे हथकंडे अपना लिए, पर दोनों भाइयों की आवाजें इतनी ऊंची हो चुकी थी कि प्यार की सारी बातें उसमें ही दब गईं और ऐसा लगने लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और आगे कोई रास्ता नहीं। क्रोध में आकर एक दिन अमित घर छोड़कर गांव के दूसरे सिरे पर रहने चला गया ताकि वह विक्रम की पूरी संपत्ति को हत्या लेने वाली बात को गलत साबित कर सके। और विक्रम अपने माता पिता से अलग हो गया क्योंकि पहले भी सेवा तो अमित ही कर रहा था और वह सेवा अब समाप्त हो गई थी। उसी रात कमला ने रोते रोते कहा, नारायण जी अब इस घर की दीवारों में भी हमें अपनापन नहीं लगता, प्रभु ही कोई राह दिखाए।

कुछ ही महीनों में लगातार तनाव से पहले रामनारायण बीमार पड़े। डॉक्टर ने कहा उन्हें शांति चाहिए, लेकिन घर में शांति कहाँ थी, तनाव बढ़ता ही जा रहा था। वैसे सच है, कभी कभी हम बच्चे अपने स्वार्थ में अपने माता पिता की उम्र का भी नहीं सोचते, उनके जीवन के अंत का कारण तक बन जाते हैं। और यहाँ यही हो रहा था। पिता के बीमार होने पर भी दोनों बेटों में बहस जारी रही, पैसों की, जमीन की, जिम्मेदारी की। और एक दिन सुबह राम नारायण ने अंतिम सांस ले ली, और जिसका सब कुछ टूटा था वो थी केवल कमला जी। कल तक जिससे सारे दर्द कह लेती थी, आज वो भी चला गया, सब खत्म कर गया। और 2 महीने बाद लगातार यही दुख झेलते झेलते वे भी संसार से चली गई। मृत्यु के पहले उन्होंने बस इतना ही कहा, काश तुम दोनों फिर से एक हो जाओ। ये बात सुनकर भी दोनों भाइयों का अहंकार कम नहीं हुआ। उनके अंतिम संस्कार तक में वो दूर दूर बैठे थे। काश मां की अंतिम इच्छा सोचकर ही एक हो जाते।

अंतिम संस्कार के बाद पंडित हरिदास, जो कि राम नारायण जी के अभिन्न मित्र थे, दोनों को किनारे पर ले गए और थोड़ी कठोर और सच्ची आवाज में कहा, पिता की चिता ने तुम दोनों को जुदा नहीं किया, तुम्हारे लालच ने उन्हें मिट्टी में मिला दिया। तुम लोग जमीन बांटने में लगे रह गए, तुम्हारे हाथों के रिश्ते जलकर खाक हो गए। विक्रम, अमित, क्या किया तुमने? अपने माता पिता को ही खो दिया अपने लालच में। विक्रम और अमित का सीना भारी उठा। पहली बार दोनों ने महसूस किया कि वे वास्तव में अकेले पड़ चुके हैं, आगे सब अंधकार है। उन्हें पछतावा लग रहा था, कल तक जो एक दूसरे की गलतियां खोज रहे थे, आज कहीं ना कहीं अपनी गलतियां देखने लगे थे। कहा भी है ना, किसी को एक अंगुली दिखाने पर तीन अंगुलियां अपनी ओर रहती हैं, और यहाँ भी यही हो रहा था। कल तक जो एक उंगली उठी थी, आज उन तीन उंगलियों को भी देख पा रहे थे जो उनकी ओर

अगले कुछ दिन तक घर एकदम खाली सा पड़ा था। दीवारें भी रो रही थी, सन्नाटा था, जीवन में पछतावा था, और पछतावा उम्र भर का कि काश हमने समझा होता तो शायद हमारे माता पिता हमारे साथ होते। एक दिन अमित चुपचाप घर आया, उसने देखा कि विक्रम अकेला बैठा है, माता पिता की तस्वीर साफ कर रहा है। दोनों की आंखें मिली और बिना बोले आंसू बह पड़े। विक्रम ने कांपती आवाज में कहा, अमित माता पिता को तो खो दिया, अब नहीं चाहता कि तुझे भी खो दूं। अमित ने हाथ पकड़ते हुए कहा, भैया दिल में प्यार हमेशा था, बस लालच और गुस्से ने आंखों पर पर्दा डाल दिया था। दोनों पहली बार लंबे समय के बाद गले मिले, दोनों ने एक दूसरे से क्षमा मांगी। इधर राधा और सीमा भी रो पड़ी, उन्हें भी अपनी भूलों का एहसास हुआ।

पंडित हरिदास और गांव के बुजुर्गों ने उन्हें सलाह दी कि तोड़ने वाली ताकतें बहुत होती हैं, पर जोड़ने के लिए संगठन चाहिए। दोनों भाई उसी शाम गांव के किसानों की बैठक में शामिल हुए। वहां जमीन को जोड़कर खेती करने, आधुनिक तरीकों को अपनाने और एक साझा संगठन बनाने पर चर्चा की। विक्रम बोला, हम दोनों ने जमीन बांटने की गलती की, अब हम इसे जोड़कर एक साथ खेती करेंगे। अमित ने समर्थन किया और गांव वालों के लिए भी एक किसान संगठन बनाएंगे ताकि कोई परिवार हमारी तरह ना टूटे, गांव तरक्की करे। हम सभी मिलकर ऐसी खेती करेंगे जिसमें कोई रसायन का प्रयोग ना हो। सोलर सिस्टम से हम पूरे गांव की बिजली की समस्या का निदान करेंगे। हम मिलकर करेंगे तो गांव में कोई भूखा नहीं रहेगा। साफ सफाई, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य, सबका प्रयास अपने परिवार के लिए नहीं, अपने गांव के लिए करेंगे और गांव को आदर्श गांव बनाएंगे। यही हमारे माता पिता के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी और हमारी ओर से क्षमा याचना भी। गांव वालों ने तालियां बजाकर स्वागत किया।

0: आंखें बिछा दूं, करूं क्या।
1: संगठन बनने के बाद गांव की उपज दुगनी होने लगी, किसानों को बाजार में उचित दाम मिलने लगा, युवक युवतियां गांव छोड़कर शहर जाने के बजाय यही रोजगार पाने लगे, रिश्तों में खटास कम होने लगी। विक्रम और अमित ने मिलकर राम नारायण कमला कृषि सहयोग समिति इस नाम से अपने माता पिता की याद में एक केंद्र बनाया। गांव में जब कोई लड़ाई या मनमुटाव होता तो लोग कहते, जाकर विक्रम अमित से बात करो, उनका घर टूटकर जुड़ा है, वे समझाएंगे। और इस सब के साथ गांव को देश

कई सालों बाद विक्रम ने संगठन की सभा में कहा, माता पिता को खोना हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन उनकी यादों ने हमें एक कर दिया। हम समझ गए, जमीन, पैसे, चीजें सब दोबारा मिल सकती हैं, पर रिश्ते टूट जाएं तो दोबारा नहीं बनते, और यदि बनते हैं तो संगठन एकता और प्रेम से ही बनते हैं। सभा में बैठे प्रत्येक व्यक्ति की आंखें भर आईं। गांव के बच्चे आज भी कहानी सुनते हैं कि कैसे विक्रम और अमित ने लालच से घर को तोड़ा और प्यार और संगठन से फिर से बना लिया।

रिश्ते। अभी आप सुन रहे थे विधि जैन की लिखी ये गीतों भरी कहानी उन्हीं के स्वर में। संपादन सहयोग काजल भदरगे का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हम।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए।
3: अभी आप सुन रहे थे गीतों भरी कहानी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के विविध भारती मुंबई केंद्र से रिले किया जा रहा था। एफएम 102.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। इस वक्त शाम के 5 बज चुके हैं। अब आप सुनेंगे हमारे केंद्र से कार्यक्रम हेलो हिसार।
4: आप सुन रहे हैं ऐतिहासिक नगरी हिसार की संगीतमय पहचान आकाशवाणी हिसार 102.3 एफएम।
5: हेलो हिसार।
6: हेलो हिसार।

0: संगीत जब बातों से मिलता है तो बनती है एक ऐसी शाम जो दिलों में देर तक ठहर जाती है। और अब उसी शाम को और भी खास बनाने के लिए हमारे हलो हिसार कार्यक्रम की हो चुकी है शुरुआत। तो उठाइए फोन, कीजिए हमें कॉल, बताइए कौन बात कर रहे हैं आप और कहाँ से बात कर रहे हैं अपनी मीठी सी फरमाइश के साथ। तो जुड़ जाइए हमारे कार्यक्रम में, क्योंकि आपकी आवाज ही है हमारे इस कार्यक्रम की सबसे खूबसूरत धुन। आप हैं अपनी रेडियो हम सफर प्रीति ढिंडोरिया के साथ। तो चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत, देखते हैं कौन कर रहा है इंतजार फोन लाइंस के उस पार हमारा बेसब्री के साथ। हेलो,
1: हेलो, नमस्कार
0: हेलो हिसार कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: दीदी।
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं आसाम से, सोनीपुर असम रंगापारा से, अमल अमल बसुमतारी बात कर रहे हैं।
0: अमल, अमल जी, आपका
1: हाँ जी,
0: नाम थोड़ा सा अलग है। मतलब हमने अमन नाम सुना है, अमल नाम, अच्छा नाम है आपका।
1: हाँ हाँ जी, अमल बसुमतारी है मेरा नाम
0: जी, कैसे हैं आप, क्या करते हैं?
1: जी। बहुत अच्छे हैं हम तो। हम घर वालों का किसान का काम में जुड़ते रहते हैं। हमारा
0: अच्छा,
1: खेती में चाय का खेती है और धान का खेती लगाता है, कुछ सब्जी वगैरह खेती लगाता है और सुपारी वगैरह है, उसको
0: अच्छा,
1: देखभाल करते हैं।
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा जानकर कि चाय की
1: आज पहली
0: खेती।
1: बार आपसे बात
0: जी
1: करके बहुत अच्छा लगा मैम।
0: बिल्कुल, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है हमारे नए श्रोता के साथ बात करके, और आपका
1: जी
0: बहुत
1: जी
0: बहुत
1: जी
0: स्वागत है कार्यक्रम
1: यहाँ
0: में।
1: का मौसम कैसा है थोड़ा बताइए मैम।
0: यहाँ गर्मी है बहुत ज्यादा, आपके यहाँ मौसम कैसा है?
1: जी यहाँ पर भी तो बहुत गर्मी चल रहा है आज, बहुत धूप दे रहा है। तो
0: अच्छा
1: 39 डिग्री सेल्सियस तक अभी चल रहा है। जी
0: अच्छा जी, यहाँ इससे ज्यादा गर्मी है
1: जी जी ये
0: जी। रेडियो सुनते हैं हमारे कार्यक्रम कौन कौन से सुनते हैं आप?
1: ऐप के माध्यम से कुछ हिंदी कार्यक्रम, हिंदी गीतों का कार्यक्रम और फार्मेसी जैसे फोन इन कार्यक्रम को अच्छा लगता है ज्यादा से। जी
0: अच्छा, फोन इन कार्यक्रम ज्यादा अच्छे लगते हैं
1: गाना
0: आपको।
1: ज्यादा सुनता है।
0: आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे फिर?
1: आपको फोन करते करते फिल्म का नाम अभी भूल गए, मैं बहुत सारे प्रेपर को तोड़ के आ गया ना, इसलिए मैं गाने के बोल
0: जी,
1: बता दो।
0: बता दीजिए।
1: सोनू निगम की आवाज में ऐसे गाने ऐसे हैं, पहली पहली बार पलिए दिल गया हार बनिए, रब मेनू प्यार हो गया, हाय दिल का करार हो गया, ऐसे करके गाने हैं मैम।
0: वाह
1: जी
0: वाह अमल जी, बहुत खूब, आपकी पसंद बहुत अच्छी है और
1: तो
0: हम आपकी पसंद को
1: आपका
0: जरूर
1: आपसे
0: पूरा
1: पहली
0: करेंगे
1: बार बात हो रहा है ना, बात हो
0: जी।
1: रहा है ना पहले।
0: हाँ
1: जी
0: जी, चलिए
1: मैं
0: आगे भी करते रहिएगा, और ऐसे ही
1: दोस्तों
0: हमारे।
1: को याद कर सकता हूँ।
0: जी हाँ, कीजिए।
1: मेरे दोस्त है भाईकोन मुंडा है, बिमल बसुमतारी है, रमेश पात्रो है, जोगेंद्र डोंगपी है, भगवान सिंह परमार है, राकेश है, गोल्डी है, पूरन वर्मा है, राम नरेश है और रमेश प्रजापति है और योगेश जी है और सुनील झा है, रमेश तेलर है, डकेंद्र वर्मा जी है और अविनाश तैली है और धर्मवीर जी है और पूर्णिमा है, पूनम है और संगीता है और लक्ष्मी है। सभी दोस्तों के डेडिकेट रहेगा और आपको भी,
0: बहुत
1: पूरे
0: सारे दोस्त हैं
1: आकाशवाणी हिसार
0: आपके
1: की पूरी इंजीनियर टीम को भी डेडिकेट रहेगा।
0: जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने सारे दोस्तों के साथ, परिवार के साथ मिलकर
1: जी इस
0: सुने
1: दोस्तों
0: ये
1: के साथ
0: खूबसूरत
1: मेरा
0: संगीत
1: फोन के साथ भी बातचीत होते रहते हैं।
0: जी। इनको भी बोलिएगा हमें कॉल करने के लिए
1: ओके ओके ओके,
0: जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैम कॉल रिसीव
0: जी,
1: करने के
0: कार्यक्रम
1: लिए।
0: में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो हिसार कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
1: नमस्ते प्रीति डंडोरिया
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं
1: जी। गाँव बरुआ से विनोद निम्बेवार
0: जी? विनोद जी कैसे हैं?
1: बोल रही
0: काम काज कैसा चल रहा है आपका?
1: काम ठीक। अभी अभी मैम खेत से आया जी।
0: जी
1: हाँ
0: अच्छा, चलिए आप बताइए, रेडियो कितना सुन रहे हैं?
1: रेडियो तो मैम सवेरे 7 बजे चल्लू कर दिया, रात में 11 बजे समाचार सुनिए फिर ही सुना मैम।
0: चलो अच्छा लगा जानकर, बहुत बहुत शुक्रिया इतना समय देने के लिए। और बताइए आज कौन सी फरमाइश आपकी पूरी की जाए?
1: आज ये सुना दियो जी, हर दिल में है रब बसता, सच्चा खिलाड़ी वो है जो त्रे त्रे आंखें है रखता।
0: अपनी पसंद का गीत सुनिए कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ठीक है जी, धन्यवाद जी।

0: हेलो।
1: हेलो
0: बिल्कुल हेलो हिसार कार्यक्रम है, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। कौन बोल रहे
1: नमस्कार
0: हैं?
1: जी, मैं
0: नमस्कार
1: गांव पनियासक से विनोद टेलर बोल
0: जी। विनोद जी कैसे हैं?
1: बढ़िया
0: कामकाज सही चल रहा है?
1: जी। हाँ, कामकाज बढ़िया चल रहा जी। थोड़ी गर्मी बहुत ज्यादा है जी।
0: जी गर्मी का मौसम है, अब गर्मी तो पड़ेगी ही और ये जरूरी भी है
1: हाँ जी
0: जी। लेकिन गर्मी के मौसम में अपना ध्यान रखिए, पानी पीते रहिए और लू से अपना बचाव रखिए, धूप में बाहर निकलने से बचें
1: ठीक है जी। फिल्म
0: जी। बताइए गीत कौन सा सुनेंगे आज?
1: बिच्छू का सुना दिए जी,
0: कौन सा?
1: टूटे टूटे वाला,
0: ठीक है जी, आपकी पसंद।
1: राजू
0: हम
1: अग्रवाल से बात कर लिए जी। हाँ जी नमस्कार,
0: नमस्कार राजू अग्रवाल जी।
1: बिल्कुल अच्छे जी। वो ठीक है जी, सुबह रणबीर बुरा सुने जो आपने राज में सुनाई, बड़ी अच्छे लगी जी,
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया
1: बहुत ही अच्छी राज है
0: जी,
1: जी।
0: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिए अपनी पसंद का ये खूबसूरत सा गीत।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो हिसार कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: जी, नमस्कार बहन जी
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: जी। मैं सुरेश कुमार सैनी, ग्राम पोस्ट अजमेर, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड से बात कर रहा हूँ बहन
0: कैसे हैं आप? क्या काम करते हैं?
1: जी। जी मैं खेती किसानी करता हूँ बहन जी, साथ में फूलों का डेकोरेशन वाला भी काम करता हूँ।
0: अच्छा जी, आजकल जो मौसम है उसके उसमें मतलब फूलों की जो मतलब आप काम करते हैं उसमें कहीं दिक्कत तो नहीं आती?
1: जी बिल्कुल, दिक्कत आती है क्योंकि
0: जी
1: जो अभी तापमान एकदम से अधिक बहुत गर्म रहता है और अचानक

0: बारिश हो जाती है तो फूल की जो खेती है उस पर काफी असर पड़ता है, फूल जो
1: बिल्कुल।
0: क्या होता है खराब हो जाता है।
1: तो वो फिर आप काम मतलब जो है आप कैसे करते हैं मैनेज फिर?
0: उसको फिर मैनेज करना पड़ता है, जैसे कि कहीं मान के चलिए उदाहरण के लिए 2 किलो फूल की जरूरत है, तो वहाँ पे फर्म के 3 किलो फूल लेना पड़ता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हम यही कामना करेंगे कि आपका काम जो है बहुत अच्छा चले, ऐसे ही महकाते रहें आप सबको फूलों की तरह। बताइए गीत कौन सा सुनेंगे?
0: आज आप सुनाओगे फिल्म का नाम है हाँ मैंने ही प्यार किया,
1: इस फिल्म
0: और
1: का कौन सा गीत
0: गीत
1: सुनेंगे?
0: के बोल है वो मुबारक हो तुमको एक शादी तुम्हारी।
1: चलिए हम आपकी फरमाइश को पूरा कर रहे हैं, कार्यक्रम में फोन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिए अपनी पसंद का गीत।
0: ओके जी नमस्कार।

0: हेलो,
1: परम आदरणीय दीदी शादर सप्रेम प्यार खान नमस्कार।
0: नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, शारदा प्रसाद प्रजापति जी।
1: जी दीदी बिल्कुल आपने सही पहचाना, मैं आपका वही पुराना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्रीराधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश से आदरणीय दीदी से
0: जी
1: वार्तालाप कर रहा हूँ। हेलो हुशियार में दीदी आप कैसी
0: जी
1: हैं?
0: हाँ,
1: काफी
0: बहुत
1: दिनों
0: अच्छी
1: पहचान,
0: हूँ
1: यानी कि 7-8 सप्ताह बाद हमारी कॉल लगी है और आपसे
0: जी।
1: वार्तालाप करने का अवसर प्राप्त हुआ है।
0: बिल्कुल, एक तो आपका जो अपना परिचय देने का अंदाज है वो सबसे जुदा है, उसी से पहचान में आ जाता है कि हमारे कौन से श्रोता हमसे बात कर रहे हैं।
1: जी दीदी
0: जी
1: निसंदेह
0: जी बिल्कुल, बताइए कैसे हैं, कामकाज कैसा चल रहा है।
1: दीदी, मैं तो अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ और घर परिवार में भी सब लोग आनंद मंगल से हैं और सब बच्चे अपने अपने जॉब में हैं, सर्विस करते हैं और मैं घर पे रहता हूँ, आकाशवाणी से जुड़ा रहता हूँ, आप
0: जी
1: लोगों से वार्तालाप करता हूँ, अच्छा लगता है, सुखद अनुभूत होती है। फिल्म
0: जी तो बताइए आज गीत कौन सा सुनेंगे आप,
1: का नाम है जमीर, किशोर कुमार साहब ने गीत गुवाया है। फूलों
0: कौन सा जी।
1: के ढेरे हैं साए घनेरे हैं, बहुत ही सुंदर प्यारा मस्ती भरा गीत आपके अनुरोध करना चाहता हूँ। हेलो हिसार आकाशवाणी हिसार से। जी
0: जी ये गीत हम आपको जरूर सुनवाएंगे शारदा प्रसाद प्रजापति जी। कार्यक्रम में आपने फोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए अपनी पसंद का गीत।
1: हृदय धन्यवाद, नमस्कार दीदी नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो।
1: नमस्कार जी। हेलो हिसार
0: नमस्कार। हेलो हिसार कार्यक्रम में आपका स्वागत है
1: जी,
0: जी। कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा से राधे श्याम शर्मा बोल रहा हूँ जी।
0: राधे श्याम शर्मा जी, कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया। और मेरी कॉल लग गई है, बहुत ही बढ़िया हो गया
0: जी, बहुत बहुत हमें भी अच्छा लग रहा है आपकी कॉल लगी है। क्या
1: जी।
0: करते हैं आप
1: मेरा दुकानदारी का काम है जी,
0: जी? किस चीज की दुकान है
1: और
0: आपकी?
1: वो सभी मिल जाता है। गांव की दुकानदारी है ना, उसमें सारा सामान
0: अच्छा,
1: रखना पड़ता है जी।
0: चलिए अच्छा है। और गांव में जो है कामकाज अच्छा चले आपका, यही हम कामना करते हैं। रेडियो
1: धन्यवाद जी।
0: कितना सुनते हैं आप?
1: मैं रेडियो बहुत सुनता हूँ जी, सुबह से शाम तक रेडियो सुनता हूँ मैं,
0: जी
1: और
0: जी
1: सन 1978 से सुन रहा हूँ।
0: काफी पुराना
1: 61
0: नाता
1: ए
0: है
1: मेरी।
0: आपका,
1: हाँ जी
0: काफी पुराना नाता है रेडियो से।
1: बिल्कुल, बहुत पुराना नाता जी, बहुत पुराना।
0: जी, हमारे कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं और सबसे अच्छा कार्यक्रम कौन सा लगता है?
1: मेरे को आकाशवाणी इशार के सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं।
0: चलिए अच्छा लगा, आप मतलब हमारी आकाशवाणी से इतनी गहराई से जुड़े हैं, इतना प्यार इतना सम्मान देते हैं। बताइए आज गीत कौन सा सुनेंगे आप?
1: आज मुझे नया दौर फिल्म का एक सॉन्ग है, आशा भोसले की आवाज में,
0: कौन
1: बहुत ही
0: सा
1: प्यारा
0: गीत?
1: सॉन्ग है। मुझे उम्मीद है कि सभी श्रोताओं को ये पसंद आएगा।
0: जी।

0: मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार।
1: बहुत प्यारा गीत आपने सुनना चाहा है कार्यक्रम में फोन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिए नया दौर फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत।

0: हेलो
1: हेलो। राम
0: हेलो हिसार कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
1: राम प्रीति जी,
0: राम
1: महावीर
0: राम।
1: बोल रहा हूँ गांव मकानी से। बड़ी मुश्किल से फोन लगा है।
0: महावीर जी, अब तो लग गया आपका कॉल। कैसे हैं आप?
1: खूब मौज में हूँ दीदी। ये ठंडी हवा का आनंद ले रहा हूँ और
0: जी
1: शाम को लगभग 5 बजे करीब यहाँ ओलावृष्टि हुई थी।
0: अच्छा जी, फिर तो
1: मेरे
0: मौसम थोड़ा
1: खेत के
0: सुहावना हो गया होगा।
1: बिल्कुल सुहाना हो गया, कम धरती बिल्कुल सफेद हो गई थी और मैं खेत के अंदर ही था उस समय।
0: अच्छा जी,
1: एक
0: तो
1: छोटी
0: जो ये
1: सी
0: ओलावृष्टि हुई है, मतलब बार बार मौसम बदलता है, तो आपकी फसल पर भी तो असर पड़ता होगा इसका।
1: हाँ प्रभाव पड़ता है ना, खूब पड़ता है,
0: जी,
1: उसके
0: इससे
1: प्रभाव पड़ता
0: नुकसान
1: है।
0: होता है या फायदा?
1: अभी तो खेती नहीं है ना, इसलिए अभी तो फायदा ही है।
0: अच्छा
1: जमीन में थोड़ी नमी होगी तो
0: जी
1: अगर दोबारा बारिश होगी तो जल्दी बुआई हो जाएगी।
0: जी जी जी चलिए, अच्छा ही रहे हमारे अन्नदाताओं के लिए बारिश, बस हम यही कामना करते। बताइए, आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: आज मैंने आपका दीदी वो प्रोग्राम सुना था, नमस्ते इशार भी
0: जी,
1: सुना था, और ये और सुबह सुबह वो आता है ना एक और
0: सुप्रभात।
1: प्रोग्राम,
0: सुप
1: उसमें भी आती थी। मैं
0: जी
1: सुबह से सुन रहा हूँ, बीच बीच में काम छोड़ के मैं
0: अच्छा
1: सुबह से।

0: रहा हूँ, कल इसकी ये जो तूफान आया था इसकी वजह से लकड़ी वगैरह जो खेतों में इकट्ठी कर रखी थी वो सारी बिखर गई थी, उनको इकट्ठा करता जा रहा था और अच्छा। समय देख देख के वहाँ भी प्रोग्राम आ रहा है
1: अच्छा।
0: छोड़ के और फिर प्रोग्राम सुंदर
1: इतना प्यार है, इतना सम्मान, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया महावीर जी। बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आज?
0: एक गाना है, मैंने वो अधूरा गाना सुना था, बस्ती बस्ती नगरी नगरी कह दो गांव गांव में, कल तक जो सर पे चढ़े थे आज पड़े हैं पांव में।
1: ठीक है, हम ये गीत आपको जरूर सुनवाएंगे। कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिए अपनी पसंद का।

वालों कहा सुना बिसरा देना मेरे हृदय की दुखद कथा तुम इस यंत्र पे सुन लेना। जय शंकर।

0: हेलो,
1: हेलो, नमस्कार जी।
0: नमस्कार। हेलो हिसार कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है
1: मैं कानाराम बात कर रहा हूँ जी, शास्त्री नगर हिसार से। आज
0: जी। कानाराम जी, कैसे हैं आप? बताइए आज के कार्यक्रम में क्या सुनना चाहेंगे?
1: मेरे को सुना दे दीदी, अब क्या होगा फिल्म का गीत।
0: कौन सा गीत?
1: मैं रात भर ना सोई रे बेईमान वालुआ।
0: चलिए, आपकी पसंद का ये गीत हम सुनवा रहे हैं कार्यक्रम में। फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: शुक्रिया।

0: आज की इस महफिल को अपनी आवाजों और एहसासों से सजाने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आपकी मौजूदगी ने ही तो हमारे कार्यक्रम की असली खूबसूरती है। फिलहाल इजाजत दीजिए कार्यक्रम हालो हिसार से, लेकिन ये मुलाकातों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा संगीत और दिलों के साथ। आप थे अपनी रेडियो हम सफर प्रीति डिंडोरिया के साथ FM बैंड 102.3 MHz पर आकाशवाणी हिसार के साथ कार्यक्रम हेलो हिसार में। अब दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आकाशवाणी हिसार के साथ गुनगुनाते रहिए।
1: हेलो हिसार,
2: हेलो हिसार, हिसार।

आकाशवाणी एट 90 आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से ना सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो हिसार, FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। इस वक्त शाम के 6 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिनका रिले हम करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रिले की प्रतीक्षा करें।

0: और घुसपैठ पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसंख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में संरचनात्मक परिवर्तन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस मॉडल के तहत नागरिकों, प्रशासन, स्थानीय पुलिस और सीमा सुरक्षा बल तथा सेना के सहयोग से पूर्ण क्षेत्रीय सुरक्षा का प्रबंध किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनः परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी।
1: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने रीनीट की घोषणा किया है और रीनीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: श्री प्रधान ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि CBI इस मामले की पूरी जाँच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दिल्ली में 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट एडमिट कार्ड दिखाना होगा। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर SP बघेल ने कहा है कि भारत को 2047 तक विश्व की महाशक्ति और अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को सशक्त किए बिना हासिल नहीं हो सकता। असम के गुवाहाटी में कार्यक्रम में उन्होंने राज्य और राष्ट्र की मजबूती के लिए ग्राम स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाए जाने पर बल दिया। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि यह एकेडमी 5 मुख्य क्षेत्रों पर काम करेगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की घुसपैठ और इसके कारण जनसंख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हिलाइंग कल से 3 जून तक भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा होगी। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटन्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: अभी आप सुन रहे थे हिंदी समाचार, जिनका रिले हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कर रहे थे। FM 102.3 MHz पर यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। आइए श्रोताओं जानते हैं हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। सबसे पहले एक नजर आज हमारे केंद्र से शेष रहे कार्यक्रमों के बारे में। प्रभु वंदना का कार्यक्रम भक्ति संगीत आप सुन सकेंगे 6:20 पर। कार्यक्रम युवा उमंग के अंतर्गत सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT भाग 1295 6:30 पर। साय 7 बजे आप सुनेंगे कृषि पर आधारित कार्यक्रम खेती किसाना सेती और आज इस कार्यक्रम का विषय रहेगा गर्मी के मौसम में बेल वाली सब्जियों की देखभाल कैसे करें। कार्यक्रम महरे गांव 7:30 पर आप सुनेंगे और इस कार्यक्रम का आज का विषय रहेगा वैश्विक संकट और हमारी जिम्मेदारी। रात्रि 8 बजे आप सुन सकेंगे पंजाबी गीत। रात 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खुला आकाश के अंतर्गत एक फिल्म के गीत और हमारी आज की फिल्म रहेगी मैंने प्यार किया। राष्ट्रीय हिंदी समाचार आप सुनेंगे रात्रि 8:45 पर और रात 9 बजे आप सुनेंगे राष्ट्रीय अंग्रेजी समाचार। ये समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। रात 9:15 पर आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई के प्रसारण और आज रात 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे और हमारा ये आज का कार्यक्रम रहेगा आपके व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित। राष्ट्रीय हिंदी समाचार रात्रि 11 बजे और 11:05 पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय अंग्रेजी समाचार। ये समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। ये तो थे हमारे केंद्र से आज शेष रहे कार्यक्रमों के बारे में विवरण और आइए जानते हैं हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। कल प्रातः 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम लोकरंग और कार्यक्रम सुप्रभात का समय रहेगा प्रातः 7:40 पर। कार्यक्रम नमस्ते हिसार आप सुन सकेंगे प्रातः 10 बजे। कल साय 5 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे। ये कार्यक्रम व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित होगा और कार्यक्रम किसान वाणी का समय रहेगा साय 7 बजे और 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम महरे गांव। कल रात्रि 8 बजे सुनिएगा परिक्रमा और रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे आज प्रसारित किए गए कार्यक्रम हेलो हिसार का पुनः प्रसारण। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से कार्यक्रमों की रूपरेखा। FM band 102.3 MHz पर आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। इस वक्त शाम के 6:10 होने को हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जिनका रिले हम करेंगे आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से। रिले की प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आश्वस्त किया कि नीट की पुनर्परीक्षा की प्रक्रिया बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह

0: कंपनी ने आज पंचकुला से प्रदेश भर में लगभग 100 करोड़ रुपए से अधिक लागत की स्वास्थ्य परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। हरियाणा के सभी जिला अस्पतालों में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार क्लिनिक की शुरुआत की गई। सरकार ने कहा कि देश एक और पोत के 3 जून को विशाखापत्तनम पहुंचने की उम्मीद और कुरुक्षेत्र में जिला संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने एक सोसाइटी प्रबंधक के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। DD न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वस्त किया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी।
1: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने रीनीट की घोषणा किया है और रीनीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम से सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: छात्रों को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच त्रुटि रहित परीक्षा आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
1: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है, जो रक्षक था वही भक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारे प्रयास।
0: परीक्षा प्रक्रिया में भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों के बारे में बात करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पंचकुला से वर्चुअल माध्यम द्वारा पूरे प्रदेश में लगभग 100 करोड़ से अधिक लागत की 9 स्वास्थ्य परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा के स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान तथा आयुष मंत्री आरती सिंह राव ने की। मुख्यमंत्री ने 22,29,00,000 रुपए की लागत से बने 30 स्वास्थ्य संस्थानों का उद्घाटन तथा 21,50,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले 16 नए स्वास्थ्य संस्थानों का शिलान्यास किया। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं के लिए विशेष और समर्पित उपचार के लिए राज्य के सभी जिला अस्पतालों में प्रतिवर्ष 34,00,000 रुपए की लागत से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार क्लिनिक की शुरुआत की।
2: स्वस्थ हरियाणा और समृद्ध हरियाणा के हमारे संकल्प को आज एक नई ताकत मिल रही है। मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि 100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की महत्वपूर्ण परियोजनाओं का आज उद्घाटन हरियाणा वासियों के बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में एक बड़ा कदम है। आज का दिन इसलिए भी विशेष है, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को लगातार तेज गति से आगे बढ़ाने के 12 वर्षों की जन सेवा यात्रा का आज गौरवपूर्ण उत्सव भी हम सब मना रहे।
0: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया है उनमें पानीपत, कुरुक्षेत्र और जिला के अस्पतालों में MRI सेवा और चरखी दादरी जिला अस्पताल और बहादुरगढ़ उपमंडल अस्पताल में सिटी स्कैन सेवा शामिल है। उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं का लगातार विस्तार कर रही है।
3: आयुष्मान भारत योजना, चाहे जन औषधि केंद्र, डिजिटल हेल्थ मिशन, मेडिकल कॉलेजों का विस्तार, हम सब देख रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं को गरीब के घर द्वार तक पहुंचाना हमारी सरकार का प्रथम ध्येय है।
0: स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के लिए इस बार 14 करोड़ से अधिक का बजट दिया गया है।
4: वर्ष 2014-15 की तुलना में 5 गुना ज्यादा तथा पिछले वर्ष से लगभग 3,300 करोड़ ज्यादा है। स्वास्थ्य विभाग लगातार बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, मानव संसाधन की कमी को पूरा करने, नए उपकरण उपलब्ध करने, जांच सेवाओं में विस्तार करने, दवाइयां उपलब्ध करवाने के लिए कटिबद्ध है।
0: मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश भर में आज स्वास्थ्य परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के दौरान विभिन्न जिलों में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां मंत्री और विधायक मौजूद रहे। हिसार में मौजूद कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने बताया
5: तार के अंदर तीन जगह पे सब हेल्थ सेंटर खोले गए हैं, एक सरावा में, एक

0: खुद में कूड़ाखेड़ा में और लगभग 2 करोड़ की लागत इसमें आएगी।
1: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम क्षमता पर काम कर रहे हैं।
2: हमारे यहाँ पर पेट्रोल और डीजल और एलपीजी के सफिशिएंट स्टॉक है, नेचुरल गैस और क्रूड की सफिशिएंट इन्वेंट्रीज टाइड अप है। हमारी सारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन ऑल टाइम हाई है, लगभग 92 TMT पर डे। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है।
1: पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस हुरमुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापत्तनम पहुंचने की आशा है। इस पोत से लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल लाया जा रहा है। हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने आज कुरुक्षेत्र में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति के मासिक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कुल 12 शिकायतें रखी गईं, जिनमें से 6 शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि बाकी 6 मामलों को अगली बैठक तक लंबित रखा गया। बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री ने एक सोसाइटी प्रबंधक के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश भी दिए। मीडिया से बातचीत में FIR को लेकर श्री कृष्णलाल पंवार ने कहा,
3: जिस प्रकार से नेग्लिजेंसी मुझे नजर आई तो मैंने FIR के आदेश दिए। अधिकारियों से मेरी यही अपील रहेगी कि कोई भी ऐसा अवसर ना दे जिससे मुझे कोई एक्शन लेना पड़े। मैं कोशिश करता हूँ और अधिकारियों से भी यही बात कहूंगा कि हर मामले को आप निपटा करके मेरे पास सामने आए तो उसमें लोग कहें कि हमें न्याय मिल चुका। अभी किसान भाइयों ने शिकायत मुझे दी है और मैंने बाकायदा जी साहब को दी है।
1: वल्लभगढ़ में आज मुजेसर अंडरपास निर्माण कार्य विधिवत भूमि पूजन के साथ शुभारंभ किया गया। वल्लभगढ़ के विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि इस अंडरपास के निर्माण से लोगों को जाम और दुर्घटनाओं से बड़ी राहत मिलेगी। करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाला ये अंडरपास लगभग 18 महीने में तैयार होगा।
3: 12 करोड़ की जमीन परचेज करी है और अंडर पास 12.5 करोड़ की लागत से PDOT बनाएगा और जो 6.5 करोड़ की लागत से रेलवे 30 करोड़ के आसपास की लागत से पुल बनकर तैयार होगा और जिससे मुजेसर गांव को लाभ मिलेगा और उद्योग जगत को लाभ मिलेगा और 22-23
1: हरियाणा के खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने आयुष्मान कार्ड होने इलाज उचित कार्रवाई न करने के चलते भिवानी सिविल अस्पताल के आयुष्मान के मामलों को देखने वाले अधिकारी विनोद को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में मौसम विभाग ने आज पंजाब अनुमान लगाया है। विभाग ने कहा है कि आज 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है, जबकि 30 तारीख को इक्का दुक्का जगहों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। आज और कल कई जगहों पर और 31 तारीख को इक्का दुक्का जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आश्वस्त किया कि नीट की पुनर्परीक्षा की प्रक्रिया बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पंचकुला से प्रदेश भर में लगभग 100 करोड़ रुपए से अधिक लागत की स्वास्थ्य परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। हरियाणा के सभी जिला अस्पतालों में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार क्लिनिक की शुरुआत की गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिनका रिले किया जा रहा था आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम भक्ति संगीत।

आपने सुना कार्यक्रम भक्ति संगीत। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम युवा उमंग के अंतर्गत प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश। उमंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करती हूँ।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है,
0: परीक्षा अक्सर अकेले की होती है लेकिन परिणाम सबके सामने आता है, इसलिए कोई भी काम करने से पहले हमें परिणाम का विचार जरूर करना चाहिए।
1: आपका बहुत बहुत आभार इतना सुंदर विचार भेजने के लिए। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान,
0: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा रानी जी,
1: जालंधर पंजाब से संदीप कौर, प्रभा कौर, राधिका कौर और प्रभा जटोलिया,
0: गांव ढाणे कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, प्रियांशी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अनाया गुर्जर, गुरदीप गुर्जर और प्यारी बिटिया किरत,
1: और बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं। संदेश भेजने के लिए निवेदन है, इसी प्रकार से जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से। अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी रजनीगंधा के बारे में, जो बहुत ही सुगंधित फूल है, लेकिन हमारी चर्चा अधूरी ही रहेगी
0: यदि हम फूलों का राजा कहे जाने वाले गुलाब की चर्चा न करें।
1: जी, ये बात तो है।
0: श्रोताओं, इसे दुनिया का सबसे अधिक प्रिय फूल माना जाता है। गुलाब को इसकी सुंदरता और खुशबू के कारण विदेशी साहित्य में किंग ऑफ ऑल फ्लावर्स भी कहा जाता है। गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
1: जी हाँ। और जहाँ तक इसकी उत्पत्ति का प्रश्न है, तो आपको बता दें कि गुलाब लगभग 4 करोड़ वर्ष पुराना फूल माना जाता है।
0: जी,
1: क्योंकि वैज्ञानिकों को इसके जीवाश्म भी मिले हैं जो करोड़ों वर्ष पुराने हैं। विमलेश जी, अब एक खास बात ये बताइए कि गुलाब फूल मूल रूप से किस देश का है?
0: अजीत जी, गुलाब फूल मूल रूप से किसी एक देश का नहीं है। वनस्पति वैज्ञानिकों के अनुसार गुलाब एक जंगली प्रजाति है जो मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, मुख्य रूप से चीन, भारत और मध्य एशिया में।
1: जी, एक रोचक तथ्य ये भी है कि लगभग 5000 वर्ष पहले चीन में गुलाब की खेती के प्रमाण मिलते हैं।
0: जी,
1: गुलाब की कई प्रजातियां चीन से ही विकसित हुई हैं और धीरे धीरे ये प्रजातियां पूरी दुनिया में फैल गई।
0: अजीत जी, अक्सर हम काले गुलाब के विषय में सुनते हैं।
1: काले गुलाब?
0: जी, जिसे ब्लैक रोज भी कहते हैं। क्या गुलाब काले रंग का भी होता है?
1: नहीं विमलेश जी, वैज्ञानिक तथ्य ये है कि जो गुलाब हमें काला दिखाई पड़ता है ना, वो दरअसल गहरे लाल या सुर्ख रंग का होता है।
0: जी,
1: जिसमें थोड़ा थोड़ा बैंगनी रंग भी मिला होता है, इसलिए यह काला दिखाई पड़ता है।
0: जी,
1: वास्तव में ये काला गुलाब है नहीं। वैसे मैंने कई बार विमलेश जी नीला गुलाब भी देखा है।
0: अजीत जी, वैज्ञानिक सत्य ये है कि प्राकृतिक रूप से नीला गुलाब होता ही नहीं है। वैज्ञानिकों ने जैव तकनीक की सहायता से नीला गुलाब विकसित किया है।
1: विनेश जी, कल हमने रजनीगंधा फूल की चर्चा करते हुए बताया था कि इस फूल की खुशबू रात के समय सबसे अधिक होती है।
0: जी,
1: लेकिन एक बार श्रोताओं को बता दें कि गुलाब के फूलों के साथ ये बात बिल्कुल विपरीत। गुलाब के फूलों की खुशबू प्रातः काल सबसे तीव्र मानी जाती है, क्योंकि इस समय इसकी पंखुड़ियों में सुगंधित तेल सबसे अधिक सक्रिय होते हैं।
0: अजी जी, जब आपने सुगंध की बात की है तो एक बात और मुझे याद आ गई। वो ये कि गुलाब के फूलों के इत्र दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हैं।
1: जी, वो तो है।
0: सबको जानकर आश्चर्य होगा कि मात्र एक बूंद इत्र या परफ्यूम बनाने में हजारों गुलाब की पंखुड़ियां लगती हैं।
1: जी बिल्कुल सही आपने कहा विमलेश जी, यही कारण है कि गुलाब की पंखुड़ियों से निकला हुआ रोज ऑयल बहुत महंगा होता है।
0: जी,
1: हम सब जानते हैं कि गुलाब खाने और पीने के काम भी आता है। गुलाब का शरबत, गुलकंद वगैरह कौन नहीं जानता।
0: बिल्कुल।
1: आइए अब बात करते हैं गुलाब के फूलों के रंगों की।
0: गुलाब कई रंगों के होते हैं और हर रंग की अपनी मानवीय भाषा होती है, जैसे लाल गुलाब प्रेम का, सफेद गुलाब शांति का,
1: जी,
0: पीला गुलाब मित्रता का और गुलाबी

0: गुलाब सम्मान और प्रशंसा का। और आपको पता है मधुमक्खियों का भी सबसे प्रिय फूल है गुलाब।
1: जी विमलेश जी, कई ऐसे फूल हैं जिनमें कांटे नहीं होते।
0: जी,
1: लेकिन प्रश्न मेरा ये है कि गुलाब के पौधे में कांटे क्यों होते हैं?
0: बड़ा मजेदार लेकिन विज्ञान सम्मत प्रश्न है। इसका जवाब है, गुलाब के पौधे में कांटे उसकी रक्षा के लिए होते हैं ताकि जानवरों से आसानी से न खा सकें।
1: जी, तो श्रोताओं ये थी जानकारी हमारे आपके सबके चहेते फूल गुलाब की। अब आज का प्रश्न, आज की जानकारी से प्रश्न सुन लीजिए। हमारा प्रश्न है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को जरूर फॉलो करें, इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: तो श्रोताओ अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं पहला कार्यक्रम। शीर्षक है खेल संध्या।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत रूपांतरण है। कार्यक्रम में भारत के पारंपरिक खेलों का उल्लेख किया गया है।
1: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,
1: मित्रों संग आनंद मनाते,
2: मित्रों संग आनंद मनाते,
1: कभी दौड़ना और उछलना,
2: कभी दौड़ना और उछलना,
1: कभी गेंद के खेल खेलना,
2: कभी गेंद के खेल खेलना,
1: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
2: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
1: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
2: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
1: गिल्ली डंडा सबको भाता,
2: गिल्ली डंडा सबको भाता,
1: सतोलिया भी मजा दिलाता,
2: सतोलिया भी मजा दिलाता,
1: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
2: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
1: या हंस हंस के बातें करना,
2: या हंस हंस के बातें करना,
1: जब अंधेरा होने लगता,
2: जब अंधेरा होने लगता,
1: सबको कुछ डर लगने लगता,
2: सबको कुछ डर लगने लगता,
1: तब हम घर को वापस आते,
2: तब हम घर को वापस आते,
1: कल खेलेंगे यह कह जाते,
2: कल खेलेंगे यह कह जाते।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों के डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर एंजल और वान्या, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, संगीत तथा मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये संगीतमय कार्यक्रम खेल संध्या और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे।
1: परमवीर चक्र विजेता मनोज कुमार पांडे के जीवन और भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके अपार शौर्य का वृत्तांत इस कार्यक्रम में दिया गया है।

0: यदि मौत मेरे खुद को साबित करने से पहले आती है तो मुझे सौगंध है कि मैं मौत को भी मात दे दूंगा।
1: ये शब्द हैं कारगिल युद्ध के महापराक्रमी योद्धा और परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे के, जो उन्होंने अपनी डायरी में लिखे थे। निसंदेह ये शब्द उनकी साहसिक प्रवृत्ति को अभिव्यक्त करने के लिए पर्याप्त हैं।
0: आज हम चर्चा करेंगे भारतीय सेना के जांबाज सैनिक लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे की, जिन्होंने कारगिल युद्ध में परमवीर चक्र प्राप्त किया। उन्हें बटालिक का हीरो भी कहा जाता है। बटालिक कारगिल युद्ध का एक महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र है।
1: जून 1975 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर सीतापुर के निकट रुधा गांव में उनका जन्म हुआ था। वो श्री गोपी चंद्र पांडे और श्रीमती मोहिनी पांडे के सबसे बड़े पुत्र थे। सेना में जाना उनका सपना था। वो हमेशा ही सेना की प्रतिष्ठित वर्दी पहन

0: बनकर अपने देश के शत्रुओं से लड़ने के सपने देखा करते थे।
1: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सैनिक विद्यालय लखनऊ में हुई। स्कूली जीवन में उन्हें अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र माना जाता था। खेलों में उनकी गहरी रुचि थी। बॉक्सिंग, शारीरिक सौष्ठव और वॉलीबॉल में उन्हें महारत हासिल थी।
2: गोविंद, तू सर्विस कर, पीछे जा। हाँ, और सर्विस सीधा सेंटर में डालना। ओके। पीछे ले। हाँ, थर्ड अटेम्प्ट मिला। शॉट ले।
1: उत्तर प्रदेश में वो राज्य स्तर पर नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुने गए।
3: श्री मनोज पांडे को उत्तर प्रदेश राज्य स्तर पर एनसीसी का सर्वश्रेष्ठ कैडेट घोषित किया जाता है।
0: प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने सेना में जाने की अपनी अदम्य इच्छा को साकार करने के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए में दाखिला लिया। उनके बारे में एक घटना बहुत ही रोचक और प्रेरक है। उस दिन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में भर्ती होने वाले नौजवानों का साक्षात्कार चल रहा था।
4: तो मनोज पांडे जी, आप बहुत अच्छे अंकों से एनडीए की चयन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और इसलिए आपको इस साक्षात्कार में बुलाया गया है।
5: धन्यवाद श्रीमान।
4: तो आप ये बताइए कि आप भारतीय थल सेना में क्यों शामिल होना चाहते हैं?
5: श्रीमान, मैं परमवीर चक्र प्राप्त करना चाहता हूं।
4: वेरी एम्बिशियस, लेकिन क्या आपको लगता है कि परमवीर चक्र एक खिलौना है?
5: श्रीमान, मुझे निश्चय है कि अपने कार्यकाल में मैं अवश्य ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा।
4: बेस्ट ऑफ लक।
1: और उन्होंने ऐसा ही किया भी। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें कमीशन मिला और वो लेफ्टिनेंट के पद पर 11 गोरखा राइफल्स में शामिल हो गए। सेना की ये इकाई अपनी वीरता और पराक्रम के लिए विख्यात है। सेना में कमीशन मिलने के बाद उनकी पहली नियुक्ति कश्मीर घाटी में हुई।
0: मई के महीने में कारगिल और आसपास के सामरिक महत्व के क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठ की खबर दी गई थी। उन दिनों लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की गोरखा राइफल्स रेजिमेंट ने सियाचिन में अपनी तैनाती के 1.5 वर्ष पूरे कर लिए थे और रेजिमेंट को शांति क्षेत्र पूना भेजा जा रहा था। लेकिन इस घुसपैठ का पता चलने के बाद लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को उनके अद्भुत नेतृत्व कौशल के मद्देनजर सियाचिन के ही बटालिक सेक्टर जाने के निर्देश मिले।
1: युद्ध शुरू हो चुका था।

0: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान का नेतृत्व सौंपा गया। अभियान था सियाचिन की सबसे ऊंची चोटियों में से एक जोबार टॉप पर कब्जा करना। भीषण युद्ध के बाद यह अभियान सफल रहा। अब उनकी टुकड़ी को जोबार टॉप के पास वाली एक और चौकी खालूबार पर कब्जा करना था। वो अपनी टुकड़ी के कमांडर थे।
1: 3 जुलाई 1999 को गोरखा रेजिमेंट के लीडर लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने पूरी ताकत से अपनी टुकड़ी के साथ पाकिस्तानी चौकियों पर आक्रमण किया।
2: बहादुर साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार आप सबने जोबार टॉप की लड़ाई में अपना युद्ध कौशल दिखाया है, उसी प्रकार खालूबार में भी दिखाएंगे।
3: हम तैयार हैं।
2: लेकिन साथियों, दुश्मन तक पहुंचना आसान नहीं है। वे ऊंची चोटियों पर पोजीशन लिए बैठे हैं और हमारी हर कार्यवाही पर नजर रख रहे हैं। उन तक पहुंचने के लिए हमें इस बार वो करना होगा जो कठिन तो है पर असंभव भी नहीं है।
4: वो क्या साहब?
2: इस मैप को देखिए।

सीधी चढ़ाई करने में खतरा है, इसलिए हम यहां से पहाड़ के इन दुर्गम दर्रों को पार करते हुए उन तक पहुंचेंगे और फिर

0: खालूबार टॉप पर मंडराते रहे। दुश्मन का ध्यान विमानों की ओर रहेगा। इसी बीच आधी टुकड़ी पहाड़ के इस ओर से और आधी पहाड़ के उस ओर से पर्वत शिखर पर पहुंचेगी, और जब सब पहुंच जाएं तो मैं सबको संदेश भेजूंगा। कूट संदेश मिलने का इंतजार करना।
1: जी साहब।
0: संदेश मिलते ही सबको दुश्मन पर टूट पड़ना है। आक्रमण करने का संकेत होगा गोरखा राइफल्स का युद्ध घोष।
1: जय महाकाली। आयो गोरखाली। जय महाकाली। आयो गोरखाली।
0: तो शुरू करते हैं अभियान। सब तैयार हो जाओ। शाम होते ही हम सब मिशन पर निकल पड़ेंगे।
1: जय महाकाली। आयो गोरखाली।
2: और फिर शुरू हुआ सैन्य अभियान। खालूबार टॉप पर समय समय पर वायुसेना के विमान मंडराते रहे और जो बंकर निशाने पर आए उन्हें उड़ाते रहे। इसी बीच लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में रणबांकुरों की टुकड़ी खालूबार टॉप की ओर इंच इंच करके बढ़ रही थी।
3: मार्ग दुर्गम था। खून जमा देने वाली ठंड और अत्यधिक ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन की मात्रा भी धीरे धीरे विरल होती जा रही थी, लेकिन इन सैनिकों के मनोबल और दृढ़ निश्चय के सामने वस्तु स्थिति भी परास्त होती दिखाई दे रही थी। 4 घंटों की दुर्गम चढ़ाई के बाद आखिरकार उनका लक्ष्य सामने आ गया था। दुश्मन इस बात से बेखबर था कि स्वयं महाकाल उनके सरों पर मंडरा रहा है।
2: आक्रमण हुआ
3: और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में वो पलक झपकते ही दुश्मनों पर टूट पड़े।
1: जय महाकाली।
3: पाकिस्तानी सैनिकों के लिए यह हमला अप्रत्याशित था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमला इस प्रकार होगा। दुश्मन के सैनिक इधर उधर भागने लगे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने मशीन गन के प्रहार से उनका काम तमाम कर दिया।
2: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे पूरी तत्परता और असीम शौर्य के साथ सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। इस बीच दुश्मन भी संभल गया था और उनके बंकरों से भी भारी गोलीबारी होने लगी, जिसके कारण भारतीय सैनिक हताहत होने लगे।
0: जब तक दुश्मन की मशीन गनों को शांत नहीं किया जाता, तब तक हमारे जवान हताहत होते ही रहेंगे। मुझे हर कीमत पर उन बंकरों पर हमला करना होगा।
3: उन्होंने हथगोले लिए और गोलीबारी से स्वयं को बचाते हुए सैनिकों का उत्साह बढ़ाते हुए स्वयं उनके बंकरों पर हमला कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने दुश्मन के 2 बंकरों का सफाया कर दिया। उनकी इस कार्यवाही में दुश्मन के बहुत से सैनिक मारे गए। अब वो 3rd बंकर की ओर बढ़ने लगे।
2: इसी बीच गोलियों की बौछार ने उनके कंधे और पैरों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। चोट बहुत गहरी थी और खून बहुत बह चुका था, लेकिन युद्ध के इस वीर नायक ने हार नहीं मानी। वो भारी गोलीबारी के बीच ऐसी घायल अवस्था में भी सैनिक साथियों को आक्रमण जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते रहे।
3: इस बीच जो भी शत्रु सामने आया, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने हथगोलों से उसे मौत की नींद सुला दिया और 3rd बंकर में घुसकर उन पर हथगोलों से भीषण आक्रमण कर दिया। वो आमने सामने के युद्ध में दुश्मनों से भिड़ गए।
2: बंकर को नष्ट करने के

0: बाद वो शत्रु के चौथे बंकर की ओर बढ़ने लगे। वो चौथे बंकर के पास पहुंचे ही थे कि दुश्मनों की मीडियम मशीन गन की एक गोली उनके माथे के बीचों बीच जा लगी। गिरते गिरते उन्होंने हथगोलों के भीषण प्रहार से उस बंकर के भी कुछ और सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
1: बहुत अधिक मात्रा में खून बह जाने के कारण अब उनकी सांसें डूब रही थीं। उनके मुंह से नेपाली भाषा में ये शब्द निकले,
2: ना छोड़ना।
1: जिसका अर्थ है उन्हें छोड़ना मत। इन अंतिम शब्दों के साथ वो चिर निद्रा में लीन हो गए।
0: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की इस अपूर्व वीरता के कारण ही भारतीय सेना सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण चौकी खालुबार पर कब्जा कर सकी और इस प्रकार कारगिल क्षेत्र के बटालिक सेक्टर में भारत की विजय का मार्ग खुल गया।
1: एक महीने बाद 1999 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस शौर्य के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
0: देश ने इस महावीर की स्मृति को विस्मृत होने नहीं दिया। द्रास कारगिल युद्ध संग्रहालय, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी पुणे और देश में अन्य कई जगहों पर उनकी स्मृति में स्मारक बनाए और अपने भवनों का नाम रखा।
1: राष्ट्र श्रद्धा सहित इस असाधारण शौर्य के स्वामी और मूर्धन्य युद्ध नायक को नमन करता है।
3: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल। कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और आर.एस. रघु। शोध व आलेख अजीत होरो। तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो। ध्वन्यांकन मयंक कुमार और शानु मुक्सीम। निर्माण सहयोग तनु गुप्ता। निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। शाम के 7 बज चुके हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती किसाना सेती।

0: नरेंद्र भाई राम राम।
1: और अंजुमान आपने भी राम राम, और खेती किसाना से कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाइयों ने भी राम
0: राम
1: राम।
0: राम। नरेंद्र भाई।

0: खेती किसाना स्थिति कार्यक्रम में आज आप बातचीत करांगे कि बेल वाली सब्जियां जो है, देखो गर्मी का मौसम आ रहा है और ये ज्यादातर हरी जो बेल वाली सब्जी है उनका जो उपभोग है वो ज्यादा होगा। तो इसीलिए बेल वाली सब्जी जिस भाई ने अपने किचन गार्डन में या खेत में लगा रखी है तो किस प्रकार तो उसकी देखभाल करें ताकि गर्मी के मौसम में अच्छा स्वास्थ्य रहे, और अगर किसी ने व्यावसायिक तौर पर वो खेती कर रखी है तो उस किसान भाई ने 2 पैसे का मुनाफा भी हो जाए।
1: बिल्कुल अनिल भाई, देखो मौसम आप देखना लग रहे हैं बढ़ता जा रहा है, रोज 45-46 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया,
0: जी
1: और जो अपनी बेल वाली सब्जी है उसमें देखा भाई फूल तो खूब आ रहा है लेकिन गला गला फल झड़ने लग रहा है।
0: जी
1: तो इस जो ये गर्मी है, जो नौतपा का जो समय चल रहा है,
0: जी
1: ये बेल वाली सब्जियों के लिए बड़ा खतरनाक है।
0: नरेंद्र भाई, बेल वाली सब्जियों की बातचीत तो आप कराएंगे, लेकिन उससे पहले जैसे कि आप रोज अपने कार्यक्रम के माध्यम से किसान भाइयों से बातचीत करा कि खेती में जो किसी किसान भाई ने, जैसे छोटा जमींदार है, उसने नु लागे है कि भाई जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना मुनाफा नहीं पा रहा, तो उस खेती करने का थोड़ा सा तरीका बदल दे, उसकी पद्धति बदल दे, उसकी प्रणाली बदल दे, और खेती की तकनीक बदल दे चाहिए,
1: बिल्कुल
0: या कोई फसल का बदलाव कर ले अपने खेत में, तो ज्यादा जो उसको नु लाग है कि खेती घाटा का सौदा है तो वो लाभ का भी सौदा उसके है। अब जैसे छोटे जमींदार हैं, अपन को कहा कि खेती में नए प्रयोग करो, पुरानी या परंपरागत खेती जो सालों तक पीढ़ियां थे, सालों तक भी कहूँ कहेंगे कि जो अपनी पीढ़ियां तक चल दी आने लग रही हैं, उनमें थोड़ा सा बदलाव करें, क्योंकि पहला देखो जनसंख्या का इतना बोझ, इतना भार नहीं था जमीन के ऊपर, और ये जैसे जैसे समय बदल रहा है, तकनीक बदल रही है और जरूरतें बदल रही हैं अपनी, तो उसी हिसाब से आपने खेती करने के तरीके या फसलों में बदलाव करने की भी जरूरत पड़ेगी। तो सब्जियों की खेती एक अच्छा विकल्प उसका है किसान भाइयों के पास, जिनके पास जोत का आकार छोटा है और जो अच्छी तकनीक से और आधुनिक खेती के जानकार किसान भाई हैं, क्योंकि जानकारी तो कोई भी ले सके है, परंपरागत खेती तो वो सालों से पीढ़ियों से करते आ रहे हैं, तो उसमें तो तजुर्बे की कोई कमी है कौन नरेंद्र भाई,
1: बिल्कुल
0: लेकिन थोड़ा सा विज्ञान का अगर उसमें मिला जुला रूप देखने में आवे, खेती में विज्ञान को भी उसमें शामिल कर लिया जाओ, तो निश्चित तौर पर थोड़ी जमीन के होते हुए भी किसान भाइयों की आर्थिक स्थिति बढ़िया उसके है।
1: बिल्कुल अनुमान आपने देखो बहुत बढ़िया बात कही है, क्योंकि जब तक विज्ञान का तड़का साथ नहीं लगेगा ना, और आप जो पुरानी पीढ़ी जो अपनी है जो जिस तरीके से कराया करती, उसमें जो नई तकनीक अगर हम सही तरीके से अपना लेंगे तो वास्तव में आप इन्हें एक अच्छे तरीके से खेती करके ने एक अच्छा धन भी कमा सके हैं और एक अच्छी प्रोडक्शन लेके अपने देश में योगदान दे सके।
0: जी और सब्जियों में कोई भी सब्जी हो सके है, जैसे कि पारंपरिक अगर सब्जी की बात करें, आलू है, प्याज है, टमाटर है, इनमें या कोई भी सब्जी है उसको भी पारंपरिक तरीके से भी अगर आप लगाए हैं खेत में, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपने फिर वही बात आज है कि जानकारी में थोड़ा सा मुनाफा आपने करना पड़ेगा, इजाफा करना पड़ेगा, जानकारी भी बढ़ानी पड़ेगी, स्रोत बढ़ाने पड़ेंगे, और जिदे आप बाजारीकरण के माध्यम से अच्छा खासा मुनाफा आप ले सके। बाजारीकरण की बात भी करेंगे नरेंद्र भाई, लेकिन शुरुआत अपना बेल वाली सब्जियों की बात कर रहे थे कि आज का जो विषय हमारा बेल वाली सब्जियां हैं, बेल वाली सब्जियों की जब बात करें तो ईब जो मार्केट में आ रही है, आने वाले 2-4 महीना में चलेंगी, जैसे लौकी है, घिया, करेला है, कद्दू है, खीरा है, और काकड़ी है हरे वाली,
1: बिल्कुल
0: तोरी
1: तोरी
0: है,
1: है।
0: कद्दू है, और टिंडा है, पेठा है, तो ये सारी सब्जी बेल वाली सब्जियों में शामिल करी जा रही है। इनकी अच्छी पैदावार लेने के लिए जो है नियमित प्रबंधन की जरूरत है, खेत प्रबंधन की जरूरत है, फसल प्रबंधन की जरूरत है, और बीज अच्छा अच्छा बीज लगाने की जरूरत है। बहुत सारे जो हमारी बाण है वो तो किचन गार्डन इनकी घर में थोड़ी सी कच्ची जगह जिसके भी है, या
1: बिल्कुल
0: ओड़ लगा सके हैं, गमले में भी लगा रही हैं बहुत सारी बहनें, जैसे मिर्च लगा ली, टमाटर लगा लिए, तो इस तरीके से, और बेल चढ़ा ली, घिया की चढ़ा ली, घर में अगर थोड़ी सी भी दीवार के ऊपर कच्ची
1: बिल्कुल
0: चढ़ा सके हैं, और इस प्रकार से किचन गार्डनिंग का बहुत शौक हुआ है,
1: सही कहा भाई। देखो आप
0: शौक को अगर
1: हाँ
0: परिवार के स्वास्थ्य में अगर इस्तेमाल करा जाओ तो दुगुना फायदा हो जाएगा।
1: बिल्कुल भाई, देखो आपने सही कहा कि दुगना जो आम के आम और गुठली के दाम,
0: जी
1: एक तो आपके घर की खुद की सब्जी होगी, दूसरा आपके पैसे की बचत होगी, और तीसरा है ना देखो आप जो आधुनिकता की दौड़ में जो आज हम देखने लग रहे हैं बहुत सपरे होने लग रहे हैं,
0: जी
1: रासायनिक दवाइयों का प्रयोग होगा, लेकिन आप घर के ऊपर बोएंगे तो देखो आप है ना बिना रासायनिक खादों के करेंगे, और वो प्राकृतिक जब हम खेती करें तो उसमें अच्छा मुनाफा हम कमा पाएंगे।
0: अच्छी बढ़िया उच्चतम जो है, बढ़िया तो बढ़िया पानी देंगे आप, अच्छी देसी खादों का इस्तेमाल करेंगे, और जो सबसे पहले तो यही बात कहेंगे कि जब भी फसल प्रबंधन की बात आता है, चाहे वह सब्जियां की फसल हो।

0: ना खेती हो चाहे पारंपरिक खेती हो, तो प्रबंधन बहुत जरूरी है। खेत का प्रबंधन है, फसल का प्रबंधन है, बीज है, खाद प्रबंधन है, जल प्रबंधन है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान जरूर देने की जरूरत है। बेल वाली सब्जियों की जो व्यवस्थित देखभाल के लिए कुछ बात है जी, या कुछ नियम कैसे हैं जिसमें अगर किसान भाई ध्यान रखेंगे, पालन करेंगे, तो अच्छा लाभ ले सके हैं बेल वाली सब्जियों से। पहली बात तो जिसे मचान या ट्रेलिस जिसने कहा है, सहारा देना एक प्रकार
1: बिल्कुल
0: से, बेलों को जमीन पर फैलने की बजाय जो ऊपर दीवार पर चढ़ा दे या कोई तार तूर बांध के उस पर ऊपर की तरफ अगर उसका रुझान कर दे तो ज्यादा फायदा होगा।
1: बिल्कुल ठीक कहा भाई आपने। अगर आप जमीन के ऊपर होगा वो जो फल लगेगा, देखो उसमें खराब होने के ज्यादा अंदेशा रहा है, लेकिन वो जमीन तो ऊपर होगा तो आपका फल में बढ़वार भी अच्छी मिलेगी और साफ सुथरा भी रहेगा।
0: हाँ, इसके लिए जैसे लकड़ी है, कोई बांस है या
1: हाँ
0: रस्सी जोड़ी की मदद से एक जाड़ सा बना दिया जाए तो इससे सब्जियों को धूप भी अच्छी मिलेगी और फल सड़ेंगे नहीं और कीड़े मकोड़े तो फसल का बचाव रहेगा।
1: और साथ साथ में एक और है भाई, देखो जो उसका तापमान है जो जमीन में से ऊपर अगर हम थोड़ा लगा के रखें तो आसपास के तापमान को भी सही तरीके से रखेगा, और जो आपके जो पेड़ होंगे पर आपने जो मचान के ऊपर जहां पर भी आपने कहा अगर उसमें लगाएगा तो उसमें से जब आवाज जब गुजरती है ना तो वो भी फूलों को कम नुकसान पहुंचा है।
0: जी, खाद और पानी की जड़ तक प्रबंधन की बात आओ तो पानी इन पौधों में नमी बहुत जरूरी है और गर्मियों में रोज और सर्दियों या बारिश में जरूरत के अनुसार पानी देना चाहिए और जल भराव ना बने ये ध्यान रखें कि
1: बिल्कुल
0: जल की निकासी होनी चाहिए। चाहे आपने घर लगा रखी है बेल वाली सब्जी या खेत में लगा रखी, तो जल निकासी का प्रबंधन उसमें प्रबंध होना चाहिए और हर 15-20 दिन में पौधों की जड़ों के पास वर्मी कंपोस्ट, केचुआ खाद या सड़ी गोबर की खाद या देसी खाद आप जरूर डाल दें और पौधों को, ताकि पर्याप्त जितनी उसने जरूरत है उस मात्रा में उसने पोषण मिलता रहे और बढ़वार सही रहोगी।
1: लेकिन बड़वार तो सही रहोगी, लेकिन है देखो भाई मनोरंजन कराना भी जो जरूरी है
0: मनोरंजन करवा दे, मेरी रागनी सुनवा दो।
1: तो सुना होंगे भैया ने मास्टर सतबीर व साथियों की आवाज में एक रागनी।

0: नरेंद्र भाई या तो भैया ने सुनी रागनी और अपा बातचीत कर रहे थे बेल वाली सब्जियों की, खाद प्रबंधन की बात अपन करी थी। एक और इसमें विशेष बात जो ध्यान रखने की है वह है हैंड पोलिनेशन। कई बार बेल वाले जो पौधे हैं उनमें नर फूल आवे हैं और परागण नहीं हो पाता है, जिससे कि फूल जड़ जाए और फल नहीं लगते। इसके लिए भी आपको फिर वो हैंड पोलिनेशन करवाने की जरूरत है और सुबह 6 से 9 बजे के बीच में नर फूल को तोड़कर उसके प्रांगण यानी कि पोलन को मादा के फूल जिसके नीचे छोटा सा फल होता है उसके बीच वाले हिस्से पर हल्के से डाल रगड़े। इससे पोलिनेशन होगा और पौधों की जो फल ज्यादा मात्रा में आवेंगे।
1: बिल्कुल, देखो पोलिनेशन का तो बड़ा फायदा है और साथ साथ में देखो पुराने टाइम में तो अपने जो मधुमक्खियां थी उसके द्वारा भी पोलिनेशन हो जाया करता, लेकिन आज हमें खुद भी इसके ऊपर ध्यान विषय जहां पर मान लिया मधुमक्खी नहीं है तो आपने देखो बढ़िया तरीका बताया, उसका थोड़ा सा फूल तोड़ के आपस में उनको हम एक दूसरे से जब भिड़ाने का काम करते मिलाने का काम करते तो एक अच्छा परागकण के रूप में वो फल तैयार होने का काम करेगा
0: जी। और उसके बाद कटाई की जब आप बात करा तो पौधों में अधिक उपज लेने के लिए कटाई सही तरीके से करने की जरूरत है। जब बेल लगभग 5-6 फीट की हो जाए तो उसे उसको मुख्य तने को की ऊपरी टिप को काट दे, इसे 1G कटिंग कहा है। इसके बाद जो नई शाखाएं निकले उसे उनमें भी कुछ दूरी पर काटा है, 2G और 3G कटिंग कम है इसने। इस तरह मादा फूलों की संख्या बढ़ जाए है, यानी कि देखो तकनीक हर साल बढ़ रही है, उसका नाम भी फिर उसी हिसाब से, जितनी एडवांस टेक्निक आपके पास आएगी उसका नाम उसी हिसाब से रखा जा रहा है। और इस तरीके से कटाई भी जैसे कृषि वैज्ञानिक भी समय समय पर बता रहे हैं कि कटाई करते वक्त इन बातों का ध्यान रखें। उसके बाद फिर जो ग्रेडिंग है सब्जियों की वो सबसे ज्यादा जरूरी है, जहां आपने अपनी फसल का अच्छा बाजार भाव लेना है तो, क्योंकि सारा खेल ग्रेडिंग का ही है।
1: अगर क्वालिटी बाजार में तो देखो साफ सुथरी जब चीज जाओगी तो सही बात है, उसके अंदर देख दें खरीदने खातर जो भी व्यापारी होगा जल्दी आओगा और उसके लिए आपने सही कहा आप है उसकी 2-3 ढेरी बना लेंगे तो अच्छी रहोगी।
0: कटिंग तो और ग्रेडिंग तो पहले जो कीट और रोग नियंत्रण है बेल वाली सब्जियों में, पत्तियां मुड़ने यानी कि मरोड़िया रोग उसका है ज्यादा या माऊ का प्रकोप होगा, बचाव के लिए हर 10-15 दिन में नीम के तेल का स्प्रे जरूर कर दें। क्योंकि देखो सब्जियां की बात है तो रासायनिक खादों का, जैसे आपने कहा था शुरू में कि रासायनिक खाद हो चाहे कोई दवाई हो उसका छिड़काव करने से बचे, परहेज जितना हो जाए उतना ही बढ़िया है, स्वास्थ्य के लिए भी और सब्जी की गुणवत्ता के लिए भी बढ़िया है। तो ये इन बातों के अलावा आप बात कर रहे थे कि बाजारीकरण, आपने ग्रेडिंग का जिक्र कराया था कि डेयरी बना ले तो हर प्रकार का चाहे वो सब्जी का साइज हो चाहे वो सब्जी की कुछ कच्ची पक्की भी वही गेड़ दे हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो सब्जियों की जो है वर्गीकरण करना जरूरी है, बढ़िया बढ़िया है कि उसकी क्वालिटी की ग्रेड कर लें या ए ग्रेड है या बी ग्रेड है या सी ग्रेड है, उस हिसाब से उनकी डेयरी बनाकर अलग अलग डिब्बे में पैक करके उसने बाजार में ले जाए।
1: हाँ, ताकि आपको भी जो रेट है वो भी उसी हिसाब से मिल सके और आपके किसी तरह का घाटा ना हो।
0: हाँ,
1: और इसके साथ साथ एक और है, देखो भाई आजकल हमने जो अपनी जो बेल वाली सब्जी आपने जो बात की इसमें जीवामृत का आजकल बड़ा रोल अदा हो रहा है।
0: ओके भाई,
1: यह हमें 10 लीटर पानी में 2 किलो गुड़ और 2 किलो बेसन और 1 किलो गोबर का घोल बना के 7 दिन तक सड़ा ले और फिर आप अपने जो ये बेल वाली जो इतनी सब्जियां हैं इसके ऊपर अगर हम छिड़केंगे तो एक तो फूल नहीं जड़ेगा,

0: अच्छा
1: फल घने आओगे और साथ साथ में जो अपनी अंग्रेजी दवाइयां हैं उनका भी बचाव रहोगा
0: जी।
1: सार के है जो बढ़िया बीज और बिना टपका सिंचाई टाइम पर दवाई और मचान पर चढ़ाई और टाइम पर जब आदमी करेगा चढ़ाई तो वे जो उसका अच्छी तरीके से फल दे सके और अच्छा मुनाफा किसान में मिलेगा
0: जी। तो ये तो बहुत काम की बात आपने कही है और सही तरीका भी आपने बताया है जिससे कि किसान भाई, तो सारे घरेलू तरीके हैं तो लागत भी बिल्कुल कम आओगी किसान भाई की और गुणवत्ता बढ़ेगी। अब बाजारीकरण की थोड़ी सी बात करेंगे नरेंद्र भाई, क्योंकि सब्जियों की खेती की बात हो रही है, जो जब किसान मूल भावकरण की बात आ है तो हम बार बार अपने कार्यक्रम के माध्यम से यही कहा कि किसान उतना व्यवसायिक सोच नहीं आई है किसान भाई की अभी भी जितनी दूसरे जो विक्रेता है समाज उनकी है, क्योंकि कोई भी व्यापारी लगा लो अपने जो उसका उत्पाद है उसकी कीमत एक निश्चित निर्धारित करते हैं कि इसके इससे नीचे तो बेचनी ही होनी। लेकिन किसान भाई भी निर्धारित तो कर सके हैं नरेंद्र भाई, लेकिन उनका जो उत्पाद है वो इस प्रकार का है, मान लो कोई सब्जी है सड़ जाएगी एकदम से नहीं रखेगा, तो टमाटर हो गया पालक होगी एक दिन ताजी ताजी की कीमत है, एक दिन रात ऊपर को टपी और उसका जो गुणवत्ता है वह खत्म, तो फिर किसान भाई की मजबूरी है कि वो उसी दिन उस सब्जी वो जो खराब होने लायक है जल्दी खराब हो जाए
1: तो
0: जल्दी निकालने की जरूरत है। लेकिन उसके लिए भी फिर जैसे और सब्जियों की आप बात करें थे कोई आजकल तो ऑफ सीजन की सब्जी भी बेमौसमी सब्जियां भी आओ हैं वो खैर अलग तकनीक है, जैसे कि पोली हाउस में लगाई है किसी किसान भाई ने उसने फिर प्रिजर्व करके रखनी पड़े है उसमें फिर लागत बढ़ जाए है, लेकिन उसके लिए भी FPOs है किसान भाइयों के लिए कि स्टोरेज हाउसेज बनाए सरकार किराए पर दे है या किसान भाई समूह बनाए कि अपना ले सके हैं, और लेकिन इसके लिए भी फिर आपने जो संपूर्ण जानकारी की जरूरत पड़ेगी, संपूर्ण जानकारी ले लें जो भी आपके आसपास जहां सब्सिडी आप बैंक में जाके ले सके हैं या अपना जो कृषि सलाहकार है कृषि विशेषज्ञ है कोई आपके एरिया में ओढ़ जा सके हैं, तो ये सारी जानकारी के साथ फिर आप इस तरह का रिस्क लें जोखिम उठाएं, वरना इस तरह का जोखिम हम नहीं कमांगे कि अधूरी जानकारी के साथ इस तरह का आप कार्यक्रम बिठाएं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप थोड़ा सा जानकारी के जितने भी साधन हैं उनके नजदीक रहें और बाजारीकरण में तो सीधी सी बात यही है नरेंद्र भाई की, थोड़ा सा आपने आंकड़े इकट्ठे करने पड़ेंगे कौन सी सब्जी की कड़े पूर्ति ज्यादा है, कड़े फिर पूर्ति और मांग का एक खेल है सारा, तो जितनी भी कीमत आपकी फसल की कम है ज्यादा है वो मांग और पूर्ति पर निर्भर कर रहा है, तो जहां और ये एक चीज और भी है नरेंद्र भाई, एक इलाका में आप देखो एक कोई भी सब्जी या नया प्रयोग किसी किसान भाई ने कराया थोड़े दो एक साल में देखियो सारे एरिया में वही चीज लगन लग जाएगी, तो ज्यादातर तो किसान भाई ने जो नुकसान का सामना करना पड़ा है उसका कारण ये है।
1: बिल्कुल देखा देखी ज्यादा करे हैं तो भाई आप मार्केट की वैल्यू देखें मार्केट की डिमांड जरूर देखें, आपकी बात सही थी शुरुआत में भी
0: जी।
1: जब तक आदमी ने ये नहीं पता चलेगा भाई किस माल की कड़क कितनी सप्लाई होगी और उसमें मुनाफा उन्हें कहाँ मिलेगा तब तक आपने एक अच्छा मुनाफा नहीं कमा पाओगे, आपने उसकी पूरी आपने कहा था ना अधूरी जानकारी है ना कई बार नुकसान दे दे
0: जी।
1: तो अधूरी जानकारी ना लेके आप पूरी जानकारी लेकर आगे बढ़े, चाहे आपके साथ कोई प्रगतिशील किसान है आपने कृषि वैज्ञानिकों की बात करी या चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है या आपने कहा मार्केटिंग का जो जमाना है आप वहां से भी सीधी पूरी जानकारी लेकर के ही अपना माल को वहां लेकर जाए और यातायात के साधनों का भी देखो इसके ऊपर बड़ा फायदा हुआ है
0: जी।
1: अगर आपके पास स्टोरेज की कोई ऐसी चीज है जिसमें आपने मान लिया आपने 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर भी कोई चीज बेच के आनी है तो आपके पास कोल्ड स्टोरेज की तरह का अगर कोई यातायात का साधन है तो आपका माल खराब नहीं होगा और टाइम पे पहुंचेगा और आपको रेट हाथों हाथ बढ़िया मिलेंगे।
0: फिर भी उसमें कहेंगे कि इस प्रकार क्या जो है आप प्रबंध करें कि आपकी जो लागत है वो कम से कम हो, क्योंकि लागत अगर बढ़ जाएगी मंडी तक जाते जाते तो फिर कितना जो मुनाफा होगा वो कम हो जाएगा। एक साधारण सी बात है नरेंद्र भाई कि जब भी किसान भाई अभी मैं कह रही थी कि एक एरिया में एक के फसल लगान लग जाए, अगर आपने सब्जी लगानी है तो बहुत सारे ऑप्शन है विकल्प है आपके पास दूसरी आप अपने खेत में लगा सके हैं, रिस्क कोई काम ना करें और अपनी मिट्टी की जांच जरूर करवाएं क्योंकि हर जमीन के टुकड़े की मिट्टी की जो प्रकृति है वो अलग अलग है
1: बिल्कुल,
0: तो उसी के हिसाब से आप अपने खेत में किसी भी फसल का चाहे सब्जी की है या पारंपरिक फसल है उसका उत्पादन करेंगे तो फायदे में रहेंगे। और नरेंद्र भाई थोड़ा सा मनोरंजन का फायदा और करावांगे भान भैया का, एक रागनी और सुनवाएंगे तो सुने भाई रागनी।

0: या तो भैया ने सुनी रागनी और नरेंद्र भाई कार्यक्रम खेती किसाना सेती का समय समाप्त होने लग रहा है। थोड़ी देर में भैया तो फिर मुलाकात करेंगे कार्यक्रम
1: मारे गांव में।
0: जी।

0: सको, खबरदार। अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि हमेशा दोबारा जांच लें।
1: RBI कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से।
2: कानूनी मदद और सलाह दिलाते, पहले लो हमें सही राह दिखाते।
3: टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं, बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
4: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप, अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं, बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
4: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप, अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: दर्शकों, खबरदार, अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि हमेशा दोबारा जांच लें।
1: RBI कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती किसाना सेती, FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। अब आप सुनेंगे

0: नरेंद्र भाई, फिर से स्वागत करा हाँ सारे बाण भैया का कार्यक्रम हमारे गांव में। और
1: देखो, जब हमारे गांव की बात आ रही है
0: जी
1: तो अनुमान सारी चीज दिमाग में दौड़ रही है। जो पुराना टाइम है, अपने जो बूढ़े बुजुर्ग काम किया करते, जो अपने खेत खलिहान में आप देखा करते, गांव के जोड़ के ऊपर किनारे पर देखा करते, अपने चाहे बावड़ी की बात हो चाहे जोड़ों की बात हो, हर तरीके से है ना आप उस चीज की तरफ जाया करते। लेकिन आज का समय है ना, बदलाव में बहुत ज्यादा आ गया है।
0: बदलाव तो देखो प्रकृति का नियम है नरेंद्र भाई, लेकिन फिर भी बदलाव अच्छा भी आया है। न तो नहीं कह सकते कि सारा
1: दोनों तरह का बदलाव है भाई।
0: जब कोई भी चीज आ है उसके दो पहलू है, एक अच्छा भी हो है एक बुरा भी हो है, तो निर्भर अपने पर करे है कौन से पहलू ने लेके आगे चलना है।
1: लेकिन आज आप देखने लग रहे हैं ना, वैश्विक संकट है ना, गांव तक भी पहुंच गया है। तो उस वैश्विक संकट के ऊपर भी देखो, हमने हर व्यक्ति ने गौर करने की आवश्यकता है। और जब तक हर व्यक्ति इस चीज से नहीं जुड़ेगा ना, क्योंकि कहा गया ना, बूंद बूंद तो सागर बने
0: जी,
1: और हर व्यक्ति ने ना थोड़ा थोड़ी बचत करने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने देश में एक अच्छे योगदान के साथ इस देश की जो भी संपदा है उनको हम बचा सकें।
0: वैश्विक संकट यानी कि कोई खतरा।
1: हाँ बिल्कुल,
0: और जो पूरी दुनिया पर उसके है।
1: हाँ, जिस तरह से देखो तेल का संकट कितना चल रहा है, और जब तेल के रेट बढ़े हैं तो हर आदमी की जेब के ऊपर भारी पड़े है
0: जी।
1: उसी तरीके से तापमान की बात कर ले, आज है ना पूरी दुनिया में हम देखने लग रहे हैं मौसम में कितना ज्यादा बदलाव आ गया है,
0: जलवायु परिवर्तन।
1: बिल्कुल,
0: जलवायु
1: परिवर्तन जिसने लोग हर आदमी कहने लग रहे हैं
0: जी।
1: उन सब के लिए हम खुद उत्तरदायित्व हमारा बनता है कि हम खुद शुरुआत करें और एक अच्छे काम के साथ आगे बढ़े, तभी ताकि एक हम अच्छे मुनाफे की तरफ बढ़ सके और इस देश को जो वैश्विक संकट है उससे बचा सके
0: जी। तो आपने आज अच्छा विषय आपने लिया है कि वैश्विक संकट, जैसे कि इसमें जलवायु परिवर्तन उसका है, आपने तेल गैस की यानी कि जितने भी संसाधन है उसकी किल्लत उसका है, आर्थिक उथल पुथल उसका, आर्थिक मंदी भी उसका है अगर हम अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखा, और कोई भी महामारी उसका है जैसे पीछे कोरोना विश्व ने सामना करा इसी प्रकार से ये। और इस तरह के जब भी कोई आर्थिक संकट आवा है या कोई वैश्विक संकट आवा, तो हमारी जो जिम्मेदारी है वो जागरूकता के, चाहे वो जागरूकता फैलाना हो, चाहे वो एक दूसरे की मदद करना हो, और एक जागरूक उनके साथ रहने की, उनको सांत्वना देने की बात हो, इसके तहत संसाधनों का चाहे सदुपयोग करना हो, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना हो, पर्यावरण संरक्षण हो, और मानसिक रूप से सतर्क रहकर समाज को मजबूत करना भी हमारी जिम्मेदारी है उस समय।
1: बिल्कुल बिल्कुल, देखो जब तक हमें हर मानव इसके ऊपर काम नहीं करेगा ना, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। और लेकिन कई बार अभी कहा अपना गमों के खतरा है।
0: हाँ
1: भाई, गमा तक भी खतरा है, यो खतरा है ना अपना गांव की चौपाल तो लेकर अपना घर तक शुरू हो गए ना, देश की संसद तक भी हो रहा है।
0: शुरुआत तो अपना तो हुआ है भाई।
1: बिल्कुल,
0: मान लो एक नागरिक के तौर पर जब बात करें, कोई भी वैश्विक संकट आवा है तो हम सब की जिम्मेदारी है उसमें। और पहले जिम्मेदारी जैसे आपने भी कहा कि ईंधन वाली समस्या है, तो संसाधनों की बचत करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर छोटी छोटी बचत घर से शुरुआत करेंगे तो वो बड़े स्तर पर हम बचाव कर सके हैं, चाहे पानी है, चाहे बिजली है, या ईंधन है, या जो खाद्य पदार्थों की बर्बादी है। खाद्य पदार्थों की बर्बादी का मतलब पानी तो आप देखा है, दे बाल्टी है, और जब पानी नहीं आवे जब दिक्कत आ जाए तो फिर उसकी वेस्टेज बहुत हुआ है। और दूसरा अरीब तो एक बात और, पहला जो सिर पर लिया सिर पर लेना है,
1: बटन दबाया गली में वाहन भाग रहे हैं, लेकिन एक एक बूंद बचाने की जरूरत है, क्यों नहीं तो आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा संकट हो सके।
0: और आने वाली पीढ़ी क्यों भी नरेंद्र भाई, आप आ रहे हैं जो देश में इस तरह के बहुत सारे इलाके हैं जो पीने की भी इतनी समस्या है, पीने के पानी की भी किल्लत है, और आड़ गाड़ी भी बल्टियां वालों दो हैं, पाइप वालों दो हैं, और फुहारे

0: बाथरूम में देख लो, 1 घंटे तक बालक नहावा है, बड़े नहा निकले निरे। गर्मी के मौसम में तो पानी की कम तक कम आपने प्रयोग करना चाहिए, जितनी जरूरत है उससे फालतू थोड़ा भी नहीं चलाना चाहिए, ताकि उन इलाके में पानी की सप्लाई हो सके जहाँ पर जरूरत है, पीने के पानी की भी नहीं समस्या है वहां पे।
1: बिल्कुल, और जैसे अपन तेल की बात करी, लगभग है 85% तेल आप सारा दुनिया के बाहर तक खरीद के लिया, अपने देश में तो 15% पूर्ति है
0: जी।
1: तो वे हम जिस तरह आज डॉलर का क्या रेट होने लग रहा है, तो उसके हिसाब से अगर आप देखा ना, रोज देश को ऊपर कई हजार करोड़ का नुकसान होने लगा।
0: डॉलर का तो डॉलर तो है 94 रुपये का, लेकिन अपने जो करेंसी अपनी जो मुद्रा है उसकी विश्व के जो मार्केट है उसमें उसकी वैल्यू कम होने लग रही है।
1: बिल्कुल,
0: इसका कारण भी कहीं ना कहीं हमारा जो जीवन शैली है या हमारा जो लाइफस्टाइल बदला है या हम विनोदों की अपनी जो खर्चने की क्षमता बढ़ रही है और हम दिखावे पे ज्यादा वो कर रहे हैं। बहुत से तो पैसा ऐसी जगह लग रहा है जिसकी जरूरत ही नहीं है।
1: सही बात है।
0: तो ईंधन की बात आवे, चाहे संसाधनों की बात आवे, चाहे बिजली की बात लगा लो भाई, बिजली हर घर में ऐसी है और एक एक घर में तीन तीन चार चार एसी, जितने कमरे उतने एसी। ठीक है, ये साधन संपन्नता की तो बात है, पहले तो पंखे का जुगाड़ को नहीं आया करता और सारा गुण का काम कराया करता। ये तो चाहे मतलब हर घर में सारी सुविधाएं हैं और उन सुविधाओं का गलत उपयोग हो रहा है, यही कहेंगे। और यही कारण है कि आज हमारा पूरा विश्व जो है वो इस संकट से जूझ रहा है।
1: जिस तरह जो मान लिया आप स्कूल में जान लाग रहे हैं या और कहीं काम पर जान लाग रहे हैं, तो देखा आप 4 आदमी है, 4 मोटरसाइकिल, अगर 4 जने मिलके ने एक कार में जावे, तेल की बचत हो गए
0: जी,
1: साथ में ने साथ हो जाएगा
0: जी,
1: समय की बचत। और इसी तरीके से छोटी छोटी चीजें हैं ना, चाहे कोई भी चीज हो, हम घर तक करें। मान लिया आज देखो कचरा, प्लास्टिक की पराली, अगर आप देखा चाहे प्लास्टिक की बात हो चाहे पराली की बात हो, दोनों भाई मौसम है इसके कारण बड़ा खराब होने लग रहा, आदमी सांस नहीं ले पा रहा, तो इन सब चीजों के लिए भी आप खुद दोषी हैं। मान लिया आपके पास प्लास्टिक का बैग की बजाय अपना कातर वाला बैग बना लिया, अपना कपड़ा बैग हो
0: जी,
1: और वही हर जगह अगर लागू कर दिया जाए तो कितना पर्यावरण तो हम खुद बचा सका।
0: बिल्कुल। और ये थोड़ा सा भाइयों का देखो बहुत ज्ञान दे दिया है, कमी का डर लग रहे हैं जद के, ये थोड़ा सा मनोरंजन कराएंगे, अच्छा सा लाइट सा मूड करेंगे और भाई और बहन मिलके सुनेंगे यह रागनी।

घुसते कौन है जब बरी होते हैं।

जिस मानस में चोट आया जा भाई दे दी छुटकारा, जिस दौर तो अन्य हो जा सपने लागे प्यारा, एक बेल के कोई फल लाते कोई मीठा कोई खारा, वीर

ईश्वर कंदे ऐसा न्यारा न्यारा एक ऐसे की कलम बने और एक का बन जा धारा एक मट्टी के बने दो बर्तन भेद बता जो सारा एक तबूंगे पानी का बर्तन एक बन जा घी का बारा चोटिए के मां चोटिए के मां बाल के बेचारे आप बेपा

വേശിയോട്ടിന്റെ പറഞ്ഞ മാനസിക്കാണ് ജിസ ഗായ കര ഉടെ സുരക്കാ.

0: रागनीत है पहले भी, जो ज्ञान की बात आप करने लाग रहे थे, चाहे कोई भी चीज हो, वो चाहे अपने घर में है ना तेल गैस बचाने की बात हो, चाहे पानी बचाने की बात हो, आपने शुरुआती दौर पर भी कहा था, इन चीजों के लिए अपने ना अपनी माता बहन हैं, चाहे अपने युवा हैं, चाहे अपने बूढ़े बुजुर्ग हैं, हर किसी ने इसमें पार्ट अदा करने की जरूरत है।
1: नरेंद्र भाई, जब किसी देश का प्रधानमंत्री जनता का आह्वान करे है कि आप जो है तेल है या संसाधनों की बचत करो, तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि देश जो है संकट से जूझने वाला है।
0: बिल्कुल।
1: तो इस समय में इस प्रकार की जब स्थिति उत्पन्न हो जाए है किसी भी देश में, तो हर नागरिक की जिम्मेदारी हो जाए है कि अपने देश को बचाने के लिए हर संभव योगदान दे। खाद्य पदार्थों की बर्बादी भी इसी में शामिल है।
0: बिल्कुल।
1: आजकल कोई भी फंक्शन ले लो, मतलब खाना हर कोई अच्छे से अच्छा खाने का रहे प्रबंध कर रहे हैं, लेकिन जो खान वाले आवा है मेरे वर्गे आप वर्गे के कर रहे हैं, भर भर थाली गाल ले हैं फिर उसने नुकान छोड़ दे। जितना भी आपको लेना है या खाना है केवल उतना ही उसमें थाली में डाल लें, वेस्ट ना करें, किसी न किसी का तो मुंह लगेगा। वो तो दिखावा फिर वही है, कितने आइटम हैं, दो चार आइटम खान के हो लेकिन इतनी
0: कई बार तो देखा आप 200-200, 400-400 स्टॉल शादियां पलाज दे, तो है धन की बर्बादी
1: जी।
0: अब साथ में है ने, जो आपने खाने वाली बात करी, पाई 5-4 आइटम तो खाओगा आदमी, ज्यादा ज्यादा 10 खा लेगा,
1: फिर वही दिखावे की बात आ गई ना नरेंद्र भाई। बट एक से बढ़कर एक करने की कोशिश करते हैं, और अब वैश्विक संकट की ये तो अपनी आदतें हैं जिनमें अगर आप थोड़ा सा भी सुधार करें तो अच्छी खासी बचत हो उसका है, आपकी खुद की भी, पैसे की भी होगी, पर्यावरण की भी। जितनी वेस्टेज होगी उतना ही पर्यावरण गंदा होगा, चाहे उसमें फिर वो प्लास्टिक का आपने कहा प्लास्टिक का प्रयोग है, या और भी जो यूज एंड थ्रो वाले जो बर्तन प्लेट वगैरह आवे हैं वो भी तो फिर पर्यावरण में ही जावे हैं, फेंके हैं उसने डस्टबिन में। और इसके अलावा जैसे पर्यावरण संरक्षण है, आपने कहा सिंगल यूज प्लास्टिक से बचें, कचरा कम करें और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगावे। हर बार अभी पर्यावरण दिवस आने वाला है तो
0: देखो, पर्यावरण दिवस के ऊपर पहले तो बेटियों के नाम से था, फिर माँ बाप के नाम पर लगाने लगे, दादा दादी, कहने का मतलब कोई ना कोई बहाना इस तरीके का ढूंढना चाहिए कि ताकि आप है ना किसी न किसी उसके ऊपर प्रोग्राम के ऊपर, चाहे अपने सालगिरह हो, चाहे कोई शादी का मौका हो, चाहे कोई बच्चा घर में पैदा हो, तो भाई उनके नाम पे एक एक दो दो पेड़ हम, जैसे भी आगे सामने का महीना होगा आपने कहा था, इसमें हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बने कि 2-4 पेड़ जरूर लगावे और फिर उसकी साल भर तक देखभाल भी करे।
1: एक और भी है कि आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए जैसे स्थानीय स्तर पर जो निर्मित उत्पाद है लोकल फॉर वोकल, जैसे क्या ये अभियान भी चला था लोकल फॉर वोकल, इसकी खरीदारी करें। सतर्कता और अनुशासन किसी भी संकट में, जैसे स्वास्थ्य आपातकाल कोरोना के टाइम पे एक दूसरे की मदद करी थी, इसी प्रकार से कोई अफवाहों से बचें और अफरा तफरी ना मचावें किसी भी, जैसे कोई सी महामारी का अगर कोई संकेत मिले तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक दूसरे का मानसिक तौर पर सहयोग करें। और जितनी भी सरकार की तरफ से जो भी गाइडलाइंस दिशा निर्देश आते हैं उनका सख्ती से पालन करें, कराया भी था कोरोना के टाइम में। और इसी प्रकार से कि मानसिक और सामाजिक सहयोग पड़ोसियों में, अपने रिश्तेदारियों में, जहां भी जरूरतमंदों की जरूरत पड़े मदद करें उनकी। इन छोटे छोटे कदमों से आप केवल अपने परिवार की सुरक्षा करते हैं बल्कि वैश्विक स्तर पर पड़ने वाले दबाव को भी कम करने में बड़ा योगदान देश के हैं। और आत्मनिर्भरता की जड़ तक बात आवा है नरेंद्र भाई की, अपना जैसे किसी के अंदर कोई ना कोई हुनर तो हुए है।
0: बिल्कुल।
1: अब जैसे खेती की आप बात कर रहे थे कि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कृषि उद्यमी हैं जो बहुत सारे जो कृषि संस्थान हैं वहां से ट्रेनिंग प्रशिक्षण लेकर और अपना रोजगार उन्होंने स्थापित किया और बहुत सारे लोगों को उन्होंने रोजगार दिया भी है।
0: और कई जगह पे देखने लग रहे स्वयं सहायता समूह भी अपनी माताओं बहनों ने बना रखी है गाँव में, और वो भी बड़ा अच्छा काम करने लग रहे हैं, एक से एक मिलके ने कड़ी बने हैं। तो भाई कोई भी काम अगर हम करें तो साथ में एक से दूसरे को मिला के, क्योंकि अकेला आदमी का अग्रह बाढ़ नहीं फोड़ सकता
1: जी।
0: लेकिन भाई अगर आप सारे साझा काम करेंगे, मिलके करेंगे और उसमें सामंजस्य बिठा के करेंगे, तो हम एक अच्छे मुकाम की तरफ बढ़ेंगे और एक अच्छी वैरायटी लेके समाज को दे पाओगे
1: जी। और ये जो हमारी जो आदतों की अभी आपने बात करी, जल पानी है खाद्य पदार्थ उनको बचाने की, तो शुरुआत से ही जब बच्चा घर में छोटा हुआ है तो वो बड़ों को देख देख के ही सीखे है।
0: बिल्कुल।
1: तो बड़े अगर मान लो मैं कमरे से बाहर जा रही हूँ, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, मैं चांदी चांदी बंद कर जाऊंगी तो वो बच्चा भी तो देखेगा, चाहे स्कूल कॉलेज

0: है या कोई शिक्षण संस्थान है या कोई ट्रेनिंग सेंटर है, वहां भी इस बात का ध्यान रखें कि अगर सभी विद्यार्थियों से भी कह रहे हैं हम, जो छोटे बच्चे हैं सुन रहे हैं कार्यक्रम, या बुजुर्ग हैं या बड़े हैं, देखो बड़ा बुजुर्ग तो ऊँह लोभ कराया करा करता
1: बिल्कुल
0: है, तो
1: बिल्कुल
0: वो तो वेस्टेज
1: अभी
0: नहीं
1: कर रहे
0: करेगा,
1: हैं
0: करे को नहीं।
1: हाँ, लेकिन जो वेस्टेज कर रहे हैं हमें उनको समझाने की जरूरत है, वो उसके ऊपर उसका परिपालन जरूर करें।
0: जो आज
1: और
0: की पीढ़ी है
1: हाँ
0: खासकर, उनको अपनी थोड़ी सी मॉरल ड्यूटी समझने की जरूरत है, और छोटे छोटे प्रयासों से आप बचत कर सके हैं संसाधनों की। आने वाले समय में संसाधनों का ही संकट सबसे ज्यादा होने वाला है, तो क्यों ना हम उन चुनौतियों के लिए आज से ही युवा पीढ़ी को तैयार करें, ताकि आने वाले समय में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। ये तो थी जानकारी, और चलते चलते मनोरंजन फिर करवा दे भाई, तो भाई सुनेंगे या रागनी।
2: ये रे प्यार सदी का।

था ओडा लेके चलू भरी मुंह धो लिया रे करे कह वोट आत्मा रोकी मन मन में दुख रो लिया रे भाभी के बोला काय अपने तन में से

At 90, 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पूरा आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

अभी आपने सुना कार्यक्रम हमारे गांव FM 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है पंजाबी गीतों का कार्यक्रम।

आपने सुना गुरदास मान की आवाज में ये पंजाबी गीत। आइए एक और पंजाबी गीत सुनते हैं गुरदास मान की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे पंजाबी गीत एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। रात्रि के 8:30 हो चुके हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम खुला आकाश के अंतर्गत एक फिल्म के गीत, और आज हम आपको सुनवाएंगे फिल्म मैंने प्यार किया के कुछ गीत।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खुला आकाश के अंतर्गत मैंने प्यार किया फिल्म के कुछ गीत। FM 102.3 MHz पर आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। इस वक्त रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे राष्ट्रीय हिंदी समाचार और रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे राष्ट्रीय अंग्रेजी समाचार। ये समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। रिले की प्रतीक्षा करें।

मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह और भागीदारी सहित चार स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य छात्रों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में। और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा

0: मां चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है कि चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,00,000 गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार नकली कीटनाशकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है।
2: सबने मिलकर यह तय किया कि जो घटिया पेस्टिसाइड है वो एक बड़ी समस्या है। बीज भी गुणवत्तापूर्ण मिले और घटिया पेस्टिसाइड, उस पर जितने सैंपल उठाना चाहिए उतने सैंपल उठाएं। लैब्स कई राज्यों में है लेकिन उनको परफेक्ट करने का काम करें। एनएबीएल प्रमाणित लैब वहां उन राज्यों में हो, इस पर भी व्यापक पैमाने पर चर्चा हुई है। तो हम लोग इस पर भी नकली के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, व्यापक अभियान चलाया जाए।
0: कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो गया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की।
3: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होरमूज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग कल 5 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा होगी। भारत और अमरीका के बीच व्यापार वार्ता पर उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह अमरीका के व्यापारिक दल के भारत आने की उम्मीद है। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए गठित कार्य समिति की हाल की बैठक पर श्री जायसवाल ने कहा कि चर्चा रचनात्मक रही। दोनों पक्षों ने परिसीमन, सीमा प्रबंधन, कार्यतंत्र निर्माण और सीमा सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। बागेशी घुसपैठियों पर श्री जायसवाल ने कहा कि कार्रवाई की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल।

0: रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया।
1: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है, जो रक्षक था वही भक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारे प्रयास।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी डीटीसी की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनः मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। छठे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। 95.9% गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल मिली है। गर्भावस्था की पहली तिमाही में जांच कराने वाली महिलाओं की संख्या 70% से बढ़कर 76.2% हो गई है। भारत की कुल प्रजनन दर 2 बनी हुई है। 12 से 23 माह के 96% से अधिक बच्चों को जरूरी टीके लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस एकेडमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुंचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कोचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट इस वर्ष मार्च के अंत तक 20.6% की वृद्धि के साथ 91,97,000 करोड़ रुपए हो गई। रिजर्व बैंक की आज जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ये बढ़ोतरी घरेलू निवेश तथा स्वर्ण और विदेशी निवेश में वृद्धि के कारण हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अमित गोयल।
2: घरेलू शेयर सूचकांकों में आज लगभग 1.5% की गिरावट।

0: रिजल्ट दर्ज हुई। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1092 अंक के नुकसान से 74,776 के स्तर पर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 359 अंक की गिरावट से 23,548 के स्तर पर बंद हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 70 पैसे की मजबूती से 95 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण गर्मी में कमी आई है और कल से मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में भी गर्मी कम होने की संभावना है। आज से 31 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ आंधी वर्षा का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में ओलावृष्टि और आंधी तूफान की संभावना है। राजस्थान में भी धूल भरी आंधी की आशंका है। पाकिस्तान अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर लगातार आलोचना का सामना कर रहा है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर से पश्तून तहफूज मूवमेंट पीटीएम के कार्यकर्ता फरीदुल्ला अफरीदी को कथित रूप से जबरन अगवा किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी ने पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो ने मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सात्विक और चिराग ने मलेशिया के कांग खई शिंग और आरोन ताई को हराया। न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 15वें ओवर में 5 विकेट पर 137 रन बना लिए हैं। मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित 4 स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Home Minister Amit Shah announces major shift in border management leveraging technology and four-layered security involving citizens, says eradicating illegal immigration is vital to protect nation's demography. Government establishes national seed reserve of 1,74,000 quintals to ensure seed availability to farmers. Education Minister Dharmendra Pradhan assures strict action against examination mafias and protection for deserving students. Indian shuttlers Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty enter men's doubles semi-final of Singapore Open Badminton. Mixed doubles duo Dhruv Kapila and Tanisha Krasto also advanced to semi-final. And in IPL cricket, crucial qualifier 2 match underway between Gujarat Titans and Rajasthan Royals in New Chandigarh. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah has announced a major structural shift in border management with the introduction of a new quadripartite security grid. He said securing our borders and eradicating illegal immigration is vital to protecting the nation's demography. He was addressing the troops and public gathering after inaugurating the strategically crucial G7 and G13 border outposts along the India-Pakistan border in Bhuj, Gujarat today.
3: We have decided to completely transform the concept of the BSF's border security. In the coming days, we will create a security grid based on a four-dimensional concept. And instead of focusing solely on border security, we will introduce a new concept of territorial security. Under the Smart Border Security Project, we are working to

0: जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: कार्यक्रम के अंत में सुनिए मुकेश की आवाज में मेरा नाम जोकर फिल्म का गाना, गीत चैलेंज का है, संगीत शंकर जयकिशन का।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन

0: है विविध भारती।
1: आज के फनकार, ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी या किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देख लो ना ताओ, मुझसे मुखातिब होकर बोले अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार, तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई, डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया। कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

दोस्तों ये गाना फिल्म जलवा का है जिसमें पंकज कपूर ने अल्बर्ट पिंटो की भूमिका निभाई थी। याद होगा आपको 1987 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। जी हाँ, पंकज कपूर है आज के फनकार।

looking at,

0: आइए पंकज कपूर की अभिनय यात्रा के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं उन्हीं की जुबानी।
1: देखिए मैंने प्री इंजीनियरिंग किया है जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन करने से पहले का मकाम होता है। हाँ उसमें मैंने कॉलेज को टॉप जरूर किया था लेकिन काफी मेहनत और काफी अरसे के बाद। और शौक लेकिन हमेशा से मुझे एक्टिंग का रहा था, तो मेरे पिता कॉलेज में प्रोफेसर थे, उन्होंने मेरा साथ दिया और कहा कि तुम जो करना चाहते हो जिंदगी में करो। तो फिल्म इंस्टीट्यूट में और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अप्लाई किया गया। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में उन्होंने ही पता किया था, फिल्म इंस्टीट्यूट वालों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने सिलेक्ट कर लिया था। और इस तरह से मेरी तालीम वहाँ पे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में शुरू हुई और 3 साल की तालीम हासिल करने के बाद मैं एक प्रोफेशनल एक्टर बन गया और उसके बाद का मेरा सफर थिएटर और टेलीविजन और सिनेमा का शुरू हुआ।

एनएसडी यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में सन 1976 में पंकज कपूर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद वो रंगमंच की गंभीर दुनिया में समा गए। दरअसल फिल्मों से पहले उनकी पहली प्राथमिकता रंगमंच। 1982 में रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी में काम करने का मौका उन्हें मिला। भूमिका छोटी थी, लेकिन इस फिल्म के हिंदी वर्जन के लिए गांधी की यानी बेन किंग्सले की आवाज बने थे पंकज कपूर।

राष्ट्र नाट्य विद्यालय की एक रेपर्टरी कंपनी है, वहां पे बतौर अभिनेता एम्प्लॉयड था। जिस वक्त गांधी फिल्म के बनने का सिलसिला हिंदुस्तान में शुरू हुआ, तो रिचर्ड एटनबरा जो उसके डायरेक्टर थे, वो हमारे रेपर्टरी कंपनी के नाटक देखने के लिए आए, और उन्होंने नाटक देखने के बाद एक रोल के लिए मुझे चुना अपनी फिल्म में। रोल तो बहुत छोटा सा था, गांधी जी के दूसरे सेक्रेटरी प्यारेलाल। फिल्म में प्रेजेंस थी ज्यादा, परफॉर्मेंस को बहुत खास नहीं था, लेकिन उस फिल्म के जरिए जो मौका मुझे मिला, वो मौका था गांधी के रोल की डबिंग करने का। हिंदी में जो गांधी की डबिंग की गई है बेन किंग्सले के रोल की, वो मैंने की थी। उस वक्त तो वो बड़ा चैलेंजिंग काम था, क्योंकि अंग्रेजी जबान से हिंदी जबान में आप डब करेंगे उसको, और सिंक भी परफेक्ट होना चाहिए। और 22-1 साल की उम्र से लेकर करीबन 78-77 साल की उम्र तक के गांधी जी को आवाज के जरिए दर्शाना सिनेमा में, वो एक चैलेंजिंग काम जरूर था जो मुझे मिला। तो ये मेरा पहला मौका था या पहला चांस था फिल्मों के अंदर दाखिल होने का। हालांकि इस काम को करने की वजह से मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपर्टरी कंपनी से बर्खास्त कर दिया गया।

पंकज कपूर ने तमाम नाटकों में विभिन्न भूमिकाएं अदा की। फिल्म मकबूल में काम करने के लिए पंकज को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला था। 2003 में रिलीज फिल्म मकबूल में पंकज कपूर ने जहांगीर खान अब्बाजी का मकबूल किरदार अदा किया था। फिल्म थी विशाल भारद्वाज की, याद होगा आपको।

0: छोटे पर्दे के लिए भी कुछ यादगार भूमिकाएं पंकज ने निभाई हैं। 1985 से टीवी पर करमचंद की शीर्षक भूमिका में वो बेहद लोकप्रिय हुए थे। उनका मैनरिज्म इस कदर प्रसिद्ध हुआ था कि बच्चे बच्चे की जुबान पर करमचंद का नाम था और उनके कैरेक्टर की नकल वो खेल कूद में भी किया करते थे।
1: अभिनय में ये बात बड़ी जरूरी है कि आप कितना भी डूब गए हों अपने किरदार में, एक धागा या एक थ्रेड जिसको कहते हैं, ऐसा हमेशा रहना चाहिए जिसमें आपको इस बात का एहसास रहे कि आप वो किरदार नहीं हैं। आप हैं तो पंकज कपूर ही, लेकिन आप उस किरदार को निभा रहे हैं। निभाते हुए जब आप उसको निभा रहे हैं, उस वक्त लोगों को ये न लगे कि आप पंकज कपूर हैं। तो वो एक हल्का सा धागा जो है आपके और आपके कैरेक्टर के दरमियान बना रहता है, और वो बनाए रखना जरूरी है। अगर न रहे तो या तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होगा, या फिर आप इतने उसमें डूब जाएंगे कि उसमें से निकलना मुश्किल हो जाएगा, और वो भी स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि कर तो आप अभिनय ही रहे हैं ना।

जो गाने हम आपको पंकज कपूर अभिनीत फिल्मों से सुनवा रहे हैं वो गाने उन पर फिल्माए तो नहीं गए हैं, लेकिन इनके जरिए हम पंकज कपूर के बेहतरीन अभिनय की याद तो ताजा कर ही सकते हैं। सुधांशु और सुधीर मिश्रा के धारावाहिक कब तक पुकारू में पंकज कपूर ने मुख्य भूमिका अदा की थी। ये धारावाहिक रांगेई राघव के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित था। सुखराम की जटिल भूमिका को पंकज कपूर ने बड़ी कुशलता और बड़ी सरलता से निभाया था। इसी तरह डॉक्टर राही मासूम

0: तुम रजा की कृति नीम का पेड़ पर आधारित टीवी सीरियल में बेहद चुनौतीपूर्ण भूमिका अदा की थी पंकज कपूर ने। इन दोनों किरदारों को पंकज बेहद चैलेंजिंग मानते हैं।
1: बड़ा चैलेंजिंग था मेरे लिए क्योंकि एक तो अवधि मुझे बोलनी नहीं आती है और अवधि में वो काम करना था और दूसरा एक ऐसे आदमी का किरदार था जो बेगार है और ये आज भी जिसको बॉन्डेड लेबर कहेंगे हम आज के जमाने में आज भी लोग हैं लेकिन वो कहानी चूंकि 40s की थी तो उस जमाने के दौर के अंदर उसकी अपनी सोच उसकी अपनी समझ उसका अपना बिहेवियर उसकी अपनी एम्बिशंस और ये सब चीजें दर्शाने में बड़ा ही एक अलग किस्म का लुत्फ महसूस हुआ। और एक और टेलीफिल्म मैंने की थी जो भी बहुत कम लोगों ने देखी है उसको केतन मेहता साहब ने डायरेक्ट किया था किसी एक फूल का नाम लो। उसमें पाठक नाम का एक राइटर है वो भी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टराइजेशन है और एक इंटरेस्टिंग स्टडी है किसी एक इंसान की। तो ये कुछ रोल हैं जिनको करने में बड़ा मजा है।
0: 1991 में तपन सिन्हा की फिल्म एक डॉक्टर की मौत में भी कमाल किया था पंकज कपूर ने। भूमिका थी डॉक्टर दीपांकर राय की।
1: तपन सिन्हा साहब जो डायरेक्टर थे डॉक्टर की मौत के उन्होंने राख फिल्म देखी थी और उसी को देखने के बाद उन्होंने मुझे इस फिल्म के लिए रोल ऑफर किया। अब तपन सिन्हा साहब तो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं बड़े जाने माने बहुत सी फिल्में बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बंगाल में बना चुके हैं और लेकिन मेरा इसरार हमेशा से जैसे कि स्क्रिप्ट पर रहता है तो स्क्रिप्ट मुझे मुहैया करवाया। मैंने पढ़ा और पढ़ने के बाद मुझे रोल बहुत अच्छा लगा और मैंने उनसे कहा कि मैं करना चाहूंगा तो ऐसे उस फिल्म में दाखिला हुआ मेरा। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि शबाना इसमें दूसरा रोल कर रही है फीमेल कैरेक्टर कर रही है और करीबन 40-45 दिन की शूटिंग थी हमारी बंगाल में। ज्यादातर काम कलकत्ते में था और कुछ चांदीपुर में कुछ दिनों का आउटडोर था। तो शबाना बहुत प्रोफेशनल एक्ट्रेस हैं और उनके साथ बड़ी ही अच्छी प्रोफेशनल रिलेशनशिप हमारी रही और तपन्दा बहुत ही अच्छे इंसान हैं और ऐसे निर्देशक हैं जो अपने अभिनेता को बहुत सी छूट देते हैं और ऐसा माहौल बनाते हैं उसके लिए जिसमें वो अच्छा अभिनय कर सके। तो कुछ टेक्निकल चीजें भी इस फिल्म के अंदर जिसको लेकर के कुछ डॉक्टर्स थे वहां कलकत्ते के लोकल जिन्होंने हमारी बड़ी मदद की और हमें उसके बारे में पूरा नॉलेज वगैरह दिया गया जो कि इस किरदार को निभाने के लिए हासिल करना बहुत जरूरी था।
0: थिएटर के दौरान पंकज ने नाटक एक रुका हुआ फैसला में बेहतरीन काम किया था। आगे चलकर इसी नाटक पर आधारित एक फिल्म भी बनी थी।
1: उससे पहले हमने एक नाटक किया था एक रुका हुआ फैसला नाम से तो उसके जो डायरेक्टर थे और मेरे मित्र थे जिनके साथ मैंने सबसे ज्यादा काम थिएटर में किया है रंजीत कपूर साहब वही इस फिल्म को लिख रहे थे। तो जब कास्टिंग की बात आई तो उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया और दरअसल मैं फिल्म में ओरिजिनली जो रोल ओमपुरी साहब ने किया है अहूजा का वो करने वाला था लेकिन बाद में तनेजा का रोल जो कर रहे थे उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया या तो इन लोगों ने बतौर दोस्त मुझसे कहा कि भाई इसकी बजाय अगर तुम ये रोल ले लो तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो मुझे कोई एतराज नहीं था क्योंकि मुझे तो अभिनय करना था। तो इस तरह से ये फिल्म मेरे हाथ लगी। उस फिल्म का एक किस्सा जरूर मैं आप बताना चाहूंगा। उसमें एक सीन है जिसमें बिल्डर और कमिश्नर और ये सब लोग एक खुली लिफ्ट में ऊपर बिल्डिंग में जा रहे हैं और उस बड़ी खतरनाक लिफ्ट थी क्योंकि एक सिर्फ एक तार से टंगी हुई थी और वो शूटिंग खत्म हो जाने के बाद अगली शूटिंग हमारी कुछ 20वें माले पे थी। तो वहीं जो बिल्डर साहब के बेटे थे उन्होंने कहा कि इसी लिफ्ट में लद के ऊपर चले चलते हैं और ये लिफ्ट ऊपर लैंड कर जाएगी लैंडिंग पे वहां से आप उतर के फिर नीचे 2 फ्लोर उतर के चले जाइएगा। तो करीबन 20 लोग उस लिफ्ट के अंदर चढ़ गए मेरे मना करने के बावजूद लेकिन उसने कहा कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है इतना वेट तो चली जाता है। और फिर जब लिफ्ट 5वें-6वें माले तक ऊपर गई तो जाके वहां हवा में अटक गई और हम सब लोग 20 के 20 लोग हवा में लटक रहे थे और ये बिल्डर साहब का बेटा भी हमारे साथ था। जब वो लिफ्ट वाले से कहता था कि भाई इसको ऊपर लो तो लिफ्ट वाला बाएं देखने लगता था जब उससे कहता था नीचे लो तो बाएं देखने लगता था। फिर कुछ देर वहां लटकने के बाद उन्होंने कहा कि भाई इसको किसी तरह से बिल्डिंग के पास ले लो। तो जब बिल्डिंग के पास लिया गया तो मैंने सबसे रिक्वेस्ट की कि भाई कोई भगदड़ ना मचाए और एक एक करके आराम आराम से उतरे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सबने भगदड़ मचाई और ये ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी है कि किसी का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ या कोई मरा नहीं क्योंकि बिल्डिंग और उस लिफ्ट के दरमियान करीबन 1 फुट का फासला था। जब हम उतर के ऊपर लिफ्ट वाले के पास पहुंचे और पूछा कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया तो उसने बताया कि तार कट रहा था आधे से ज्यादा तार कट चुका था। अगर वो ऊपर की तरफ खींचता तो भी टूट जाती लिफ्ट अगर वो नीचे की तरफ फेंक जाने देता हमें तब भी लिफ्ट टूट जाती और हम सब लोग मर जाते। तो ये एक हादसा उस फिल्म का मुझे याद है जो जिंदगी भर याद रहे।
0: 1989 में फिल्म राख में काम करने के लिए भी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया था पंकज कपूर।

को याद होगा, इस फिल्म में पंकज के साथ आमिर खान ने भी काम किया था। उनके कुछ चर्चित धारावाहिक हैं ऑफिस ऑफिस, जबान संभाल के, दुनिया वगैरह वगैरह। इससे पहले उन्होंने फटीचर, मोहनदास BA LLB, वाह भाई वाह, साहब जी, बीबी जी और गुलाम जी में अभिनय किया था और काफी

सन 2005 में रिलीज हुई थी फिल्म 10, आपने जरूर देखी होगी और आपको याद होगा शानदार किरदार पंकज कपूर का फिल्म 10 में। दोस्तों, सन 2007 में पंकज कपूर की तीन फिल्में आपने जरूर देखी होंगी, धर्म, डब्लू अम्ब्रेला और हल्ला बोल में भी पंकज नजर आए थे। एक फिल्म बनी थी सन 2011 में जो ऑफिस ऑफिस सीरियल का ही एक प्रतिरूप थी और इसका नाम था चला मुसद्दी ऑफिस ऑफिस। ये तो आप जानते हैं कि जाने माने स्टार शाहिद कपूर के पिता हैं अभिनेता पंकज कपूर, जो निर्देशन में भी अपना कदम जमा चुके हैं। शाहिद को उन्होंने निर्देशित किया फिल्म

दोस्तों, फिल्मकार विशाल भारद्वाज की मशहूर फिल्म मटरू की बिजली का मंडोला में भी आपने पंकज कपूर के अभिनय का जलवा जरूर देखा होगा।

0: तो ये था प्रोग्राम आज के फनकार, केंद्रित था जाने माने एक्टर पंकज कपूर पर। इस कार्यक्रम को संपादित और प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने। अब अपने दोस्त राजेंद्र को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई के प्रसारण, जिनका रिले आकाशवाणी के विविध भारती केंद्र मुंबई से किया जा रहा था। एफएम एंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। रात के 10 बज चुके हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे।

कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे सुन रहे सभी साथियों को अनिल भल्ला का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, किसी ने कहा है कि जहां सम्मान, अपनापन और मुस्कान साथ हो, वहीं से किसी खूबसूरत शुरुआत की पहचान होती है। और इसी विचार के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आपको बता दें कि आज का यह कार्यक्रम आधारित होगा आपके व्हाट्सएप मैसेजेस पर। और व्हाट्सएप मैसेज भेजने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9729253272। और करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस पहले मैसेज के साथ। हमारे श्रोता रहेंगे जिन्होंने हमें सबसे पहले मैसेज किया है, पांडर कवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे, धनश्री बुरांडे, बलहार शहर से सूरज लोंढे, प्राची और एकलव्य लोंढे का मैसेज हमें मिला है। इसी के साथ ही फाजिल्का से भूषण खेड़ा, विशु, विशाल, लाडी खेड़ा, शालिनी, टिवांशी, वाणी खेड़ा और आरबी खेड़ा का मैसेज हमें मिला है। मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से मंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक का मैसेज हमें प्राप्त हुआ है। हमारे श्रोता रहेंगे ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से, और नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नाहवकर, नेबला नाहवकर, विशाल नाहवकर, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान ताड़े, आशीष मुरहेकर का मैसेज हमें मिला है। गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा और इनके सभी परिवार के सदस्यगण हमें मैसेज कर रहे हैं। और इसी के साथ ही हमें ये मैसेज आया है, बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, यश, प्रैण, शिवम, प्रहलाद और राजेंद्र वर्मा, ग्राम पंचायत बठेना पाटन, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से ये हमें मैसेज कर रहे हैं। सांगली जिले के जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला सबाहत, किरत हुजरे, रेहान शेख का मैसेज हमें मिला है। चरखी दादरी हरियाणा से नम्रता खुशबू खुशदीप का मैसेज हमें मिला है। और मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला आरती गोरी और ओम कुमार सुरलकर का मैसेज हमें मिला है। और ये हमारे श्रोता हैं हरिनगर गीता की नगरी कुरुक्षेत्र हरियाणा से सुरेंद्र अग्रवाल, रोहित, अंकित और सुशीला अग्रवाल। और ये मैसेज हमें मिला है छोटी बलिया मुंबई करजत से अहमद भाई फुलवाले, दुखना सदफ, जूही इकबाल, इमरान अहमद फुलवाले, कापसेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से आमना नसरीन बागवान, आसमा परी, रबिया और आशु अहमद फुलवाले का मैसेज हमें मिला है। पटियाली रोड गंजडू डवारा से अमीर हुसैन, बेगम तैयबा शेख, फौजिया शेख, आहिल अरहान और इनके परिवार के सभी सदस्यगण हमें मैसेज कर रहे हैं। और गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबू जयपाल और सभी इनके मित्रगण और परिवार के सदस्यगण मैसेज कर रहे हैं। पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश का मैसेज हमें मिला है। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी का मैसेज हमें मिला है। टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला, चीनू, दीपक और अनुश्री का मैसेज हमें मिला है। जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो, विलिस डिकैस्ट्रो जनकपुरी सहारनपुर से हमें अपनी फरमाइश भेज रहे हैं। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा और कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा, अमित कुमार, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय का मैसेज हमें मिला है। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता
और ये हमारे श्रोता हैं ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा का मैसेज हमें मिला है। आइए सुनते हैं इन सभी साथियों की पसंद पर किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल आवाजों में घर फिल्म का गीत। लिखा है गुलजार ने और संगीतबद्ध किया है आरडी बर्मन ने।

साथियों, ख्वाब सिर्फ देखे नहीं जाते, पूरे भी किए जाते हैं। जब इरादे सच्चे हों और हौसले मजबूत हों तो ये ख्वाब हकीकत बनने लगते हैं। गांव चूली देशवाले जिला हिसार से मास्टर ओम प्रकाश, गढ़वाल दड़ोली से रघुवीर मंडेरना और मास्टर विनोद जाखड़ ने हमें संदेश भेजा है। और शेरवानी स्कूल गंजरू डवारा उत्तर प्रदेश से अफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी का मैसेज हमें मिला है। और इसी के साथ ही हमें अगला मैसेज मिला है, ये हमारे श्रोता रहेंगे नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी ने मैसेज किया है। हमें लुधियाना पंजाब से मैसेज भेजने वाले हमारे श्रोता रहेंगे अक्षित और परीक्षित, और सहसपुर लोहारा दनिया खुर्द जिला कबीर धाम छत्तीसगढ़ से गुनीराम राजपूत, संतोषी हेमप्रभा, पुष्पराज, सूरज राजपूत का मैसेज हमें मिला है। इसी के साथ ही हमें मैसेज भेजा है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान छिंपा और पूजा परिहार ने। दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा का मैसेज हमें मिला है। इसी के साथ ही हमें ये मैसेज मिला है एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट और अंकित कांगड़ा का। गंजडू डवारा से शमसुल कमर राही, शाहिन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अन्नू खान, उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी का मैसेज हमें मिला है। और नई बस्ती गंजडू डवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम, मोहम्मद तौसीफ, मोहम्मद तैमूर और मोहम्मद कलीम अंसारी का मैसेज हमें मिला है। महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न सिंह, गौरव सिंह, जानवी और दर्श ने मैसेज किया है। पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा का मैसेज हमें मिला है। और चेक 5 MD पत्रोड़ा से मंगल जनागल राही, श्रीमती रोशनी जनागल, अंकुर और इंदु हमें मैसेज कर रहे हैं। और ये मैसेज हमें मिला है संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत, भरत, कमल साहनी, पिंगा वाला चौक, गुराया, जालंधर पंजाब से इन्होंने हमें मैसेज किया है। और हमारे श्रोता हैं गांव व डाकघर निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, करमजीत कौर और सभी इनके परिवार के सदस्यगण हमें मैसेज कर रहे हैं। आइए सुनते हैं इन सभी साथियों की पसंद पर आनंद फिल्म का गीत, मुकेश की आवाज रहेगी, लिखा है गुलजार ने और धुन बनाई है सलील चौधरी ने।

दोस्तों, सपने भी सात रंगों जैसे होते हैं। हर रंग अपने भीतर एक अलग उम्मीद और एक अलग कहानी समेटे हुए है। किसी रंग में खुशी होती है तो किसी में उम्मीद, किसी में प्यार तो किसी में नई शुरुआत की चमक। और जब ये सारे रंग एक साथ मिलते हैं तब जिंदगी और भी खूबसूरत लगने लगती है। और साथियों, इन रंगों की तरह आपकी जिंदगी भी हमेशा खुशियों से भरी रहे। बढ़ते हैं अगले मैसेज की ओर। हमें मैसेज आया है गांव कबनूर कोल्हापुर महाराष्ट्र से। रेवण भाविष्टे, अनीता और राहुल ने मैसेज किया है। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद बकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हीना कोसर का मैसेज हमें मिला है। और ये हमारे श्रोता रहेंगे चेक 15 PS जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से। सरवजीत सिंह जोशन, सरवजीत कौर जोशन गुरुमन, और मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से आदर्श पाल सिंह, और इनके साथ हैं सभी इनके परिवार के सदस्यगण हमें मैसेज कर रहे हैं। और इसी के साथ ही हमें अगला मैसेज मिला है गांव चौधरीबाद से। राजू अग्रवाल, केशव, दक्ष, प्रयाग, प्रियांशी, रेखा और चरणदास का मैसेज हमें मिला है। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा ने हमें मैसेज किया है। ये हमारे श्रोता रहेंगे उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी शिवन्या और अन्नू गोस्वामी का मैसेज हमें मिला है। और वार्ड नंबर 1 पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंगणकर, दिशांत कुमार और अर्पिता हमें मैसेज कर रहे हैं। इसी के साथ ही हमें मैसेज भेजा है हमारे श्रोता रहेंगे मनदीप सिंह, नसीब, मीनू, बबलू, शगुन, काली, विन्नी, घोलू, खरक पुनिया से ये हमें मैसेज कर रहे हैं। और सादुल शहर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से राम कुमार रिवाड़ और चंद्रकला रिवाड़ का मैसेज हमें मिला है। और इसी के साथ ही ये मैसेज हमें भेजा है चौटाला हरियाणा।

धारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा और देवशंकर तामोरिया, अजय देव तामोरिया, तुषार देव तामोरिया और इनके साथ है डॉली बेबी, पूजा तामोरिया और राधिका, प्रभा देवी और मास्टर अल कबीर ने मैसेज किया है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से, ये हमें मैसेज कर रहे हैं। आइए सुनते हैं सभी साथियों की पसंद पर कन्यादान फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। शंकर जयकिशन का संगीत रहेगा और लिखा है नीरज ने।

0: लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए।
1: साथियों, एक दौर था जब हाल ए दिल कागज़ पर उतरता था, लफ्ज़ खतों में लिखे जाते थे और इंतज़ार दिनों में गिना जाता था। आज वही बातें एक क्लिक में पहुंच जाती हैं। ज़माना खतों से इंटरनेट तक आ गया, माध्यम बदल गए, रफ्तार बदल गई, लेकिन दिल की बात कहने का एहसास आज भी वैसा ही है। हमें अगला मैसेज मिला है वडिंगखेड़ा पंजाब से, मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज हसन, नावेद हसन, रसीद वारसी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम अब्बासी, यशफ अब्बासी और सिकंदरा राव से मुबीन अब्बासी और इशरत परवीन का मैसेज हमें मिला है। इसी के साथ ही हमें मैसेज किया है रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और इनके समस्त परिवार के सदस्यगण हमें मैसेज कर रहे हैं। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, मैंडी शर्मा, सौरव शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा का मैसेज हमें मिला है। बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महेत्री, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टवूल, पीबी कुलथे का मैसेज हमें प्राप्त हुआ है। लोको कॉलोनी लोहारू हरियाणा से हमारे श्रोता रहेंगे बिल्लू सिंह चिंडालिया, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार, बरखा, निहारिका, योगेंद्र कुमार चिंडालिया, नरेंद्र कुमार और सभी इनके परिवार के सदस्यगण हमें मैसेज कर रहे हैं। और इसी के साथ ही हमें अगला मैसेज भेजने वाले हमारे श्रोता हैं झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया और रीटा भाटिया का मैसेज हमें मिला है। और ये हमारे श्रोता रहेंगे रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और मुंदीचक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी का मैसेज हमें मिला है। और मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजिश शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी, ये हमें गंजडू द्वारा उत्तर प्रदेश से मैसेज कर रहे हैं। और इनके साथ श्रोता हैं सहारनपुर उत्तर प्रदेश से राधा नामदेव। छत्तीसगढ़ डोंगर गांव से राष्ट्रपाल गजभिये और राधिका बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये का मैसेज हमें प्राप्त हुआ है। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक का मैसेज हमें मिला है। और इसी के साथ ही ये हमें मैसेज भेजा है अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आज़ाद ने मैसेज किया है। और रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना और हर्षित का मैसेज हमें मिला है। आइए सुनते हैं इन सभी साथियों के पसंद पर महबूबा फिल्म का गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की युगल आवाजों में। आनंद बख्शी ने यह गीत लिखा है और संगीतबद्ध किया है राहुल देव बर्मन ने।

साथियों, हमें मैसेज आया है शर्मा कॉलोनी जींद से। मिन्नू, अक्षिता, रक्षित, आरव और अंकित और सभी इनके परिवार के सदस्यगण हमें मैसेज कर रहे हैं। इसी के साथ ही ये हमें मैसेज मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोर्ड के, श्रीमती नंदा बोर्ड के, हनुमान बोर्ड के और उत्तम जमधाड़े ने मैसेज किया है। मनाली हिमाचल प्रदेश से हर्ष, विनय, विनीत और रोजस, चंडीगढ़ से शेफाली, शेफी, डेविस, विमला और सतीश अनेजा का मैसेज हमें मिला है। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडा ने, अर्चना ताई, हीरामन शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने का मैसेज हमें मिला है। मोहाली पंजाब से बबल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा का मैसेज हमें मिला है और इसी के साथ ही हमें ये मैसेज भेजा है। हमारे श्रोता रहेंगे जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद मराठवाड़ा से श्री सुधाकर, राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत कुमार, संचित कुमार, प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली, कुमार सरवद देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख और कुमारी

कल्पना का मैसेज हमें मिला है। गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम सद्दाम और अदीब हसन का मैसेज हमें मिला है। इसी के साथ ही हमें मैसेज भेजा है नौहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से नरेंद्र सुथार, मनोज, हिमांशु और सभी इनके परिवार के सदस्यगण हमें मैसेज कर रहे हैं। और ये हमारे श्रोता रहेंगे बाजार रोड मुंगेसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शविस्ता मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। गांव पनिहारचक हिसार से विनोद टेलर, साहिल दहिया, कृष्णा कहना, लड्डू ममता और इनके समस्त परिवार के सदस्यगण हमें मैसेज भेज रहे हैं। और इसी के साथ ही हमें मैसेज भेजा है ये हमारे श्रोता हैं गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा और सार्थक शर्मा, और दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा का मैसेज हमें मिला है। नर्मदा पार्क मंगल वेढ़ा से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल, नदीम पटेल हमें मैसेज कर रहे हैं। और पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद, बोहड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत का मैसेज हमें मिला है। और इसी के साथ ही हमें ये मैसेज भेजा है एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरव, मेघा, साक्षी, आशीष, अनुज, विशु, छोटू, एस के पप्पी खुराना। और हमारे ये श्रोता रहेंगे जिन्होंने मैसेज किया है जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत मोहम्मद, रिहान, समरीन, प्रवीण, माहिरा और नूर का मैसेज हमें मिला है। और गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुर मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी आर्यन, कृष्णा और पीहू का मैसेज हमें मिला है। और नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश और डॉक्टर मदन लाल वर्मा हमें मैसेज कर रहे हैं। और ये मैसेज हमें भेजा है मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ ने। इसी के साथ ही हमें मैसेज मिला है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर और कुमकुम सुरलकर और सभी इनके परिवार के सदस्यगण मैसेज कर रहे हैं। सुनते हैं सभी साथियों की पसंद पर फिल्म मेरे हम सफर का ये गीत। आवाज रहेगी महेंद्र कपूर और बलबीर की। संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने और लिखा है आनंद बख्शी ने।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे अपने साथी अनिल भल्ला के साथ, और हमारा व्हाट्सएप नंबर रहेगा 9792-53-272। इस नंबर पर आप अपनी फरमाइश हमें भेज सकते हैं। हमें अगला मैसेज किया है दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू ने मैसेज हमें किया है। इसी के साथ ही हमें मैसेज मिला है मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर और सतना एमपी से अमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक का मैसेज हमें मिला है। ये हमारे श्रोता रहेंगे बोरखेड़ा पित्रामल, जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मुणत, चेतन नहाटा। और इसी के साथ ही हमें अगला मैसेज किया है पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह ने मैसेज हमें किया है। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप का मैसेज हमें मिला है। और कालका से शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज हमें मैसेज कर रहे हैं। मालियान सरथना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन और मास्टर जिव्यम जैन का मैसेज हमें मिला है। ये हमारे श्रोता रहेंगे गांव ही परसोगा, तहसील लोसा, जिला लातूर से उस्मान शेख फौजी, सायरा बानू शेख, बाबा शेख, सिमर शेख और करिश्मा शेख। और करणवीर हाउस भुच्चो कैंचिया बठिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप, सिमू, एकम, दमन और अभिजोत ने मैसेज हमें किया है। और ये हमारे श्रोता रहेंगे रोहतक से दीपक, ललित, शीला, अनीता और सभी इनके परिवार के सदस्यगण मैसेज हमें कर रहे हैं। गाडगे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल, रक्षिता, रेयांश और इनके पूरे परिवार के सदस्यगण हमें मैसेज कर रहे हैं। दादा बाबू रोड गिरडी झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद और मिफ्रा नवाज का मैसेज हमें मिला है। सुनते हैं सभी साथियों की पसंद पर फिल्म होगी प्यार की जीत का ये गीत। आवाजें रहेंगी रूप कुमार राठौड़ और जसपिंदर नरूला की। संगीतकार हैं आनंद राज आनंद और गीतकार हैं समीर।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत कर्ज फिल्म से। आनंद बख्शी का लिखा हुआ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गीत की धुन बनाई है और गाया है मोहम्मद रफी साहब ने। पसंद किया है आप सभी ने। हमारे श्रोता हैं गांव जाखुद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा खटक। संभाजी चौक सिडको न्यू नांदेड़ महाराष्ट्र से सुधाकर गायकवाड़, विकास गायकवाड़, प्रीति, आशा, दीपांजलि, दीक्षा बागमारे और शशांक बागमारे का

रहेंगे साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से गुरमीत सिंह मीता। और इसी के साथ ही हमें अगला मैसेज भेजने वाले हमारे श्रोता हैं जिला किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, मेघा राशि, माधुरी, किरण और अनुराग मोहन। ये हमारे श्रोता हैं अग्रोहा से महेंद्र सिंह हुड्डा, दयावंती हुड्डा, नरेंद्र, अंकिता, सुम्मू हुड्डा और तानिया हुड्डा का मैसेज हमें मिला है। और शाहदरा दिल्ली से बिहारी कॉलोनी से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन और चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु और रिधान खुराना का मैसेज हमें मिला है। आइए सुनते हैं इन सभी साथियों की पसंद पर कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

दोस्तों, इसी गीत के साथ आज का ये कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे यहीं संपन्न होता है। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, हमें अपनी फरमाइश और अपने सुझाव प्रतिक्रियाएं हमें ज़रूर भेजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9792-5353-272। अब दीजिए अपने साथी अनिल भल्ला को अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे एफएम एंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। इस वक्त रात्रि के 11 बजने को हैं। आपसे थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। ये समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। रिले की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: BHF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BHF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस अकादमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुंचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कोचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी रहा। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने गुजरात को निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 215 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में ताजा समाचार मिले तक गुजरात ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बनाए हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जा रहे थे। एफएम 102.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। इस वक्त रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। प्रातः 5:53 पर हमारी आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।